मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026, 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी

0: का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ कर रहे हैं मातृवंदना से।

अभी आप समूह स्वर में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी देशभक्तिपूर्ण रचना सुन रहे थे। लीजिए अब सुनिए विनोद चटर्जी के स्वर में ब्रह्मानंद की लिखी ये रचना।

0: इसी के साथ आज की वंदना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन, आलेख श्री मंगलानंद झा का है।
1: भारतवर्ष में कन्या को देवी का प्रतिरूप माना जाता है। धर्म ग्रंथों में विशेष अवसरों पर उसकी पूजा का भी विधान है। वो परिवार की धुरी होती है और सभी रिश्तों को प्रेम पूर्वक निभाती है। माता पिता का वो आजीवन ध्यान रखती है। एक बेटे की अपेक्षा बेटी सर्वोत्तम होती है। वो आजीवन अपने परिवार के प्रति समर्पित रहती है। बेटे को कुल का दीपक माना जाता है, लेकिन वास्तव में बेटी ही वो अनमोल रत्न है जो दोनों कुलों के मान सम्मान की रक्षा करती है। कन्या सृष्टि का मूल होती है, उसके बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। घर परिवार को सजाना संवारना और उन्हें सदैव सुख प्रदान करना उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। बेटी का प्रतिपालन और संरक्षण हर मनुष्य का नैतिक दायित्व है। परिवार में बेटी के रहने से हर परिवार सुख समृद्धि का सदैव अनुभव करता है। बेटी अपने माता पिता को बहुत सम्मान प्रदान करती है। वो अपनी हर प्रगति को माता पिता को ही समर्पित करती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस परिवार में बेटी का अपमान होता है वो परिवार जल्दी ही विनष्ट हो जाता है। अतएव अपने कुल की समृद्धि चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेटी का मनोयोग से परिपालन करना चाहिए। धर्मशास्त्रकारों ने कन्या के प्रति सम्मान और सद्भावना व्यक्त की है और उसकी महत्ता और प्रतिष्ठा को स्वीकार किया है। महाभारत में कहा गया है कि बेटी में सर्वदा लक्ष्मी निवास करती है। मनु ने बेटी को पुत्र के समकक्ष माना है और उत्तराधिकारी भी स्वीकार किया है। नारद और बृहस्पति जैसे महर्षियों ने मनु के मत को समर्थन प्रदान किया है। पिता अपनी पुत्री को प्राण के समान समझता है। प्राचीन भारत में देवयानी अपने पिता का प्राण थी। द्रौपदी भी अपने पिता के लिए गर्व थी। बेटी के महत्व को समझते हुए प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने यह व्यवस्था दी थी कि बेटी के विवाह के पूर्व यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके विवाह के लिए निश्चित संपत्ति सुरक्षित की जाए। विज्ञानेश्वर के अनुसार संपत्ति के विभाजन में बेटी का पूर्ण अधिकार होता था। वैदिक काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक समाज में बेटी को सर्वोत्तम महत्ता प्राप्त थी, लेकिन धीरे धीरे

0: उसके सम्मान और अधिकारों में ह्रास परिलक्षित होता है। वर्तमान समय में विज्ञान चमत्कार के साथ साथ बेटियों के लिए अभिशाप साबित हुआ था, जहां भ्रूण परीक्षण के माध्यम से कन्या को नष्ट कर दिया जाता था। इस भयावह स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को कड़े नियम बनाने पड़े और भ्रूण परीक्षण को समाप्त कर दिया गया। कन्या प्रत्येक परिवार के लिए संजीवनी का काम करती है। प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो बेटी को पूर्ण संरक्षण प्रदान करते हुए औरों को भी प्रेरित करे, तो यही सही मायने में देवी आराधना होगी। जो व्यक्ति पुत्री के प्रति असहिष्णुता का भाव रखता है, उसे दैत्य तुल्य माना गया है। भारतवर्ष के इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें बेटियों ने स्वयं के साथ साथ परिवार, समाज और राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसमें पुत्रियों ने स्वयं के साथ साथ परिवार, समाज और राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, जैसे सिकता, घोषा, मैत्रेयी, विजयलक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर, भारत कोकिला सरोजनी नायडू, पीटी उषा, सुनीता विलियम्स आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। अतएव बेटी को परिवार, राष्ट्र का गौरव मानते हुए बिना किसी भेदभाव के उसका पालन पोषण और संरक्षण करना चाहिए और दूसरों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। यही सबसे बड़ा मूल धर्म है।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे। आलेख श्री मंगलानंद झा का था। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। एपिसोड 164, 164।

पिता के वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए श्री राम को वन गमन करना था, किंतु सीता को वन जीवन के कष्ट भोगने देना राजा दशरथ को स्वीकार्य न था। अतः उन्होंने मंत्री सुमंत्र से ये कहा था, यदि दो चार दिनों में वन में घूम फिरकर राम वापस लौटने को तैयार न भी हों, तो वो सीता को अवश्य लौटा लाएं। श्री राम ने कई प्रकार से सीता को अयोध्या वापस लौट जाने की सीख दी, किंतु सीता का एक ही उत्तर था, हे करुणामय और परम ज्ञानी, आप विचार कर देखें, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। मंत्री सुमंत्र से उन्होंने कहा, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितैषी हैं, आपकी बात का खंडन करना मुझे शोभा नहीं देता, किंतु अत्यंत आर्त होकर मैं आपके सम्मुख आई हूँ। पति के चरण कमलों के अभाव में जगत के सभी नाते रिश्ते मेरे लिए व्यर्थ हैं।

0: रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे भूपेंद्र सिंह मिताली सिंह और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा विषय है हरी खाद का महत्व, जानकारी देते हुए डॉक्टर नितिश तिवारी।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिश तिवारी वरिष्ठ वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से बोल रहा हूँ। आज जो परिचर्चा का विषय है वो है हरी खाद। हरी खाद की जो बात करते हैं हम, तो हरी खाद का जो मुख्य उद्देश्य है ऐसी फसल का चयन करना जो कि मुख्य फसल के साथ लगाई जा सके, और उसको लगाने से हमें खाद की मात्रा में, हमारी जो रासायनिक खाद है उसकी मात्रा में बचत हो सके, साथ ही हमें खरपतवारों से भी समस्या का सामना कम करना पड़े, और साथ ही हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता है वो अच्छी बनी रहे। ये हरी खाद की बात जब भी हम करते हैं तो मुख्य बात इस पे हम चर्चा करते हैं। अब हरी खाद में हमें करना क्या है, किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य फसल के साथ या पहले हम किसी फसल की बुवाई करें जो कि दलहनी फसल हो। दलहनी फसल का मुख्य जो जिस फसल में आते हैं वो है ढेंचा, सनहैम और साथ ही कभी कभी बरबट्टी, और कुछ किसान भाई के पास यदि बीज उपलब्ध हो तो मूंग का भी उपयोग वो करते। इन फसलों के बीज को यदि हम फसल लगाने के पहले, मुख्यतः जो कि अधिक उर्वरक चाहने वाली फसल है जैसे कि धान है, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं, और जब हम धान की बुआई करते हैं या किसी अन्य अधिक उर्वरक चाहने वाली फसल की बुआई करते हैं तो उसके पूर्व हम इस पूरी फसल को हम मिट्टी में जुताई के साथ मिला देते हैं। इसमें होता ये है कि हम बुआई करते हैं हरी खाद की, हरी खाद फसलों की बुआई करने के पश्चात हमें 45 दिन का समय हमें अपने पास रखना है। उस 45 दिन की अवधि में हरी खाद बहुत अच्छे से पनप जाती है, उसमें जो गांठें होती जो कि नाइट्रोजन की मात्रा को जमीन में, मृदा में फिक्स करती हैं, वो गांठें भी पूर्णतया बन जाती हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन, स्थिरीकरण भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम हरी खाद में फसलों को, हरी खाद फसलों को 45 दिन पूर्व लगाते हैं, जिससे कि हमें मिट्टी में उसको मिलाकर उसके जो लाभ हैं जैसे कि नाइट्रोजन की मात्रा, मिट्टी का उपजाऊपन, इसका उपयोग करने से हमें कार्बन की मात्रा भी प्राप्त होती है, जो कि कार्बन की मात्रा मृदा में मिलने से मृदा की जो उपजाऊ, जिसको हम बल्क डेंसिटी के रूप में हम मानते हैं, बल्क डेंसिटी बहुत अच्छी हो जाती है, और साथ ही इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो हरी

0: खाद लगाने से ये हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। साथ ही यदि हम इसको लगाते रहें तो हमको उर्वरक जो नाइट्रोजन की उर्वरक है उसमें 30-45% तक हम कम करके उपयोग भी कर सकते हैं, जिसका किसी भी प्रकार से फसल पे दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसके अलावा हरी खाद कुछ लोग फसल के साथ भी लगाते हैं, विशेष तौर पे धान के साथ, क्योंकि धान में यदि आप बीच में लगा दें तो आप इसका उपयोग बीच में 35-40 दिन की अवधि में मिट्टी में इसको आपको मिलाना पड़ेगा, चूँकि हमारा जमीन उस समय कीचड़ युक्त होता है, धान की खेती में गीला होता है अत्यधिक, इसलिए आसानी से मिट्टी के अंदर दब जाता है और इस प्रकार भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ किसान इसको मक्के में भी करते हैं, कुछ किसान इसका उपयोग गेहूँ में भी करते हैं। इस प्रकार की फसल का उपयोग मैंने जैसा शुरू में बताया अधिक उर्वरक चाहने वाली फसलों में किया जा सकता है, गन्ने में भी किया जा सकता है। इन सारी फसलों में हम मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाते हुए उर्वरक की मात्रा को कम करने के लिए हरी खाद का उपयोग करते हैं। हरी खाद का उपयोग जब भी करें आप, तो जैसा कि मैंने सन हेम्प और ढेचा की बात करी, तो 20-25 किलोग्राम का बीज दर प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बुवाई करना है। इससे आप जो हरी खाद का जो फायदा है वो बहुत अच्छे से ले सकते हैं। साथ ही यदि आप इसको अधिक अवधि तक रखना चाहते हैं तो आप इसको 60 दिन तक भी रख सकते हैं, लेकिन 60 दिन की अवधि में आपकी फसल की बढ़वार में कभी कभी कमी आ सकती है, इसीलिए 45 दिन की अवधि वैज्ञानिक रूप में सही पाई गई है। और साथ ही इसका किसी भी प्रकार का निगेटिव इफेक्ट नहीं है, ये पूर्णतया संतुलित पोषक तत्व प्रदान करता है, इसलिए किसान भाई इसको बेहिचक हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं।
1: कृषि चर्चा में जानकारी का विषय था हरी खाद का महत्व। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नीतीश तिवारी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराय पाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण लीजिए, सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर नमस्कार रायपुर, इसमें सुनिए विश्व प्रवासी पंछी दिवस पर स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य श्री मनोज साहू से खास बातचीत। पीएम अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट प्राप्त करने वाले आईआईटी भिलाई के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण मुरारी से विशेष बातचीत और आईआईटी रायपुर में आयोजित होने वाले एआई फॉर बिजनेस वोकेशनल ट्रेनिंग पर डायरेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास से विशेष संवाद। प्रस्तुति पूजा बंछोर की होगी। समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में सुबह 8:30 पर सुनिएगा गर्भावस्था के दौरान सावधानियां पर स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलजीत से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगी प्रीति यादव। सुबह 9:15 पर बातों बातों में इसमें सुनिए जनगणना 2027 पर छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की होगी। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 पर और रात 8:15 पर कलाकार होंगे गजराज खुसरो और साथी। इसी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कौशल कुमार भानु और साथियों को। दोपहर 12:00 सुनिएगा आकाशवाणी संग्रहालय से धारावाहिक हमन आन छत्तीसगढ़िया का 15वां भाग उराव जनजाति। लेखक श्री तपन बैनर्जी, प्रस्तुति लखनलाल भौरे की होगी। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। घर आंगन में दोपहर 1:30 पर आज के गोट का विषय होगा चिरई चुरगुन हमर जीवन के अहम हिस्सा। श्रीमती संध्या ताम्रकार की वार्ता होगी विक...

खास के रद्दा मां बाढ़त नारी, एक ही कलाकार के गीत और चर्चा, ग्रीष्मकाल में सौंदर्य के रखरखाव ध्यान रखन। युवाणी में शाम 5:10 पर अपन गोट का विषय होगा चल अकेला रे, और साथ ही सुनिएगा आपमन की चिट्ठी और माटी के गीत। शाम 7:21 पर चौपाल में आज की बात का विषय होगा फसल उत्पादन मां सूक्ष्म पोषक तत्व की महत्ता। किसान वाणी में शाम 7:30 पर आज की सलाह में डॉक्टर देवेंद्र कुर्रे, सहायक प्राध्यापक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, जानकारी देंगे विकसित कृषि संकल्प अभियान 2026। चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 9:15, 10:30, दोपहर 1:05, 2:00, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5:00। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: पूर्णं राजनीतिना प्रेरितं चास्ति इति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सदस्यराष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रिकेट क्रीडांगणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलम अष्टस्तोभैः पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलम गुजरात टाइटन्स दलम सम्मुखी करिष्यति। क्रीडायाः आरंभः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल RN रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली

0: विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

गुड मॉर्निंग सुप्रभात श्रोताओं, हरे भरे जंगलों की ठंडी सांसें, महानदी की लहरों सी बहती सुकून भरी सुबह और मंदिरों तालाबों और अपनत्व से सजा हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। देश के दिल में बसने वाले इस राज्य की खूबसूरत राजधानी की हर सुबह अपने साथ ले आती है ताजगी, मुस्कान और नई उम्मीदों की रोशनी। तो उठ जाइए, मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि रायपुर की ये सुहानी सुबह दस्तक दे चुकी है और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, जहां हर धड़कन में बसता है छत्तीसगढ़। तो लीजिए अपनी दोस्त पूजा का अभिवादन और स्वीकार लीजिए नमस्कार। साथियों, जब जब भारत की मिट्टी वीरों की कहानी सुनाती है ना, तब तब एक नाम सबसे ऊंचा सुनाई देता है। जी हाँ, महाराणा प्रताप जी का। आज का दिन सिर्फ एक जयंती नहीं, ये उस स्वाभिमान का उत्सव है जिसने मुगलों की ताकत के सामने कभी भी झुकने से इनकार कर दिया। आज हम याद कर रहे हैं मेवाड़ की आन बान शान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ की धरती पर जन्मा वो बालक जिसे शायद प्रकृति ने वीरता के लिए ही चुना था। बचपन से तलवार उनकी दोस्त थी और मातृभूमि उनकी सबसे बड़ी पूजा। वो समय था जब भारत के कई राजघराने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ कह दिया, मेवाड़ कभी नहीं बिक सकता। फिर आया इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। सिर्फ 20,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप अकबर की विशाल सेना के सामने डट गए। रणभूमि में तलवारें चमक रही थी, धरती कांप रही थी और चेतक पर सवार महाराणा प्रताप दुश्मनों के बीच बिजली की तरह दौड़ रहे थे। इस युद्ध की सबसे भावुक कहानी थी चेतक की। महाराणा प्रताप जी के घोड़े की बात हम कर रहे हैं, जो घायल होने के बावजूद अपने स्वामी को सुरक्षित बचाने के लिए एक नाले से उसने छलांग लगाई और फिर वहीं गिर पड़ा। उस दिन सिर्फ एक घोड़ा नहीं, एक दोस्त, एक योद्धा हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन श्रोताओं, महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं थी। जब कठिन समय आया तब उन्होंने जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाई, उनकी बच्ची की रोटी तक जंगली जानवर उठा ले गए, लेकिन उन्हें कभी अकबर के सामने झुकना नहीं स्वीकारा। और फिर वो दिन आया जब भामा शाह ने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी ताकि मेवाड़ फिर से खड़ा हो सके। ये सिर्फ राजा की नहीं, जनता और स्वाभिमान के रिश्तों की कहानी थी। दोस्तों, महाराणा प्रताप हमें सिखाते हैं कि ताकत सिर्फ सेना में नहीं होती, ताकत होती है इरादों में, आत्मसम्मान में और मातृभूमि से प्रेम में। आज उनकी जयंती पर आइए हम उन्हें भीतर से उनके एहसासों को अपने अंदर लौ की तरह जलाएं

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
2: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
1: पहले से नाम लिखवा

0: की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
2: साथियों, इतिहास के पन्नों में 9 मई कई ऐसी यादें समेटे हुए हैं जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरणा दी। ये दिन उन्हें हम याद करते हैं, उनके व्यक्तित्व को, ऐतिहासिक घटनाओं को, जो हमें विचारों को और हमारे सभी चीजों को नई दिशा देती है। सबसे पहले बात उस महान स्वतंत्रता सेनानी की, जिनकी सोच और सादगी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। गोपाल कृष्ण गोखले जी 9 मई 1886 को जन्मे। गोखले जी केवल एक राजनेता नहीं थे बल्कि समाज सुधारक, शिक्षाविद और दूरदर्शी विचारक भी थे। उन्होंने देश में शिक्षा और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए जीवन भर काम किया। महात्मा गांधी भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले जी का मानना था कि देश की असली ताकत उन्हें शिक्षा और जागरूक होने में है। उनकी सादगी, विनम्रता और राष्ट्रभक्ति आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। इसी दिन दुनिया उस साहसी नाम को भी याद करती है जिसने हिमालय की ऊंचाई को अपने हौसलों से जीत लिया था। तेनजिंग नोरगे 9 मई 1886 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका साहस आज भी अमर है। तेनजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी ने मिलकर पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की फतह की। यह उपलब्धि केवल पर्वतारोहण की जीत नहीं थी बल्कि इंसानी हौसले और जज्बे की मिसाल बन गई। बर्फीले हवाओं और कठिन रास्तों के बीच उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी ऊंचाई असंभव नहीं होती। और आज 9 मई साहित्य जगत के लिए भी खास है, क्योंकि इसी दिन हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को हम याद करते हैं। उनकी लेखनी में समाज की सच्चाई, संस्कृति की महक और मानवीय संवेदनाओं की गहराई दिखाई देती थी। उनके सरल और प्रभावशाली शब्दों से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। और आज तो ये थी आज की बात, और इसी के साथ सुनते हैं ये अगला गीत।

0: साथियों, बदलती तकनीक और डिजिटल दौर में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI केवल टेक्निकल फील्ड तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बिजनेस और मैनेजमेंट में भी इसका अहम हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नया रायपुर स्थित IIIT में AI फॉर बिजनेस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विथ प्रोसेस इंटेलिजेंस नाम से 45 दिनों का विशेष वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। और खास बात यह है कि इस कोर्स में नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इस कोर्स के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 24 मई रखी गई है, जबकि प्रशिक्षण 26 मई से शुरू हो जाएगा। आखिर ये पहल युवाओं के भविष्य और रोजगार के अवसरों को किस तरह बदल सकती है, इसी विषय पर हमने खास बातचीत की है AIIIIT रायपुर के डायरेक्टर ओम प्रकाश व्यास जी से। तो आइए सुनते हैं उनसे ये खास बातचीत।
1: आकाशवाणी रायपुर के इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम नमस्ते, हम AI से जुड़ रहे हैं जो भविष्य की नई पहचान बनने जा रहा है, और ऐसे में नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ये खास मौका है। तो इसी बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास जी, जो कि डायरेक्टर है AIIIIT नया रायपुर के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: जी नमस्कार।
1: जी, कि आज के समय में AI को लेकर काफी चर्चाएं होती रहती हैं, और ऐसे में AI फॉर बिजनेसेस कोर्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए कितना ज्यादा उपयोगी होगा?
2: जैसा कि आप सभी देख पाते हैं कि हमारे आसपास में इन दिनों सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्भव हुआ है। के आने के बाद से उद्योगों में, व्यवसायों में काफी बड़े परिवर्तन दिख रहे हैं, और ये परिवर्तन इतने बड़े हैं कि बहुत से जो पुराने कार्य हम किया करते थे, अब शायद उसमें हमें किसी मानवीय सहायता की आवश्यकता ही ना पड़े और AI की मदद से वो काम ज्यादा अच्छे से हो सके। और इसीलिए जरूरी होगा कि हम ऐसे छात्र छात्राओं को भी हमारे AI के इस प्रशिक्षण अभियान में सम्मिलित करें जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि AI के माध्यम से वह भी अपना करियर बना सकेंगे। और इसके लिए IIIIT नया रायपुर में 45 दिवसीय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें ऐसे सभी छात्र छात्राएं जो MBA या MCOM या MCA के स्टूडेंट हैं वह इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और जो AI की तकनीक है उसको सरल तरीके से बताया जाएगा, ताकि इसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ना भी हो तो उनको समझ में आ सके, और इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।
1: जी सर, जैसा कि आपने ये बताया कि ये नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया कोर्स है, तो इसमें उन्हें किस तरह के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जानी है?
2: मुख्य रूप से हम उनको ये बताएंगे कि AI को टूल की तरह अगर उपयोग करना पड़े तो वो कैसे कर सकेंगे। AI के अंदर की कार्यप्रणाली उनके लिए जानना आवश्यक नहीं होगा। सिर्फ ये, जैसे कि हम एक कार की एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आपको कार ड्राइव करना है तो कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आप ऑटोमोबाइल के इंजीनियर भी हों। आप बिना इंजीनियरिंग जाने भी कार को अगर ठीक से समझते हैं तो उसको संचालित कर सकते हैं। इसी तरह से AI को एक नए स्वरूप में हमने यहाँ प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके अंदर की जानकारी, तकनीकी जानकारी न भी होने से उसका प्रभावी उपयोग कैसे किया जा सके, इसको हम विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से यहाँ बताने जा रहे हैं।
1: जी सर, आपने बताया कि 45 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, और ऐसे में छात्रों को इंडस्ट्री जैसे अनुभव देने के लिए किस तरह के प्रोजेक्ट्स या गतिविधियों को शामिल किया जा रहा है?
2: जी, इसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम IIIIT नया रायपुर में जुलाई अगस्त सत्र से एक नई विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स, और इसी के

0: तैयारियों के कारण से ये संभव हो सका है कि हम ये 45 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें हम एआई के जितने भी आधुनिक टूल हैं उनके साथ में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोसेस इंटेलिजेंस जैसे नए शब्दावली इसमें जुड़ेंगे, और केस स्टडी और मिनी प्रोजेक्ट के माध्यम से यह कार्यक्रम उद्योग मुखी रूप में बताया जाएगा।
1: सर, हमने देखा है कि बहुत सारे नॉन टेक्निकल बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर बड़े भी हैं, वो एआई से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं उसे इस्तेमाल करने, तो ऐसे में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को जो एआई को अपनाएं और बिजनेस और मैनेजमेंट में एआई की भूमिका को समझकर भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें?
0: इस तकनीकी बारीकियों के लिए चिंता ना करें, क्योंकि ये पाठ्यक्रम प्रारंभ से बनाया ही उन्हीं के लिए गया है जो कि गैर इंजीनियरिंग या नॉन तकनीकी क्षेत्र से आ रहे हैं, और इसकी प्रस्तुतिकरण और इसका जो टूल्स का जो प्रैक्टिस है वो एक रियल लाइफ के केसेस के माध्यम से उद्योगों में क्या क्या प्रयोग में आने वाला है उस अनुप्रयोगों की दृष्टि से बताया जाएगा। इसलिए जरा भी इसमें चिंता की बात नहीं है, ये पाठ्यक्रम डिजाइन ही उनके लिए किया गया है।
1: जी सर, जितना कि आपने इस पाठ्यक्रम के बारे में बताया, तो ये 45 दिन का जो कोर्स है वो किस तरीके से कंडक्ट होगा, इसकी समय अवधि क्या होगी, ये इस बारे में आप हमें थोड़ी जानकारी दे दीजिए।
0: जी जी जी, पाठ्यक्रम को हमने अलग अलग मॉड्यूल में बांट लिया है और 45 दिनों में प्रारंभिक जो मॉड्यूल रहेंगे वो इसके जो जानकारियां हैं उसको बताने के साथ साथ हैंड्स ऑन और वर्कशॉप के माध्यम से संचालित किए जाएंगे, जिसमें सभी प्रतिभागियों को हम ये बताएंगे कि अगर एक टूल उनको दिखा दिया जाता है तो कैसे उसका उपयोग करें, और लगातार शुरू के जो 3 सप्ताह हैं उसमें लेबोरेटरी और थ्योरी का मिश्रण रहेगा। चौथे मॉड्यूल से इन 45 दिनों में हम चौथे मॉड्यूल से इनको धीरे धीरे प्रोजेक्ट की तरफ ले जाएंगे और इनको एआई टूल की मदद से जो छोटे छोटे बिजनेस प्रोजेक्ट कैसे किए जा सकते हैं वो एक छोटा ग्रुप बना के इनको लर्निंग बाई डूइंग जो हम कहते हैं काम करके सीखना, उस प्रक्रिया से इनको सिखाया जाएगा, जो कि अपने आप में दुनिया में बड़ी प्रचलित शिक्षण प्रणाली है और हमें पहले इसका अनुभव है कि बहुत सफलतापूर्वक किया जा सकता है।
1: जी सर, तो ये थी हमारी खास जानकारी IIIT के AI फॉर बिजनेस प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर, जो युवाओं को तकनीक और बिजनेस की नई दुनिया से जोड़ने की कोशिश है। उम्मीद है ये पहल छात्रों के करियर को नई दिशा देने में मददगार साबित होगी। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे श्रोताओं के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: जी धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार सर।

0: साथियों, सुबह की खुली हवा में जब आसमान में ऊपर पंछियों का झुंड एक सिद्ध में उड़ता दिखाई देता है तो वह सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं होता बल्कि प्रकृति का सबसे अद्भुत सफ़र होता है। पंखों की सरसराहट, आसमान की लंबी उड़ान और मौसम के साथ हजारों किलोमीटर का अद्भुत सफ़र। प्रवासी पक्षी यानी माइग्रेटरी बर्ड्स प्रकृति का वो खूबसूरत चमत्कार हैं जो हर साल सीमाओं और देशों को पार कर हमारे बीच आती हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के मौके पर आज हम बात करेंगे उन्हीं प्रवासी पक्षियों की अनोखी दुनिया के बारे में, उनके संघर्ष और संरक्षण की ज़रूरतों पर। और इसी विषय पर स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड और बर्ड काउंट इंडिया के रीजनल कोऑर्डिनेटर मोहित साहू जी हमें बताएंगे प्रकृति से जुड़ी इन्हीं दिलचस्प और ज़रूरी बातों को। आकाशवाणी रायपुर के सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में हम आपको विशेषज्ञ से आपको जानकारी दिला रहे हैं जो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य हैं, साथ ही बर्ड काउंट इंडिया के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं छत्तीसगढ़ राज्य के, मोहित साहू जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: कि हर साल लाखों प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं, आखिर उनके नेविगेशन सिस्टम इतने सटीक काम कैसे करते हैं?
1: देखिए, नेविगेशन के लिए वो लोग बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो उनके अंदर इनबिल्ट अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ वाला, क्योंकि माइग्रेशन हमेशा नॉर्थ साउथ होता है, तो उसको रीड करने के लिए उनके पास डिवाइस है। उनके ब्रेन में मैपिंग होती है, उनकी आंखों में कुछ ऐसे डिवाइस है जो उसको मैप कर लेते हैं, देख लेते हैं। दूसरा, वो कुछ लैंडमार्क्स हैं जैसे नदियां हैं, बड़े तालाब हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कुछ पहाड़ हैं, उनको भी वो लैंडमार्क बना के अपना माइग्रेशन तय करते हैं। जो बर्ड्स रात में उड़ते हैं वो तारों से अपना, तारों का जो कॉन्स्टेलेशन रहता है, जो उनकी संरचना रहती है, उसको देख के अपना मार्ग तय करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब चीजें मिला के वो अपना मार्ग ढूंढते हैं, तय करते हैं।
0: जी, पिछले कई वर्षों में प्रवासी पक्षियों की संख्या में जो बदलाव देखने को मिले हैं उनके पीछे सबसे बड़े कारण क्या है?
1: देखिए, कारण बहुत सारे हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा भी जो हमारे आसपास जो चेंजेस होते रहते हैं, कुछ हम जो हैबिटेट्स नष्ट कर देते हैं या कुछ जो वेटलैंड्स है हमारे उनको नष्ट कर देते हैं, रिक्लेम करना जिसको बोलते हैं, सब चीजें होती है। तो उनका जहाँ रहवास, अगर उनका जो पर्यावास अगर डिस्टर्ब होता है तो भी हमारे आसपास दिखना बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गए, वो कहीं और चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वो ठिकाना ढूंढ ले, यहाँ प्रवास पे आते हैं तो उनका मेन मकसद है भोजन ढूंढना, तो यहाँ नहीं तो कहीं और। लेकिन हाँ, अगर सब जगह के पर्यावास नष्ट होते जाएंगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे उनके उनके रहवास में भी फर्क पड़ता है, वो भी एक फैक्टर है।
0: जी सर, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत में जो माइग्रेटेड बर्ड्स होते हैं

0: उनका यहाँ पर आना हमारे स्टेट के पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है?
1: उनका आना देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बर्ड्स जब आते हैं तो उनका जो मुख्य भोजन है वो कीड़े मकोड़े हैं, और जो जलीय पक्षी हैं वो घोंगे हैं, छोटे केकड़े हैं, छोटी मछलियां हैं, झींगे हैं, वो खास करके घोंगे और जो जलीय कीड़े हैं वो वनस्पति को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको खा के वो संख्या कंट्रोल करते हैं। जो आर्बोरियल बर्ड्स हैं जो पेड़ों पे रहते हैं वो भी कीड़े मकोड़े ही खाते हैं ज्यादातर। इस तरीके से वो हमारे एक क्या बोलना चाहिए नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर्स हैं, उनका आना बहुत जरूरी है। और दूसरा कुछ ऐसे पक्षी हैं जो यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकते हैं और आगे निकल जाते हैं, साउथ इंडिया जाते हैं, या फिर जो शोर बर्ड्स बोलते समुद्र के किनारे हैं वो भी कुछ दिनों के लिए यहाँ ठहर के जाते हैं, तभी ठहरेंगे जब यहाँ उनको भोजन अच्छे से मिलेगा। तो एक प्रकार से वो हमारे पे हमारे जो हैबिटेट है उसके इंडिकेटर्स भी हैं, हमारी जलवायु के इंडिकेटर्स तो ही हैं, वो हैबिटेट के भी इंडिकेटर्स हैं कि अगर वो वहाँ पक्षी मौजूद है तो ये समझिए कि वहाँ अच्छा भोजन है, वहाँ अच्छा उनको वातावरण मिल रहा है, शुद्ध वातावरण है रहने के लिए। उनका आना जैसे मैंने बताया हमारे पोलिनेट भी करते हैं हमारे फूलों को, उससे परागण की क्रिया होती है, बहुत सारे फैक्टर है जो हमको मदद करते हैं।
0: जी, क्योंकि आम लोग पक्षियों के संरक्षण में योगदान देना चाहते हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन से छोटे छोटे तरीकों को अपना कर इस पहल में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं?
1: हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हर चीज हम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते, कुछ हमें भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे खासकर अभी गर्मी का सीजन है तो इसमें पक्षियों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती पानी की, पानी उनको न सिर्फ पीने के लिए बल्कि अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए, नहाने के लिए, शरीर की सफाई के लिए भी जरूरी है। तो पानी जरूर रखें, मिट्टी के बर्तन में रखें, छायादार जगह पे रखें ताकि पानी गर्म ना हो। दूसरा कुछ आप दाने डाल सकते हैं उनके लिए ताकि उनको बहुत दूर धूप में ना जाना पड़े, बहुत कम मात्रा में, ताकि उनका जस्ट पेट भर जाए। तो आसपास का वातावरण हम लोग वैसा रखें, कुछ पेड़ पौधों की रक्षा करें, कुछ खुली जगह छोड़ें जमीन पर, जैसे गौरैया वगैरह हैं उनको बात भी लेती हैं, जमीन में धूल में नहाती हैं, दूसरी चिड़िया भी धूल में नहाती हैं, वैसे कुछ पैचेस हमारे खाली छूटे हों, कुछ एक्स्ट्रा जरूरत से ज्यादा हम जो पत्तियां जमीन पर गिरी रहती हैं हमारे क्यारियों में बगीचों में उसकी सफाई ना करें, क्योंकि उनके अंदर जो नीचे जो कीड़े पनपते हैं वो उनका भोजन है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें। और पेड़ पौधे तो हैं जरूरी उनके लिए, क्योंकि उनसे वहाँ पे मतलब आना नई की जगह मिलती है। और कुछ जो है बर्ड्स जैसे गौरैया हैं, दूसरी रॉबिन्स वगैरह हैं जो हमारे घरों के दीवारों में छेद रहते हैं उसमें घोंसले बनाती हैं, तो उनको ना भगाएं इस सीजन में, ये उनका ब्रीडिंग सीजन है, अभी उसमें अंडे होंगे, बच्चे होंगे, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम ध्यान में रख के उनकी हेल्प कर सकते हैं।
0: जी, तो ये थी हमारी खास बातें प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण को लेकर। याद रखिए साथियों, अगर आसमान में पक्षियों की उड़ानें कायम रहेंगी तभी प्रकृति का संतुलन और धरती की खूबसूरती बनी रहेगी। थैंक यू सो मच सर, हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा ह्यूज मात्रा में पैसों की ठगी हो रही है। वर्तमान समय में आम लोगों के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ऑनलाइन ठगी बढ़ गई है। यदि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कम समय में स्टॉक मार्केट से ज़्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर किसी अज्ञात वेबसाइट या एप्लीकेशन में अकाउंट खोलने कहा जाता है और आपके द्वारा अकाउंट खोलने पश्चात इन्वेस्टमेंट शुरू की जाती है, आपके उक्त एप्लीकेशन के प्रोफाइल में इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ आपका प्रॉफिट भी शो होने लगता है, किंतु जैसे ही आप विड्रॉल करते हैं वह पैसा विड्रॉल नहीं होता और आपके साथ ठगी होती है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी भी लिंक वेबसाइट पे जाके इन्वेस्टमेंट करने से बचें, आप किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट करने से बचें। यदि आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी फिर भी होती है तो आप 1930 पर कॉल करके अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इसी प्रकार फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कई लोग इन्वेस्टमेंट के लिंक प्राप्त करते हैं और वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप ऐसे फेसबुक और इंस्टाग्राम से प्राप्त होने वाले लिंक से भी बचें, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया साइट है, इन्वेस्टमेंट करने का वो साइट नहीं है। तो आप किसी भी प्रकार के फेसबुक या इंस्टाग्राम में मिलने वाले लिंक से बचें और उसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचें।

0: साथियों, हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने शोध और नई सोच से देश के भविष्य और उसे नई ऊंचाइयां देने में हैं। और आज इसी विषय पर डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी ने अपने रिसर्च के बारे में हमें बताया है। उनके रिसर्च प्रोजेक्ट ऊर्जा और पावर सिस्टम के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। खास बात यह है कि उनके इस काम को पीएम अर्ली करियर रिसर्च जैसी प्रतिष्ठित पहल से भी पहचान मिली है, जो देश के युवा वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को नई उड़ान देने का काम कर रही है। तो आइए जानते हैं उनके इस सफर, चुनौती और भविष्य की संभावनाओं के बारे में खुद डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी से। आकाशवाणी रायपुर के इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम नमस्कार रायपुर में हम आपको अलग अलग विषयों पर जानकारियां देते हैं और आज इसी क्रम में ते हैं डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी से, जो कि विद्युत यांत्रिकी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आईआईटी भिलाई इंस्टीट्यूट में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया।
0: सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयां। पीएम अर्ली करियर रिसर्च के तहत आपको रिसर्च फेलोशिप मिला हुआ, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां सर।
1: धन्यवाद।
0: जी, देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है आपके इस रिसर्च को, तो सबसे पहले आसान से भाषा में बताइए कि आपका ये काम आम लोगों की जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकता है।
1: एक्चुअली हमारा जो रिसर्च है ये भविष्य की स्मार्ट बिजली व्यवस्था को विकसित करने पर केंद्रित है। जैसा कि आप देखेंगे आज

0: आज बिजली की बढ़ती जरूरत और बार बार आने वाली समस्याओं के बीच आपका प्रोजेक्ट कितनी राहत दे सकता है और क्या भविष्य में बिजली व्यवस्था भरोसेमंद हो पाएगी क्या आपके इस रिसर्च के बदौलत?
1: जैसा कि आप देखेंगे, आज बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसका कारण है हमारी बढ़ती जनसंख्या। उसके पीछे और बहुत सारे रीजन है, हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ ही सोलर तथा विंड जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इन स्रोतों का उत्पादन समचा मौसम के अनुसार बदलता रहता है, जिससे बिजली व्यवस्था में अस्थिरता पैदा हो सकती है। हमारा प्रोजेक्ट एक ऐसी उन्नत तकनीक विकसित कर रहा है जो कि बिजली नेटवर्क में होने वाले बदलावों को तेजी से पहचान कर सही निर्णय ले सके। इसमें DER यानी डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी और कन्वर्टर आधारित नेटवर्क का समन्वित नियंत्रण होगा। इससे बड़े बड़े ब्लैकआउट की संभावनाएं कम होगी और बिजली व्यवस्था अधिक भरोसेमंद बनेगी।
0: जी सर, जैसे कि अभी हमने बात की कि PM अर्ली करियर रिसर्च के तहत आपको ये अवसर मिला है, और हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि क्या ये पहल युवाओं को वैज्ञानिक सुविधाएं प्रदान करती है और ये किस तरीके से खास मानी जाती है रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए?
1: जी, पीएम से आरती दानी बैडमिंस पीएम अर्ली रिसर्च करियर ग्रांट, ये भारत सरकार की एक प्रतिष्ठित और कॉम्पिटिटिव रिसर्च पहल है, जिसका उद्देश्य युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को उनके करियर के शुरुआती चरण में उच्च गुणवत्ता वाला स्वतंत्र शोध करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस ग्रांट को प्राप्त करना आसान नहीं होता, क्योंकि पूरे देश में बड़ी संख्या में शोध प्रस्ताव आते हैं और इनका मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। चयन मुख्य रूप से रिसर्च की गुणवत्ता, उसके सामाजिक और तकनीकी प्रभाव तथा भविष्य में उसके योगदानों की संभावनाओं के आधार पर होता है। इसलिए यह अवसर किसी भी युवा शोधकर्ताओं के लिए बहुत सम्मान की बात मानी जाती है। यह पहल केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवा वैज्ञानिकों को एक नई तकनीकों और राष्ट्रीय महत्व की समस्याएं और भविष्य की चुनौतियों पर स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर भी प्रदान करती है। मेरे लिए अवसर विशेष इसलिए है क्योंकि मुझे भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों, गर्मी स्मार्ट ग्रिड और हाइब्रिड AC-DC डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जैसी उभरती तकनीकों पर दीर्घकालिक और प्रभावी रिसर्च करने का मंच मिलता है। मेरा मानना है कि ऐसी पहले भारत के युवा वैज्ञानिकों में आत्मविश्वास बढ़ाती है और उन्हें वैश्विक स्तर के का शोध करने के लिए प्रेरित करती है।
0: जी, रिसर्च करते वक्त बहुत सी चुनौतियां आती हैं, बहुत सारे परेशानियों का हमें कई बार सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई बार हमारा मन करता है कि रुक जाएं, अपने काम को रोक दें। ऐसी मुश्किलों में आपने अपने आप को कैसे साहस दिया, अपने आप को कैसे इस चुनौती के लिए तैयार किया सर?
1: रिसर्च का जो सफर होता है ना, वो हमेशा चुनौतियों से भरा होता है। मुझे भारत के साथ साथ अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में भी काम करने का अवसर मिला और वहां काम करते मैंने रिसर्च की एक अलग अलग कार्य संस्कृति को मैंने बहुत करीब से देखा। अमेरिका में मैंने महसूस किया कि रिसर्च केवल पेपर पब्लिकेशन तक सीमित नहीं होती, बल्कि वास्तविक समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होता है। मैंने यह भी सीखा कि बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स को टीमवर्क, अनुशासन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ कैसे आगे बढ़ाया जाता है। शुरुआत में नई तकनीकों, कुछ उपेक्षाओं के बीच खुद को साबित करना आसान नहीं था। कई बार ऐसे लगा कि चुनौतियां बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने हर कठिनाई को सीखने के अवसर के रूप में लिया। धीरे धीरे वही अनुभव मेरे सबसे बड़ी ताकत बन गई। आज मैं उन सकारात्मक बदलावों और कार्य संस्कृति को भारत में अपनाना चाहता हूं, जैसे कि हाई क्वालिटी रिसर्च, ग्लोबल कोलैबोरेशंस, प्रैक्टिकल इनोवेशंस और छात्रों को प्रॉब्लम सॉल्विंग आधारित लर्निंग देना। मेरा मानना है कि भारत के शोधकर्ताओं में बहुत बड़ी क्षमता है और उन्हें सही वातावरण अवसर मिले तो विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
0: जी, और आजकल के युवा जो है इनोवेशन को लेकर बहुत रुचि कर होते हैं, वो बहुत उसमें रिसर्च करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे छात्र को, ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो विज्ञान और नई खोज के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाए?
1: युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि बड़े सपने देखें, मूलभूत ज्ञान का मजबूत करें और अपने शोध को समाज तथा देश की प्रगति से जोड़ें। आने वाला समय भारत के युवा वैज्ञानिक और नवाचारकर्ताओं का है।
0: आपके रिसर्च से भविष्य में बिजली से जुड़ी समस्याओं से निदान का रास्ता बनेगा और साथ ही हमारे देश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी हमारी आशा है। इतनी अच्छी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: जी, धन्यवाद।

0: दसवीं या बीएससी पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था सीपेट रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ शत प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
2: आंखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
3: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
2: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
3: 47 बच्चन ले सब लग सेवा माँ।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
0: साथियों, संगीत प्रेमियों के लिए ये दिन बेहद भावुक है, क्योंकि 9 मई 1998 को हिंदी सिनेमा और गजल गायकी की दुनिया में अपनी मधुर आवाज खो दी थी तलत महमूद जी के रूप में। तलत महमूद जी की आवाज में ऐसा दर्द और मिठास था जो सीधे दिल को छू जाती थी। जिंदगी देने वाले सुन और इतना ना मुझसे तो प्यार पढ़ा जैसे गीत आज भी लोगों की जुबां पर है। उनकी गायकी ने भारतीय संगीत को एक अलग ही नजाकत और एहसास दिया है। तो आइए इसी एहसास के साथ सुनते हैं तलत महमूद

साथियों, वक्त के दामन बिना ठहरने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जाते जाते आप सभी से गुजारिश कि पत्रों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर लिखकर भेजें और हमसे जुड़े रहें। हमारा प्रेम आपके साथ यूं ही बना रहेगा। जाते जाते स्वीकार लीजिए अपनी दोस्त पूजा का नमस्कार।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को हैं समाचार, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देश भर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल RN रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीपन दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
3: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
3: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। AMM के पार्टी के नेता TTV दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक S. कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें AIADMK के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन

0: को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरेह बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण

समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। डॉक्टर की सलाह, इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गर्भावस्था के दौरान सावधानियों पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलजीत से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है प्रीति यादव।

0: श्रोताओं नमस्कार। माँ बनना एक बहुत सुखद और अद्भुत अनुभव होता है, पर यह सुरक्षित भी हो इसके लिए ज़रूरी है गर्भधारण से लेकर प्रसव तक हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखना, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलजीत, जो श्री सत्य साई माँ एवं बाल अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि गर्भधारण की आदर्श आयु क्या होती है?
1: आइडियल एज जो होती है प्रेगनेंसी की, वो 20 साल से 35 साल का होता है। अगर 20 साल से कम आयु है तो महिला उस समय उतनी प्रिपेयर्ड नहीं रहती है, एंड 35 साल से बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है कि 35 साल के बाद उसको गर्भ धारण करने में ही दिक्कत आती है। जैसे कि जो एक फीमेल में क्या रहता है कि हमारी AMH वैल्यू, हमारे जो अंडे होते हैं फीमेल्स के, वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। फिर उसके अगर 35 ईयर के बाद जो एज लिमिट होती है उसमें उसके अंडे की भी एजिंग होने लग जाती है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 35 के बाद प्रेगनेंसी प्लान करना खुद में ही एक चुनावदायक चीज़ होती है, एंड देन अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है 35 साल के बाद तो उसमें अदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे BP का बढ़ जाना, एनीमिया, डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटिक जो हो जाती हैं फीमेल्स, और प्लस जो इनका नेचुरली जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो अदर एज लिम्प फैक्टर से अलग रहते हैं। तो जो आइडियल एज होती है वो 35 होती है, 35 के पहले होती है।
0: अच्छा,
1: तो इसमें क्या रहता है, अदर कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बढ़ते हैं बच्चों में। अगर माँ 35 के बाद प्रेग्नेंट हो रही हैं तो उसमें हाई चांसेस होते हैं कि जेनेटिकली या कंजेनाइटली मालफॉर्म्ड डिफॉर्मिटीज आ सकते हैं। तो बेस्ट है कि आप 35 के पहले ही प्लान कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 35 के बाद आप नहीं प्लान कर सकते, बट हाई रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन स्टिल वी कैन गो फॉर इट। जब माँ रेडी है वो तब प्रेग्नेंट हो सकती है।
0: जी जी। तो पहली बार जो महिलाएं माँ बनने वाली होती हैं उनकी देखभाल में किस तरह की चुनौतियाँ होती हैं?
1: जो पहली बार माँ बनती हैं वो महिलाएं अक्सर, उनको समझ नहीं आता है कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है। वो अपने मतलब उनके एक तो वो हर चीज़ घर परिवार में अलग सलाह मिलती है उनको, वो उनके बॉडी में अलग चेंजेस आते हैं
0: जी।
1: तो उनको शारीरिक जो बदलाव आते हैं, जैसे थकान लगना, शाम के समय बुखार जैसा लगना, उल्टी घबराहट लगना, वो इस चीज़ों को समझ नहीं पाती कि इसको कैसे डील करें। तो इनके लिए सबसे पहले तो हमको ये डर को हटाना है, ये असहजता को हटाना है कि ये सब चीज़ें जो उनके साथ हो रही हैं ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये नॉर्मल चेंजेस हैं जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से हैं। प्रेगनेंसी जब हमको कंसीव होती है तो एक प्रोजेस्ट्रॉन कर

0: एक हार्मोन होता है जो बहुत पीक लेवल मतलब जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा सारा उल्टी आना, चक्कर आना, थोड़ा सा घबराहट जैसा लगना। तो इसके लिए इनको डरने की बात नहीं है, इसमें बॉडी में, खाने में या फिर अपने जो डे टू डे लाइफ है उसमें चेंजेस करने होते हैं। जैसे हम दिन में 3 बार खाते हैं तो इनको फ्रिक्वेंट स्मॉल मील लेना, इनको कम से कम हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ करके खाना है। अगर ये बहुत देर खाली पेट रहती है तो दिक्कत की बात है, और अगर ये पेट भर के खाती है तो इनको उल्टी और वॉमिटिंग हो गई। अगर खाली पेट रहेंगी तो एसिडिटी बनती है, तो हाइपर एसिडिटी की वजह से वो और नौजिया और वॉमिटिंग्स होते हैं। अगर पेट भर के खा लेते हैं तो फिर वो फिर पचता नहीं है, वो फिर उल्टियाँ हो जाती है। तो एक फ्रिक्वेंट एक मील डिसाइड रखना है कि मुझे हर 2-2 घंटे में, हर 3-3 घंटे में लाइट खाना खाना है, और जो भी खा रहे हैं वो फ्रेश बना होना चाहिए, बाहर का बिल्कुल अवॉइड करना है, स्पाइसी कम खाना है, और जो पसंद है वो सब खा सकते हैं। ऐसा नहीं है मुझे ये नहीं खा सकती, मैं वो नहीं खा सकती। जो आपको, अगर आपको दूध नहीं पसंद है तो ज़रूरी नहीं आपको प्रेगनेंसी में दूध पीना ही है, लेकिन आप कोशिश करिए आप उसको लें, लेकिन आपको दूध पीने से तुरंत उल्टी हो जा रही तो थोड़े 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए थोड़ा कंट्रोल कर मत लीजिए। दूसरी बात यह है कि शाम के समय जो थकान लग रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें नॉर्मली अडेप्ट हो जाएंगी। इनिशियली क्या रहता है कि शुरुआत के 2-3-4 महीनों में ये सारे सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ग्रेजुअली वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि, और महिलाओं का सबसे बड़ा डर रहता है कि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, तो शुरुआत के समय में वजन नहीं बढ़ता क्योंकि ऑलरेडी वो खाने में परहेज कर रही हैं, ऑलरेडी उनको उल्टियां हो रही हैं, तो उस समय वजन बल्कि थोड़ा कम रहता है, या बढ़ा तो 1 से 2 किलो बढ़ेगा, लेकिन बच्चे की वजह से वो वजन उनको अभी नहीं बढ़ाना या बढ़ाने की जरूरत नहीं, उनको बस एक साधारण घर का खाना खाना है जिसमें वो थोड़ा प्रोटीन इंटेक ज़्यादा ले, या जो नॉर्मल घर का खाना है से वो भी सेवन कर सकती हैं, उसमें कोई फल और जो जो चीज़ उनको पसंद है, जो चीज़ उनको खाने में भा रही है या फिर वो खा सकती है, उससे उसको दिक्कत नहीं हो रही है, वो सब चीज़ें वो ले सकती हैं। बस इसमें ये रखना है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, अभी नीचे झुकना, वजन उठाना, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी रहती हैं।
1: कोई ऐसी चीज़ भी होती है जो गर्भवती महिलाओं को नहीं खानी चाहिए गर्भावस्था के दौरान?
0: देखिए, यूजुअली जो पपाया होता है, पपाया में एंजाइम्स होते हैं जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन दे सकते हैं, तो हम लोग वो अपना प्रेगनेंसी आगे डील करती है। तो ANC विजिट यूजुअली तो 8 होना चाहिए, मतलब WHO के अभी न्यू गाइडलाइन के हिसाब से, लेकिन मिनिमम 4 विजिट तो उसको करना चाहिए। जो पहला 3 महीना होता है जैसे वो प्रेगनेंसी कंसीव की और 12 हफ्ते तक का, तो ये जो समय रहता है इसमें हम फर्स्ट मदर को हम बुलाते हैं, उसमें हम उनकी सबसे पहले बेसिक ANC प्रोफाइल, मतलब जिसमें सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें उसका HB कितना है, उसके वायरल मार्कर्स कैसे हैं, उसके यूरिन कैसा, यूरिन टेस्ट हुआ जाता है, इसमें प्रोटीन्स या यूरिन में इन्फेक्शंस तो नहीं है, देन ये सारी सिकलिंग वगैरह, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिकलिंग भी बहुत प्रोन है, तो ये सारी चीजें हम रूल आउट कर लेते हैं। ठीक है, इससे ये रहता है कि एक बेसलाइन हम शुगर भी चेक करते हैं मदर का उसी में, क्योंकि जब अगर बेसलाइन शुगर नॉर्मल है उसका और अगर 20 हफ्ते बाद शुगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मदर डायबिटिक नहीं है, वो जेस्टेशनल डायबिटीज के साइड जा रही है। मतलब वो गर्भ के बाद जो डायबिटीज होता है उसके साइड जा रही है। तो बेसलाइन हमारे पास एक सारे जांच होने चाहिए जो हम ANC प्रोफाइल जो फर्स्ट विजिट में हम कराते हैं। दूसरी चीजें हम लोग ये कराते हैं जो फर्स्ट 3 महीने का रहता है, उसमें एक NTNB स्कैन होता है जो 11 से 13 हफ्तों के बीच में होता है। वो NTNB स्कैन बहुत ज्यादा जरूरी स्कैन है, उसमें बच्चे की नाक की हड्डी देखा जाता है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और बच्चे के गले के पीछे का एक थिकनेस मेजर किया जाता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली एक डबल मार्कर का रिपोर्ट बनता है। डबल मार्कर में ये पता चलता है कि उस बच्चे को कोई कंजेनाइटल या जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ये इनिशियली पहला, मतलब ये स्क्रीनिंग होता है जो हम 3rd महीने में करते हैं। तो ये तो आपका फर्स्ट हुआ, उसमें हम मदर को फॉलिक एसिड लेने बोलते हैं एंड मदर को एक विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन प्लस मैंने देते हैं। अगर उसको बहुत उल्टियां हैं तो हम उसको खाने के बारे में सिखाते हैं, हम उसको सिखाते हैं कि बॉडी तुम्हारी नेचुरली कैसे अब तुमको आगे डील करना है। तो फर्स्ट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सेकेंड विजिट जो रहती है वो हमारा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर से चालू होता है, तो उसमें हम एक एनोमली स्कैन करते हैं जो 18 से 20 हफ्ते के बीच में होता है। वो एनोमली स्कैन में हम बेबी को हेड टू टो स्क्रीनिंग किया जाता है कि बच्चे में सब चीजें ठीक है, कभी लाइक उसके लेंसेस कैसे हैं, उसके आईज से लेके उसके हाथ, उसके टो, उसके फिंगर्स, एवरीथिंग उसमें स्क्रीनिंग होती है।

0: कि बच्चे में कहीं डिफेक्ट तो नहीं है, कोई भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और इसमें क्या रहता है, जिन्होंने 3 महीने की सोनोग्राफी नहीं करवाई है वो अब इसमें क्वाड्रपल मार्कर में करवा सकते हैं 18 से 20 हफ्तों के बीच में। तो क्वाड्रपल मार्कर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है टू रूल आउट द जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। लेकिन जिनका ऑलरेडी डबल मार्कर हो गया है वो जरूरी नहीं कि क्वाड्रपल मार्कर भी करवाएं। और अगर 5th मंथ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो 20 वीक्स तक हम डिसाइड कर सकते हैं कि बेबी को आगे कैसे हमको प्लांट आउट करना है। और उसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ हमको लगता है कि क्वाड्रपल मार्कर में हाई रिस्क आया है तो हम उसके आगे का टेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल NIPT या एमनियोसेंटेसिस। NIPT मदर का ब्लड लेकर टेस्ट होता है जिसमें मां का ब्लड निकालकर उसको जेनेटिकली और क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग किया जाता है। एंड एमनियो अगर हमको 100% कन्फर्मेटरी चाहिए कि बच्चे में कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी नहीं है तो हम लोग फिर एमनियोसेंटेसिस करते हैं। उसमें मां के आसपास का जो पानी होता है उसको सिरिंज के द्वारा निकाला जाता है, सोनोग्राफी गाइडेड रहता है ये। तो उसमें हमको ये समझ में आ जाता है कि बच्चे को जेनेटिकली इश्यूज नहीं है या क्रोमोसोमली बच्चा फिट है। अकॉर्डिंगली फिर हम प्लान करते, तो सब एक एक स्टेप्स का, एक एक विजिट का उनका बहुत इम्पोर्टेंस है। फिर बेबी का ग्रोथ आता है कि बेबी ग्रो कैसे कर रहा है, बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है। अल्ट्रासाउंड से हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर 6 महीने का बच्चा है तो उसको 600 ग्राम प्लस ऐसा रहना चाहिए, कितना उसकी लैग हो रही है। फिर 32 वीक्स अगर हो रहे हैं तो उसमें 2 kg के अराउंड आ रहा है, 1.7 to 2 kg। तो इनिशियली फिर हम ग्रोथ मॉनिटर करते हैं जी। एंड इसी बीच में हम टेटनस या वैक्सीनेशन का भी इंक्लूड करते हैं जो विजिट्स आते हैं। तो वैक्सीनेशन के बारे में अगर आप बोलोगे तो बेसिकली 2 वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट TT का जो वैक्सीनेशन लगता है टेटनस का, वो 3 महीने में लग जाना चाहिए।
1: पहला टीका
0: 3 महीने में,
1: ठीक है।
0: और दूसरा टीका जो रहता है वो 1 महीने बाद लगता है जो फर्स्ट टीका लग गया है। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप पहला TT का टीका ले लीजिए और जैसे 28 वीक्स हो गया, 7वां महीना लग जाए, तो TDAP करके एक वैक्सीनेशन होता है वो मोर सब एफिशिएंट रहता है। उसमें टेटनस भी कवर होता है, डिप्थेरिया भी कवर होता है और पर्ट्यूसिस भी कवर होता है बेबी का, ठीक है। तो उसमें माँ और बेबी दोनों का टेटनस का, माँ का कवर हो गया, पर्ट्यूसिस डिप्थेरिया बच्चे का भी कवर हो जाता है। तो जिसके लेकिन अभी ये गवर्नमेंट में नहीं है तो हम टेटनस का 2 डोज इजिली लगा सकते हैं।
1: तो कम से कम 2 टीके बहुत
0: जरूरी
1: है
0: जी, क्योंकि क्या अगर हम टेटनस का टीका नहीं लगाएंगे तो क्लॉस्ट्रेडियम टेटेनी करके एक ऑर्गेनिज्म है, वो अगर उससे वो क्या रहेगा, कल को अगर डिलीवरी हो रही है कुछ भी इंस्ट्रूमेंट से कुछ ये इन्फेक्शन फैल गया तो उसमें मदर के लिए वो जानलेवा भी आगे बन सकता है। तो टेटनस मस्ट है लगाना
1: जी। जी ये बताइए कि संस्थागत प्रसव यानी अस्पताल में प्रसव कितना जरूरी है?
0: इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या रहता है, एक्चुअली मैं आपको एक अपने पर्सनल अनुभव बताऊं तो मेरी मम्मी जो सिंगल चाइल्ड थी एंड मेरी नानी मतलब मेरी मम्मी की जो मदर, शी डाइड बिकॉज ऑफ द पोस्टपार्टम हेमोरेज। उन्होंने घर पे डिलीवरी हुआ एंड दैट लॉन्ग बैक एंड उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, मेरी वो वहीं कोलैप्स हो गई। तो घर पे डिलीवरी कराना बहुत बहुत खतरे वाली चीजें हैं। हमारे पास इंस्टीट्यूशनल में हर सुविधा है मां और बच्चे को बचाने के लिए। पहली बात तो मां को शुरुआत से ही इंस्टीट्यूशनल में आके अपनी सारी जांचें HB BP शुगर सारे चेक कराते रहना चाहिए, जिसमें वो स्मूथली 9 महीने तक अच्छे से स्वस्थली खींच सके, फिर वो स्वस्थ बच्चे को भी जन्म दे सके। और इंस्टीट्यूशनल में डिलीवरी कराने से बहुत सारे फायदे हैं कि अगर बच्चा फंस रहा है या माँ को प्रसव होने के बाद बहुत ब्लीडिंग है तो हम उन सबको ट्रीट कर सकते हैं, हम माँ की जान को बचा सकते हैं तुरंत। तो मैम मेरे हिसाब से हर एक डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी कहा आपने। बातें और भी हैं, सवाल हमारे पास और भी हैं। फिलहाल आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगी आप आज हमारे श्रोताओं को?
0: मैम मुझे डियर जिंदगी का लव यू जिंदगी गाना बहुत पसंद है, वो इतना एनर्जेटिक है एंड वो एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी है, तो मुझे वो सॉन्ग तो पसंद है।
1: चलिए आपकी पसंद पर ये गीत सुनते हैं।

0: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कंवलजीत को। मैम, आपसे जानना चाहेंगे हम, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री को अपने खान पान पे किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए जो उनके लिए, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित हों।
1: देखिए, प्रेगनेंसी में मैंने पहले भी बताया कि जैसे हम सुबह दोपहर रात को खाते हैं, जो इंडियन सिनेरियो के हिसाब से रहता है कि, तो वो ऐसा नहीं खाना है। हमको फ्रीक्वेंट स्मॉल मील लेना या उस मील को 5 से 6 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है। उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए और विटामिन्स भी चाहिए और हेल्दी फैट्स भी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत में जो जब प्रेगनेंसी कंसीव होता है तो उसमें सिर्फ नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स वाला जो घर के जो खाने वो भी भरपूर रहते हैं। उसमें आप दही ऐड कर लीजिए, उसमें आप एक ग्लास दूध ऐड कर लीजिए, जैसा भी आपको, अगर उल्टियां नहीं हो रही है या फिर आपको उससे दिक्कत नहीं हो रही आप वैसा खाना खाइए। लेकिन फिर जब सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब आप 14 वीक्स के बाद, 14 हफ्ते के बाद जब आप पहुंचती हैं तो ये सब सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो उसमें आपको प्रॉपर डाइट मेंटेन करना पड़ता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए हैं, तो उसमें राइस, चावल, पोहा, ओट्स सारी चीजें आती हैं। ठीक है, एंड देन प्रोटीन्स की बात आए तो प्रोटीन्स बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसमें अगर कोई मांसाहारी नहीं खा सकता तो फिर वो पनीर खाए और सोयाबीन खाए एंड दाल, स्प्राउट्स, ये सारी चीजें। में जो मूंग दाल का जो ओवरनाइट सोक, रात भर आप मूंग दाल को भिगो कर रख दिए, फिर वो अंकुरित दाल को कच्चा नहीं खाना। उस अंकुरित दाल को या तो थोड़ा स्टीम कर लेना है या फिर उसका कोई चीला बनाकर खाना है। उस चीला भी जो आप बना रहे हैं उस अंकुरित मूंग के दाल से, उसमें आप कुछ और ऐड कर दीजिए, जैसे कुछ गाजर हो गया, कोई चुकंदर हो गया। चुकंदर तो बहुत अच्छा है खाने के लिए।

समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे गर्भावस्था के दौरान सावधानियों पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलजीत से ली गई भेंट वार्ता। भेंटकर्ता थी प्रीति यादव। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9 बजे हैं बातों बातों में, इसमें सुनिए जनगणना 2027 पर छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति

0: विकल्प रंजन शुक्ल की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के तहत 1 मई से मकानों के सूचीकरण और गणना का काम शुरू हो गया है। प्रगणक घर घर जाकर लोगों से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इस दौरान सभी परिवारों से 33 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न मुख्य रूप से मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्तियों से संबंधित हैं। इस दौरान प्रगणक मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। जनगणना कार्य में लगे सभी फील्ड कर्मचारियों को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किए गए हैं। श्रोताओं, इससे पहले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वगणना का कार्य किया गया, जिसमें नागरिकों को पोर्टल के माध्यम से स्वयं जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई थी। इस दौरान छत्तीसगढ़ में करीब 1,38,000 परिवारों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। श्रोताओं, जनगणना के तहत दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएंगी। इन्हें किसी से भी साझा नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि टैक्स, पुलिस या किसी तरह की जांच में इस जानकारी का उपयोग नहीं किया जा सकता और ना ही इसका उपयोग किसी भी प्रकार के साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। इन आंकड़ों का उपयोग केवल नीति निर्माण और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही किया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि यह भारत की पहली ऐसी जनगणना है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण डिजिटल उपकरणों और माध्यमों से किया जा रहा है। इससे न सिर्फ पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हुई है, बल्कि इससे आंकड़ों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता भी सुदृढ़ हो रही है। श्रोताओं, जनगणना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए हमने बात की छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल से। पेश है इस बातचीत के मुख्य अंश। गोयल साहब, आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
1: सर, ये जो जनगणना की प्रक्रिया है, जनगणना 2027 की, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो जनगणना 2027 हो रही है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? भारत में जो इससे पहले जो जनगणना हुई है उससे यह किस तरह से अलग है?
2: भारत की जनगणना वर्ष 2027 नाम से जो हो रही है, ये दो चरणों में होगी। पहला चरण वर्ष 2026 के मई महीने में और द्वितीय चरण फरवरी 2027 में होकर मार्च के 5वीं तारीख 2027 तक पूर्ण हो जाएगा हमारे भारत में जनगणना। यह जनगणना पूर्व की जनगणनाओं की भांति उनके नियम कानून जो बने हुए हैं उनकी तरह ही की जा रही है, परंतु इसमें कुछ विशेषताएं। सबसे पहली तो ये कि यह जनगणना प्रथम बार इस देश के इतिहास में पूर्णतः डिजिटल माध्यम से होने वाली है। इसका मतलब जो हम कागज में लंबे लंबे फॉर्म लोगों के पास ले जाकर भरते थे, फिर उन फॉर्म को एक जगह वापस लाते थे, फिर उनके आधार पर डेटा कंप्यूटर में एंट्री करते थे और फिर इन फॉर्म्स को एक जगह एकत्रित करके सुरक्षित रखा जाता था, वो अब आवश्यक नहीं होगा। पूरी जानकारी डिजिटल माध्यम से ही आपके सामने एकत्रित की जा सकेगी और इसकी वजह से जो हमारे डेटा एनालिसिस है वो बड़ी तीव्र और तेज हो जाएगी। दूसरी विशेष सुविधा इस बार जो इस जनगणना में है वो यह है कि भारत के नागरिक को स्वयं अपने स्वगणना करने का विकल्प मिल रहा है। यह डिजिटल माध्यम और तकनीक की वजह से संभव हुआ है। तीसरी विशेषता वो यह है इस जनगणना की कि पहली बार भारत में कास्ट सेंसस जो होने जा रहा है वो इस जनगणना का भाग है। हालांकि वो इस जनगणना के दूसरे चरण में आएगा, न कि जनगणना के प्रथम चरण में। इस प्रकार इस बार की जनगणना तीन रूप में इसकी विशेषताएं हैं और अन्य रूपों में हर जनगणना की तरह ये बड़ा महत्वपूर्ण जनगणना है। 16 साल के बाद ये जनगणना हो रही है। सामान्य तौर पर हर 10 साल में होनी थी, लेकिन कोविड के चलते 2021 में नहीं हो पाई। जनगणना हमारे देश का मूलभूत आंकड़ा होता है और हमारे अगले 10 साल जो भी बुनियादी सुविधाएं या हमें प्लानिंग करनी है उसका मूलभूत आधार इन्हीं जनगणनाओं का आंकड़ा होता है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है।
1: सर, स्वगणना के बाद 1 मई से मकान सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। जो लोग स्वगणना के तहत पोर्टल में अपनी जानकारी दर्ज कर चुके हैं उनके घर जब प्रगणक आएंगे तो उन्हें क्या करना होगा?
2: 1 मई से 30 मई के बीच जब प्रगणक आपके घर आएगा तो सबसे पहले पूछेगा कि सर या मैडम, आपने स्वगणना करी है या नहीं करी है। अगर आप कहते मैंने नहीं करी तो फिर वो कोई बात नहीं, वो आपका

0: गणना आपके सामने कर देगा। और यदि आप कहते हैं कि आपने स्व गणना करी है तो वो आपसे SEID मांगेगा। ध्यान रखें, वो आपसे OTP नहीं मांग रहा, वो आपसे आपका SEID मांग रहा है जो 11 डिजिट का है, जो कि आपको SMS से मिला है। हमारा प्रगणक, वैसे बता दूं, जो भी आता है वह एक फोटोयुक्त आईडी कार्ड जो कि जनगणना से जारी किया जाएगा वहां लेकर आएगा। जब ऐसा व्यक्ति आपके सामने आता है उसको और आपको SEID पूछता है, आप उसे SEID दीजिए, वो अपने ही मोबाइल पर आपके सामने आपका SEID एंटर करेगा। और यदि SEID का सही है तो वह आपके द्वारा भरी गई जानकारी उसके मोबाइल पे प्रदर्शित होगी। वो आपको एक बार फिर से दिखा देगा। अगर आपको कोई संशोधन करना है, यदि त्रुटिपूर्ण कोई पूर्व में एंट्री हो गई है, कोई संशोधन करना है, तो आप फिर कर सकते हैं। यदि आप कहते हैं नहीं, मैंने जानकारी सही भर दी है, मैं संतुष्ट हूं, तो वह आपके सामने स्वीकार का बटन दबाएगा। स्वगणना का विकल्प देने का उद्देश्य यह है कि भारत के नागरिकों को अपनी जनगणना में भाग लेने का एक अवसर भी मिलेगा, हमारे प्रगणक के लिए डेटा एंट्री करना कम रहेगा, और आप स्वयं अपना नाम भरेंगे तो उसमें स्पेलिंग एरर इत्यादि कम रहेंगे।
1: श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं कार्तिकेय गोयल साहब से, जो IAS हैं और इस समय छत्तीसगढ़ में जनगणना निदेशक हैं। गोयल साहब, जनगणना निदेशालय द्वारा जो नियुक्त कर्मचारी हैं वो लोगों के घर घर जाएंगे तो किस तरह की जानकारियां उनसे मांगी जाएंगी?
0: जनगणना के जो लोग आपके घर आएंगे उन्हें प्रगणक कहते हैं। प्रगणक सामान्यतः आपके क्षेत्र के ही टीचर्स होंगे, सरकारी स्कूल के टीचर होंगे। शहरी क्षेत्रों में वो टीचर के अलावा कुछ सब इंजीनियर या हमारे नगरीय निकायों के कर्मचारी भी हो सकते हैं। वो जब आएंगे तो वो आपसे केवल 33 सवाल पूछेंगे। ये 33 सवाल अलग अलग तरह के हैं। एक तो पहला आपके परिवार से संबंधित है, आपका मकान से कुछ संबंधित सवाल पूछेंगे कि यानी आपका मकान की छत पक्की है या नहीं, आपके घर में जो फर्श है वो पत्थर की है या मिट्टी की है या टाइल्स की है इत्यादि। इस प्रकार की सामान्य जानकारियां जिससे कि हमें हमारे देश के मकानों में किस तरह के बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी आपके पास पीने का पानी है कि नहीं, शौचालय का विकल्प है या नहीं, इस तरह की जानकारी साझा करने का प्रयास सांख्यिकीय रूप से किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि भारत में एक क्षेत्र में कितने लोगों के पास पीने का जल का स्रोत नहीं है या कितने लोगों के पास अभी भी टॉयलेट नहीं। सांख्यिकीय आंकड़ों का एकत्रण किया जा रहा है, ना कि व्यक्ति विशेष आंकड़ों का। व्यक्ति विशेष ना आपके कोई स्वत्व कटेंगे ना आपके कोई स्वत्व जुड़ेंगे।
1: एक बात और, जब भी इस तरह की प्रक्रिया होती है, क्योंकि अब क्या है कि धोखाधड़ी के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं देश में, तो व्यक्ति के अंदर एक डर होता है कि जो प्रगणक आया है वो कितना वैध है, कि क्या वो वाकई सरकारी कर्मचारी है या कोई फर्जी व्यक्ति उसके द्वार पर आ गया है, और क्या उस समय, इस प्रक्रिया के समय, जो परिवार के लोग हैं उनको कोई दस्तावेज दिखाना है या इसका कोई शुल्क देना है, इसके बारे में बताएं।
0: आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मैं स्पष्ट कर दूं, पहले तो जनगणना आपके लिए मेरे लिए पूर्णतः निःशुल्क है। नागरिक होने के नाते हमारा अधिकार है कि निःशुल्क जनगणना हमारी हो। तो जनगणना में किसी प्रकार के शुल्क, फीस, पैसे इत्यादि, फाइन, कुछ भी नाम कह लो, कोई पैसे आपको कभी नहीं देने, आज ही नहीं कभी नहीं देने। दूसरी चीज, आपको अपने जनगणना में दी जाने वाली जानकारी के प्रमाणीकरण में एक भी दस्तावेज नहीं दिखाना है। ये दो चीजें मैं चाहूंगा आपके सारे श्रोता ये मन में बिठा लें कि जनगणना निशुल्क है और दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। जहां जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वो हमारे द्वारा एक फोटोयुक्त आईडी कार्ड लेकर आएगा, इसमें QR कोड भी होगा। तो जो श्रोताओं को लगता है कि उन्हें और सावधानी बरतनी है, जो वो आपको अपना परिचय पत्र दिखाएगा, पहचान पत्र दिखाएगा, उसमें जो QR कोड है उसे स्कैन कर लीजिए और वो स्कैंड QR कोड आपको दिखा देगा कि उस आदमी का नाम इत्यादि क्या है। अगर कोई फर्जी आदमी आता है तो ना तो वो QR कोड दिखा पाएगा, या QR कोड दिखाता है तो उसका QR कोड आपके द्वारा स्कैन किए जाने पर कोई भी हमारे डेटाबेस से डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होगा।
1: एक सवाल और है गोयल साहब, कि जब भी कोई व्यक्ति जानकारी देता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये संशय भी होता है कि इसके द्वारा दी जाने वाली जानकारी की निष्ठा का तो उसका हनन नहीं होगा या उसकी जानकारी का दुरुपयोग तो नहीं होगा, तो इसमें गोपनीयता किस तरह से बरकरार रखी जाएगी?
0: जनगणना में दी जाने वाली जानकारी की गोपनीयता दो आधार पर टिकी है। सबसे पहले विधिक आधार। जनगणना अधिनियम की धारा 15 कहता है कि आपके या मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी जनगणना में पूर्णतः गोपनीय है और यह जानकारी किसी भी पुलिस, इनकम टैक्स, किसी भी RTI, कोर्ट, चाहे कोई न्यायालय हो, किसी में साझा कभी नहीं की जा सकती। यह धारा 15 हमारे सेंसस अधिनियम के तहत पूर्णतः सुरक्षित है। अभी नहीं, आजादी के समय से यह धारा उसमें है। तो सबसे पहले है विधिक गारंटी कि आपकी जानकारी कभी साझा की नहीं जा सकती। दूसरी बात तकनीकी, क्योंकि हम इंटरनेट पे ये सब काम कर रहे हैं, मोबाइल पे पहली बार डिजिटल कर रहे हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा सभी को कि भारत में अब आधार का डेटाबेस हो गया, UPI हो गया, इन सब के चलते

0: हमारे देश में सरकारी तंत्र को डिजिटल डेटाबेसेस को चलाना और उनकी सुरक्षा तंत्र बनाए रखने का अनुभव हो गया है। उसी के तर्ज पर जनगणना में जो डेटाबेस है उस डेटाबेस को भी हमने काफी सुरक्षित बनाया है। सर्वप्रथम जो मोबाइल पे हमारा प्रज्ञक डेटा ले रहा है वहां पर सुरक्षा का एक लेयर है। सेकंड, जो डेटा उसके मोबाइल से ट्रांसमिट हो रहा है हमारे सर्वर में उसमें हमने इंक्रिप्शन डाल रखा है और अन्य सुरक्षा की उसमें फीचर्स हैं। तीसरी चीज, जो हमारे सर्वर स्वयं है वो सर्वर भारत की सर्वोत्तम तकनीकी संस्थाएं यथा सर्ट हो गया, सीडैक हो गया, इनके सारे तकनीकी मापदंडों को पार करके बहुत बड़े ही सुरक्षित तरह से रखा जा रहा है। तो आपकी हमारी जानकारी नॉट ओनली सुरक्षित है बल्कि सुरक्षित रहेगी, इसके बारे में विधिक रूप से और तकनीकी रूप दोनों से प्रावधान किए गए।
1: गोयल साहब, जो भारत देश है वो विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है और जो जनगणना का काम होगा निश्चित रूप से एक बहुत ही व्यापक और विराट कार्य है, तो इस कार्य को अंजाम देने के लिए सही तरीके से जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो प्रगणक हैं, उनको किस तरह से प्रशिक्षित किया गया है?
0: जैसा आपने सही कहा, इतने व्यापक चीज को बिना अच्छी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के नहीं किया जा सकता। हमारी प्रशिक्षण अभी से नहीं, पिछले 3 महीनों से चालू है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 62,000 से भी ऊपर प्रगणक और पर्यवेक्षक चुने गए हैं और इनके डाउट क्लियरेंस के लिए भी 3 लेयर पे डाउट क्लैरिफिकेशन के टीम्स बनाए गए हैं। जब हमारे प्रगणक फील्ड में जाएंगे अवश्य रूप से कोई स्वाभाविक तकनीकी विषय उठेंगे, किसी प्रकार के संदेह संशय उठेंगे, उसके लिए 3 स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, तीनों स्तर पर क्विक रेस्पॉन्स टीम बनी हुई है, व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर, सबको मैं जानकारी देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 1855 1855, ये हमारा नेशनल टोल फ्री नंबर है। कोई भी आम नागरिक, कोई भी व्यक्ति जनगणना से जो जुड़ा हुआ जानकारी चाहता है, आप इस पे फोन करके हम आपके डाउट्स भी क्लियर कर देंगे। 30 मई तक हम अपनी पूरी छत्तीसगढ़ की आबादी की जनगणना का पहला चरण पूर्ण कर लेंगे।
1: एक अंतिम बात, कि कोई भी अभियान होता है, मिशन होता है, उसमें जो सरकार है वो तो अपना पूरा जोर लगाती है, उसकी पूरी तैयारी होती है। जैसा आपने बताया कि एक शानदार सा प्रशिक्षण दिया गया है सभी प्रगणकों को, जो भी इससे संबद्ध लोग हैं उन्हें, लेकिन किसी भी अभियान की जो सफलता है वो तभी सुनिश्चित होती है जब उसमें जनता की भी वैसी ही सहभागिता हो, उसका भी सहयोग मिले। तो इस समय जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो इस जनगणना के कार्य में किस तरह से अपना सहयोग करें?
0: भारत के नागरिक होने के नाते मेरा अन्य भारतीय नागरिकों से, जो आपके श्रोतागण हैं, उनसे अपील है कि जनगणना हमारे देश की अगले 10 साल की आधारभूत संरचनाएं और नीतिगत निर्णयों का बेसिस या आधार बनती है। इसीलिए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि जनगणना में अवश्य अपनी सही जानकारी दें, किसी भी भ्रम में ना आए। तो जब जनगणना का प्रगणक आपके घर द्वार आए तो उसको आमंत्रित करिए, उसे जानकारी अपने सर्वोच्च जानकारी के हिसाब से, आपके ज्ञान के हिसाब से जो जानकारी आपके पास है कृपया उससे साझा करें और हमारे देश, हमारे क्षेत्र की उन्नति प्रगति का भाग बने। जनगणना को एक सेल्फी के रूप में समझिए, जनगणना अपने देश की एक सेल्फी है। इस सेल्फी में आपकी फोटो आ जाए, इसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि जनगणना में भाग लेना सुनिश्चित करें।
1: बहुत सुंदर बात, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी और निश्चित रूप से जो जनता है वो भी सहभागी बनेगी और इस कार्य को सफल बनाया जाएगा। आपको इस कार्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं और आपने हमें विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, उसके लिए आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
0: आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक IAS श्री कार्तिकेय गोयल से ली गई भेंटवार्ता के मुख्य अंश। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: बातों बातों में इस कार्यक्रम में अभी आप जनगणना 2027 पर छत्तीसगढ़ के जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की थी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए परख फिल्म का गीत। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया है सलील चौधरी ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: आशा भोसले की आवाज में सुनिए लाजवंती फिल्म का गीत. मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने.

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लता मंगेशकर की आवाज में लीजिए अब सुनिए मधुमती फिल्म का गीत। शैलेंद्र के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है सलील चौधरी ने।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मन्ना डे और साथियों की आवाज में सुनिए प्रदीप का लिखा गीत। संगीत सी रामचंद्र का है और फिल्म का नाम है पैगाम।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दिल्ली का ठग, इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर में। शैलेंद्र के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है रवि ने।
5: CAT कैट, कैट माने बिल्ली। RAT रैट, रैट माने चूहा। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।
6: ए मेड मैड, मैड माने पागल। B.O. बॉय बॉय, बॉय माने लड़का। रे मतलब इसका तुमको हो तो क्या हुआ।
5: CAT कैट, कैट माने बिल्ली। RAT रैट, रैट माने चूहा। अरे दिल है

0: GOAT, goat. Goat माने बकरी, LION, lion, lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: ए

0: नहीं जहां में हंसी न होगा कोई हमसा भी।
1: लगे तक ने कभी अपने शीशा लेके मुंह देखा भी।
0: तुम्हें एक नहीं जहां में हंसी न होगा कोई हमसा भी।
1: नोज माने नाक, CROW, क्रोम माने कवा।

बैड बैड माने बुरा, ब्यूटी बट माने लेकिन, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।

महल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए गंगा जमुना फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीतबद्ध किया है नौशाद ने।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं गजराज खुसरो और साथी।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।

0: कार्यक्रम सोप ओपेराज, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: गजराज खुसरो और साथियों के स्वर में आइए अब सुनते हैं ये छत्तीसगढ़ी गीत।

0: लोक संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे गजराज खुसरो और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। मतदान 1 जून को और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन।

0: किया जा रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जलप्रदाय प्रणालियों की एक सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होकर 4 जून तक चलेगी। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77, कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136, कुल 1228 रिक्त पदों पर मतदान कराया जाएगा। नामांकन 11 से 18 मई तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को होगी और 21 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से दलीय आधार पर और पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से गैर दलीय आधार पर कराए जाएंगे। चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। इसमें लंबित आपराधिक प्रकरणों के साथ ही मोटर दुर्घटना प्रकरण, विवाह संबंधी विवाद, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी से संबंधित मामलों का निराकरण किया जाएगा। वहीं 21 से 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के माध्यम से भी लंबित मामलों पर सुनवाई की जाएगी। पक्षकारों को अपने लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए जानकारी सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 31 मई तक गूगल फॉर्म में देना होगा। अधिक जानकारी के लिए बार रूम के वन स्टॉप सेंटर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर से संपर्क किया जा सकता है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी निकायों को पेयजल संकट के निवारण के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जलप्रदाय प्रणालियों की एक सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। साथ ही पाइपलाइन में लीकेज या टूट फूट को तत्काल सुधारने तथा नालियों से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनों और हाउस सर्विस कनेक्शन को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कल प्रदेश भर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 1385 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये योजना जरूरतमंद परिवारों की बड़ी चिंता दूर कर रही है। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक नवदंपत्ति को 35,000 रुपये की सहायता दी जाती है। विश्व रेडक्रॉस दिवस पर कल रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि निस्वार्थ भाव से मानव सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और यही रेडक्रॉस की असली पहचान है। इस अवसर पर जूनियर और यूथ रेडक्रॉस सम्मेलन भी आयोजित हुआ। लोक नृत्य, चित्रकला और नाट्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। बालोद जिले के डोंडीलोहारा थाना क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर देवरी से डोंडीलोहारा की ओर जा रहे थे, तभी खैरीडीह गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही कार ने इन्हें टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। मतदान 1 जून को और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जलप्रदाय प्रणालियों की एक सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नई फिल्मों से।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: चिकन करी लॉ, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़, गीत और संगीत शेखर सरीन का था।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए अब सुनिए कबीर सिंह फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीतबद्ध किया है सचेत परंपरा ने।

अगला गीत है अरिजीत सिंह, प्रकृति कक्कड़ और अमाल मलिक की आवाज़ों में। गीत लिखा है कुमार ने, संगीतबद्ध किया है अमाल मलिक ने और फिल्म का नाम है सोनू के टीटू की स्वीटी।

अगला गीत है अमिताभ भट्टाचार्य के संगीत निर्देशन में, गीत और आवाज़ अमित त्रिवेदी की, और फिल्म का नाम है भावेश जोशी सुपर हीरो।

शाहिद मालिया और असीम की आवाज़ में लीजिए अब सुनिए अहमद अब्बासी का लिखा गीत, संगीत राघव संचार का, और फिल्म का नाम है बिट्टू बॉस।

0: सोनू निगम और सुनिधि की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए शब्बीर अहमद का लिखा गीत, संगीत प्रीतम का है और फिल्म का नाम है बॉम्बे टू बैंकॉक।
1: Who knows how a

नई फिल्मों से। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

0: दीवार फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर में। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी राहुल देव बर्मन ने।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इसके पहले आपने जो गीत सुना था वो था फिल्म दाग का। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। साहिर लुधियानवी ने लिखा गीत था और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए अब सुनिए निकाह फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। गीत लिखा है हसन कमाल ने और संगीतबद्ध किया है रवि ने।
4: अभी अलविदा मत कहो।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लता मंगेशकर की आवाज में आइए अब सुनते हैं खानदान फिल्म का गीत। गीत लिखा है नक्श लियालपुरी ने और संगीतबद्ध किया है खय्याम ने।

सोहनी महिवाल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अनुपमा और अनवर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए चलते चलते फिल्म का गीत शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। अमित खन्ना ने गीत लिखा है और बप्पी लहरी का संगीत है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ देर में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो रहा है। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में पहुंच गए हैं। इससे पहले वो एक भव्य रोड शो में शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल हैं। इससे पहले कल श्री अधिकारी को पार्टी विधायक दल का नेता निर्विरोध चुना गया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में

0: समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त होगा। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा का केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों को सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। हिंद महासागर संवाद कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रम और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विश्व मामलों के परिषद और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय के सहयोग से इस संवाद का आयोजन किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। गुजरात और पश्चिम राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आम्रपाली फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: आइए अब सुनते हैं आनंद आश्रम फिल्म का गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर में। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीतबद्ध किया है श्यामल मित्रा ने।

आइए अब सुनते हैं अधिकार फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर में। रमेश पंत ने इस गीत को लिखा है और राहुल देव बर्मन का संगीत है।

अनामिका फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। आइए अब सुनते हैं आंचल फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। एक बार फिर गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने ही।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक। महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

आशा फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में आसपास फिल्म का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सदाबहार नगमे अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:40 हुए हैं। उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित छन्नूलाल मिश्र का गाया राग मिश्र देश में ठुमरी।

0: उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित छन्नूलाल मिश्र का गाया राग ठुमरी में मिश्र देश। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी, मतदान 1 जून को और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की 1 सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होकर 4 जून तक चलेगी। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77, कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136, कुल 1228 रिक्त पदों पर मतदान कराया जाएगा। नामांकन 11 से 18 मई तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को होगी और 21 मई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं।

0: सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से दलीय आधार पर और पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से गैर दलीय आधार पर कराए जाएंगे। चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निराकरण होगा। इसमें लंबित आपराधिक प्रकरणों के साथ ही मोटर दुर्घटना प्रकरण, विवाह संबंधी विवाद, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी से संबंधित मामलों का निराकरण किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी निकायों को पेयजल संकट के निवारण के संदेश दिए हैं। विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की एक सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। साथ ही पाइपलाइन में लीकेज या टूट फूट को तत्काल सुधारने तथा नालियों से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनों और हाउस सर्विस कनेक्शन को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 10 मई को नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और ग्रीष्म लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, एनडीआरएफ को सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान शून्य जनहानि के दृष्टिकोण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। तोके क्षेत्र के जंगल में चलाए गए संयुक्त सर्च अभियान के दौरान जवानों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आईईडी बनाने की सामग्री बरामद की है। जब्त सामग्री में 315 बोर राइफल, 12 बोर राइफल, रॉकेट लॉन्चर और जिंदा कारतूस शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि यह सामग्री सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल में छिपा कर रखी गई थी। बालोद जिले के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर देवरी से डोंडी लोहारा की ओर जा रहे थे, तभी खैरीडीह गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही कार ने इन्हें टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। मतदान 1 जून को और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की एक सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव 305.8 मीटर्स अर्थात 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय से धारावाहिक हमन आन छत्तीसगढ़िया का 15वां भाग, उरांव जनजाति, लेखक श्री तपन बनर्जी और प्रस्तुति लखनलाल भौर्य की है।

0: कवि हृदय को उद्वेलित करने वाली सांवली सलोनी, उराव कन्या के माथे पर गुदी हुई तीन रेखाओं का रहस्य क्या है? चांद से मुखड़े को बुरी नजर से बचाने के लिए कोई ढिठोना है, या सौंदर्य को द्विगुणित करने के लिए रचा गया कोई श्रृंगार, या जातीय स्मृति से जुड़ने वाला कोई प्रतीक चिन्ह? इसका सटीक उत्तर श्रीमती प्रेममणि के पास है।
1: हमारे पुरखे लोग जब रोहतासगढ़ में थे तो उस समय युद्ध हुआ करता था, और फिर युद्ध हुआ तो हमारे उराव जनजाति लोग तीन बार विजय हासिल किए, तो वो तीन बार विजय हासिल करने का ही ये माथे पर तीन डंडे का निशान गोदना के रूप में गुदवाए, और वो आज तक प्रचलित है। और उसके बाद फिर घुटने में भी गोदना गुदवाते हैं, और फिर पैर में गोदना गुदवाते हैं। ये ऐसा मानते हैं कि पहले जमाने में हम जब मर जाएंगे तो हमारे साथ कुछ नहीं साथ में जाएगा, गोदना है ये कभी मिटता नहीं है, हम मर भी जाएंगे चला जाएगा हमारे साथ में। ऐसे
0: उराव समाज में गोदना की अपनी ही महिमा है, वो श्रृंगार का स्थायी स्वरूप है। उराव समाज पर गहन शोध करने वाले बोनिफास तिर्की कहते हैं,
2: रोहतासगढ़ से जब उराव लोगों को पलायन करना पड़ा तब उन्होंने क्या किया, अपनी महिलाओं को, अपनी बहु बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए या तो उनके लिए एक पहचान देने के लिए उन्होंने गोदना शुरू किया, और इस गोदने में उनके कपाल में तीन खड़ी लकीर का गोदना उन्होंने करना शुरू किया, और साथ में पैरों में एड़ी का पूरा हिस्सा गोदना से भरती थी। इनका मतलब होता था, लोग जैसे अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार भूत प्रेतों पर विश्वास जरूर करते थे, और इसलिए जो बुरी नजरें हैं उनसे बचने के लिए गोदना उन्होंने लगाना शुरू किया था।
0: गोदना के अलावा भी श्रृंगार के प्रति स्त्रियों में सहज आकर्षण होता है।
1: कान में पहनते थे, ताड़ पत्ता से बना रहता था, और फिर कान को बड़ा सा छेद करके उसमें डाल के पहनते थे, और फिर गले में हंसली बोलते हैं, चांदी का या गिलट का बना होता था, हंसली पहनते थे, और फिर ये लाल लाल जंगल में फलता था, बीज होता है ये, घुनसी करके बोलते हैं उसको, तो उसको गूंथ करके लोग बाग गले में भी पहनते थे, और फिर हाथ में, बाँह में, कलाई में ये हल्का और बाजू कहते हैं उसको, ये दोनों हाथ में, कलाई में और बाँह में पहनते थे, और पैर में पैजनी पहनते थे।
0: सरगुजा में निवास करने वाली जनजातियों में उराव एक प्रमुख जनजाति है। इसके आदि स्थान के बारे में इतिहासकारों में मत भिन्नता है, किंतु इस बात पर सभी सहमत हैं कि इनके आश्रय और विस्तार में छोटा नागपुर के पठार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरगुजा, जशपुर, उत्तरी उड़ीसा, रांची और पलामू क्षेत्र में इनकी सर्वाधिक आबादी बसती है। इनकी उत्पत्ति के बारे में बोनिफास तिर्की कहते हैं,
2: मनीषी जिन्होंने कुरु जाति पर काफ़ी गहन अध्ययन किया है, उनकी राय है कि उराव लोग दक्षिण भारत में, जिसको हम कहते हैं कर्नाटक का एक हिस्सा डेक्कन, कोंकण का क्षेत्र, यहाँ तिन्नेवेल्ली शहर के पास में तंबरा परनी एक नदी है, उसी के तट पर एक गांव है कोरकई। वैज्ञानिकों की राय है कि यह जाति इसी कोरकई नामक जगह से ही उत्पन्न हुई है, और यह कोरकई कुरुख शब्द से समानता रखती है, और इसी समानता को लेते हुए उराव लोग अपने आप को कुरुख कहते हैं, जिसको हम उराव में ही अगर कहें तो व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूँगा एन कुरुखन, और बहुवचन में कहेंगे नाम कुरुखत। वहाँ से कोरकई नामक स्थान से निकलकर उराव पश्चिमी समुद्री तट से होते हुए नर्मदा नदी के मुहाने तक पहुँचे, और नर्मदा नदी को ही अपना पथ बनाते हुए पूर्व की ओर आगे।

0: और पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए उन्होंने विंध्याचल और अमरकंटक पार करते हुए बिहार के शाहबाद जिले में प्रवेश किया और जहाँ पर उन्होंने रोहतासगढ़ नामक गढ़ स्थापित किया और वहाँ वर्षों तक वे अपना शासन करते रहे।
1: उरांव समुदाय का हर सदस्य गर्व से बताता है कि कभी बिहार के रोहतासगढ़ में उनके पूर्वजों का शासन था। जो इतिहासकार ये मानते हैं कि उनका विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर हुआ है, वे भी रोहतासगढ़ को मान्यता देते हैं। कुछ इतिहासकार उरांव जनजाति के आव्रजन को उत्तर से दक्षिण की ओर मानते हैं।
0: एक दूसरी राय के अनुसार ये उरांव सबसे पहले सतलज नदी के किनारे हड़प्पा में पाए जाते थे, जो लगभग 3500 वर्ष पूर्व तक उनके कुछ अवशेष के साक्ष्य मिलते हैं। और वह बाह्य आक्रमण की वजह से वे वहाँ से पलायन गए और उन्होंने हरियाणा और यमुना के समतल मैदानों से होते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जैसे आजमगढ़ और मिर्ज़ापुर होते हुए वे भी पहुँचे कहाँ, वही रोहतास, और यह है शाहबाद जिला में। और यह समय था लगभग ईसा पूर्व 800 और 900 के बीच। और रोहतासगढ़ में उरांव वर्षों तक शासन करते रहे, अपना उन्होंने अपना शासन व्यवस्थित किया जो कि पंचायत की व्यवस्था थी। और वहाँ से उनका पलायन शुरू हुआ ईसा पूर्व 100 साल पहले। रोहतासगढ़ से पलायन करते हुए उरांव दक्षिण की ओर बढ़े और जो वर्तमान में छोटा नागपुर का वह हिस्सा अभी झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा का उत्तरी हिस्सा है, इसी क्षेत्र में वे आकर बस गए।
1: उरांव समाज की स्मृतियों में सुदूर अतीत तक वनों की घनी छाया बसती है। वनों में ही इनके धार्मिक विश्वास और आस्था ने जन्म लिया है। वन और वन्य प्राणियों से ही इनके गोत्रों का जन्म हुआ है। इनके पर्व और उत्सवों का सीधा संबंध वनों से है। छोटा नागपुर का पठार साल वनों के लिए प्रसिद्ध रहा है। साल वृक्षों की पूजा अर्चना में उरांव बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस पर्व को सरहुल कहा जाता है। निर्मल राम कहते हैं,
2: जब सराय में फूल आ जाता है तब जो है सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। इसमें लोग जो है जब नया फसल बोनी का जो त्यौहार होता है यहीं से जो है शुरू हो जाता है। त्यौहार को जो है पूरे गांव के लोग जो है और बैगा ये सराय पेड़ के नीचे जो है पूजा पाठ करता है। गाँव वाले आते हैं और वहीं पर जो है ये गांव के जितने भी नाचने गाने वाले हैं सब मांदर ढोला जो है लाके जो है वहीं पर सरहुल त्यौहार मनाते हैं।
1: उरांव समाज में दो वर्ग हैं, धर्मांतरित और पारंपरिक, लेकिन सरहुल का उत्सव दोनों ही वर्ग धूमधाम से मनाते हैं। पी तिरकी कहते हैं,
3: जहां जहां सराय का झुंड रहता है वहां वो सरना के नाम से लोग जानते हैं और वहीं पे वो लोग साल में एक बार ये सरना पूजा के नाम पर सब जमा होते हैं और वहाँ जैसे मुर्गा का छोटा छोटा बच्चा को लेके वो चावल के साथ खिचड़ी पकाते हैं और उसका सेवन करते हैं और वहीं पे जैसे हड़िया उड़िया कुछ बनवाते हैं और गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग केवल सरना पूजा में सम्मिलित होकर हड़िया और खिचड़ी भात का सेवन करते हैं।
1: सामाजिक उत्सव के समय डोमकच गाया जाता है। इसके गीत समाज में अत्यंत लोकप्रिय हैं।

0: उरांव समाज में विवाह के बंधन को अत्यंत पवित्र माना जाता है। समाज में तलाक की इजाजत नहीं है। विवाह के रस्म पारंपरिक होते हैं। इशाक एक का कहते हैं,
1: लड़के के माँ बाप गांव के कोई

0: बुजुर्ग अगुए को ले जाकर के शुरू में दो तीन जन जाते हैं, इसको हम लोग उरांव भाषा से बोलते हैं डंडा हिरना। जब हम लड़की देखने जाते हैं लड़की के घर में, उस समय एक डंडा ले जाते हैं साथ में दो तीन बुजुर्ग जाते हैं, एक आध दो महिलाएं भी जाती हैं, तो इसको डंडा हिरना कहते हैं। बाद में जब ये लोग जाते हैं उसके पश्चात में यदि लड़की पक्ष को सहमति है तो फिर वो डंडा को वहां खोस के लौटे रहते हैं, उस डंडे को फिर लड़के के पक्ष में लेकर आते हैं। उसके लिए ये लोग खबर करते हैं कि हम लोग अमुक दिन को आपके यहाँ डंडा लौटाने जा रहे हैं। तो उधर से भी लड़की पक्ष से भी मेडिएटर के रूप में गांव वाले बुजुर्ग लोग आते हैं, के बाद में फिर तब लड़के पक्ष में डंडा को वापसी करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने जो डंडा लड़की देखने गए थे और जो डंडा हमारे यहाँ रखे थे उस डंडे को तब हम लोग वापस कर रहे हैं, आप लोग जो रिश्ता लेकर के आए थे रिश्ता हमें स्वीकार है।
1: उरांव समाज में दहेज का रूप एकदम भिन्न है, नकदी रकम का आदान प्रदान नहीं होता, अलबत्ता चावल या दूसरे किस्म के अनाज का लेन देन होता है।
2: तो वो तय होता है कितना लेना है, दो खाड़ी लेना है, तीन खंडी लेना है चावल दाल, इस प्रकार से तय होता है। दो खंडी तीन खंडी ऐसे दाल तेल लिया जाता है और उसके बाद में वहीं पे शादी का दिन तारीख रखा जाता है। लड़के पक्ष से मतलब लड़की पक्ष को देना होता है, इसमें नकदी का लेन देन नहीं होता है, सिर्फ चावल दाल लेन देन होता है। और जैसे उसी चावल दाल को जैसे हम बारात जाएंगे, इधर से लड़के पक्ष से बारात जो जाएगा उसी को खिलाएगा वो।
1: उरांव समाज में कुड़ुक सादरी और सरगुजिया बोली बोली जाती है, लोकगीत भी इन तीनों जबान में गाए जाते हैं। शादी के उत्सव में जमकर नाच गाना होता है।

0: उड़ाव में शगुन विचार भी होता है।
1: अपशकुन भी हमारे रीति रिवाज में देखा जाता है कि जब लड़की देखने जा रहे हैं, मान लीजिए रास्ते में जाते समय कोई खाली घड़ा लिए हुए पानी भरने जा रहे हैं तो उसको अशुभ माना जाता है। साथ में जब वो ये लोग पहुंच जाते हैं, मान लीजिए सुबह का समय में पहुंच गए हैं और घर द्वार झाड़ू बुहार हो रहा है तो फिर उसे भी अशुभ मानते हैं। और जब लड़की देखने जाते हैं शुरू में, उस समय भी ढिबरी या लालटेन जो कुछ भी मतलब प्रकाश करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ढिबरी या लालटेन, उसको रात भर जलाए रखते हैं। मान लीजिए लालटेन या ढिबरी रात में बुत गई, उसको भी अशुभ माना जाता है और बात वहीं से कटुफ कर दिया जाता है, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती है। उल्लू का बोलना और साथ में सियार का बिल्ली का रास्ता को काटना, ये भी अशुभ माना जाता है। और जब ये हो जाता है तो फिर वहीं से वापस लौट जाते हैं।
0: विवाह के अवसर पर शगुन विचार का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि शादी के गीतों में प्रकृति पूरी तरह गुंथी होती है। इस लोकगीत में कहा गया है कि जेठ के महीने में कोयल बोलती है और आषाढ़ में झिंगूर, किंतु फागुन के आते ही मनुष्य का मन आह्लादित हो उठता है और तन थिरकने लगता है।

0: उरांव जनजाति में जन्म संस्कार धूमधाम से संपन्न किया जाता है। प्रसूता जब तक शुद्ध नहीं हो जाती तब तक छूत माना जाता है। फिलोमन टोपो कहते हैं,
1: हम लोग के समाज में उरांव सब जनजाति में उसको कुसुरैन बोलते हैं। वो महिला लोग जो एक या दो महिलाओं को बुलाते हैं वो कुसुरैन बोलते हैं उनको। तो ही महिला लोग जब तक उनके बच्चे नहीं हो जाते हैं तब तक मतलब उनको देखरेख करते रहते हैं, और वहां दूसरे लोगों को और अन्य पुरुष वर्ग सबको जाने नहीं देते हैं वहां पे। तो महिला लोग ही उनकी देखरेख करते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तब उसका नाभि वो तांबे के सिक्का में काटते हैं और उसको वो छुरी से काटते हैं। जब नाभि को काटते हैं तो उसको रस्सी से बांध देते हैं और उसको बुडरी काटना बोलते हैं। और बच्चा पैदा हो जाने के बाद जब तक नाभि नहीं गिरता है तब तक उसको छुआछूत मानते हैं, उसको घर के अंदर खाना पीना बनाने के लिए नहीं देते हैं। जब नाभि गिर जाता है उसकी माँ वो दरवाजा के पास ही गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं। उसके बाद में वो नहाने जाती है और नहा धो के आती है और उसी दिन से उसका छुआछूत खत्म होता है।
2: इस तरह जब नहाने के लिए जाती है कुआं में या नदी में या झरने के पास नहा धो लेती है तो फिर कुएं में जो लकड़ी का होता है उसमें वो सिंदूर लगा के आती है। उसी से पूरा जानकारी हो जाता है कि अब ये पवित्र हो गई है, अब वो कहीं भी आ जा सकती है या कहीं भी आ सकती है।
0: शिशु के आगमन पर परिवार पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। चारों ओर उत्सव का माहौल बन जाता है। नृत्य गीत से नवजात का स्वागत किया जाता है।

छट्ठी करते हैं, उनका बाल उतारते हैं। तो बाल उतारने के लिए भी जो उनके बच्चे के भाई हो या तो उसके दादा हो, वो सब मतलब कि उसके बाल को उतारते हैं। फिर उसको एक दोना में रखते हैं, बाल को दोना में रखने के बाद में उसको एक बर्तन लाते हैं, कांसे का बर्तन, और या तो उसमें

0: पानी रखते हैं, फिर धान लाते हैं एक दोना में और उसमें पहले पितर उतारते हैं। पितर उतारने के लिए एक दाना धान को मतलब कि पूरा उसके छिल निकालेंगे, उसके उसको डालेंगे ईश्वर के नाम से। उसके बाद में वहां जो उपस्थित रहते पंच के नाम से डालते हैं। उसके बाद में उसका जो पितर उतारते हैं जिसके नाम से पितर उतारते हैं तो उसके शुरू में तो उसके दादा के नाम से करते हैं। तो अगर वो तीनों अगर जुट जाता है तब वो बोलते हैं कि हाँ उसके पितर मतलब कि दादा के पितर से है। और यदि वो नहीं जुटता अलग अलग मतलब कि घूमता है पानी में तैरता है तब उसकी दादी के नाम से उतार और दाना डालते हैं। जब उससे भी जब नहीं पकड़ता है तब उसके नाना के तरफ वाला को लेते हैं। तो वो यदि वो सब मिल जाते हैं तब बोलते हैं कि सब वो नाना नानी दादा दादी सब आए हैं बोल के। और नहीं मिलते तब तक डालते रहेंगे उसको, और जिसको देखेंगे जिसके नाम से वो दाना सट गया वो पंच वो पहले उसको सटाते हैं। अगर वो दोनों सट जाता है तब बोलते हैं कि हाँ इसके नाम से पीतर है। जब वो सट जाता है तो उसको पानी में डुबा देते हैं। पानी में डुबाने के बाद में पानी को छानी में फेंक देते हैं या तो बच्ची के ऊपर ही डाल देते हैं उसको, और बच्ची को लेके जहां पानी गिरता है छानी से वहीं पर सुला देते हैं वहां पे। और उसके बाद बाल जो उतारते हैं उसको लड़की रहती है उसको नदी में बहा देते हैं, और लड़का रहता है या तो उसको डाढ़ी वो कहीं चुआ रहता है पानी उस जगह में लेके रख देते हैं। और वो मानना है कि ये दोनों बाल मतलब कि बरसात में बह के जिसे वहां दोनों मिलते हैं आगे जाके, जो जिस लड़की के साथ मिलता है या तो लड़के के साथ मिलेगा उसी के साथ उसकी शादी का संबंध जुड़ता है, इससे मतलब कि विश्वास था उस समय।
1: पारंपरिक उरांव समाज में महुआ से बनी शराब और अनाज से बने हड़िया का चलन काफी ज्यादा है। सरगुजा की जनजातियों में ऐसे मनीषियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने शराब के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ा। इनमें राजमोहिनी देवी और गहिरा गुरु के नाम उल्लेखनीय हैं। गहिरा गुरु का पारंपरिक उरांव समाज पर गहरा असर पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने मांस मदिरा का त्याग किया और भगत कहलाए जाने लगे, लेकिन पारंपरिक आस्था और विश्वास की धारा वैसी ही बहती रही। अंधविश्वास बना रहा। हारी बीमारी में डॉक्टर से ज्यादा भरोसा बैगा पर किया जाता रहा।
2: जैसे गांव में एक बैगा के नाम से जाना जाता है, अभी भी मतलब वो खत्म नहीं हुआ है गांव में, कि एक मुखिया पुजारी रहता है जिसको बैगा कहते हैं, वही मतलब पूजा पाठ करता है कहीं मतलब एक जगह निश्चित करके, कहीं पाठ हो या ये सरना हो, तो वहीं वो कोई भी गांव में घर में बीमारी आता है पशु पक्षी जानवर के लिए या आदमियों के लिए, तो उनका विश्वास है कि नहीं भगवान मतलब हम लोग से नाराज हो गया, और इसीलिए उन लोग वहीं पे मतलब वो बैगा को बोलते हैं, तो वो मुर्गी उर्गी इसको काट के मतलब उसके लिए खून बहाता है वहां मतलब चुहाता है। तो अगर ठीक हो गए तो उनका विश्वास है कि नहीं अब भगवान खुश हो गया हम लोग से, इसलिए हमारी बीमारी भी ठीक हो गई।
3: अब जैसे बुखार भी आ जाता है तो तेज बुखार हो जाता है या माथे में चढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाने के बाद बच्चा या कोई भी व्यक्ति सीरियस हो जाता है, तो फिर ये बैगा लोग जो होते हैं ओझामती करने वाले उनको बुलवा के फिर सूपा मंगवाते हैं, सूपा फिर थोड़ा चावल करके फिर उसको अपना जो मंत्र है जिस बीमार व्यक्ति के पास रख करके फिर वो सूपा में हाथ लगाता है और बजाता है सूपा को, फिर अपना जो मंत्र है उसको बोल बोल करके उसको उस बीमारी को या उसके ऊपर कोई भी शंका समाधान है अंधविश्वास का जो है उसको हटाने की मंत्र पढ़ता है।
1: अन्य जनजातियों की तरह उरांव में भी गोत्र का बहुत महत्व है। गोत्र की उत्पत्ति प्रकृति के उपादानों से हुई है।
4: हम लोगों को पता है कि एक्का को बोलते हैं गोत्र में केछुआ, किंडो बोलते हैं वो भी मछली होता है, मींज बोलते हैं वो भी मछली होता है, खेस बोलते हैं वो धान होता है, बंदर जो कहते हैं तिग्गा गोती है, टोपो होते हैं वो भी केरकेटा होते हैं चिड़िया होता है।
1: कुड़ुक एक समृद्ध बोली है। शोधकर्ताओं ने हाल फिलहाल कुड़ुक बोली का शब्दकोश तैयार किया है। कहा जाता है कि इस बोली की पहले लिपि भी थी।
5: कहा तो जाता है कि कुड़ुक बोली की स्क्रिप्ट है जो कि उरांव के लंबे प्रवास के दौरान कई उथल पुथल से गुजरते हुए उन्होंने वह जो लिपि है वह खो दिया है, और अभी झारखंड में इसके लिए कुछ जोर किया जा रहा है जो कि एक नई लिपि का ईजाद किया गया है जो अभी तक प्रचलित नहीं हुआ, प्रचलन उसका नहीं हुआ है। झारखंड सरकार उसको बढ़ावा जरूर दे रही है, परंतु

0: अभी तक की उरालों के उनकी अपनी लिपि थी उसके लिए स्पष्ट और कहें कि प्रमाणित कोई सबूत अभी हमारे हाथ में नहीं है।
1: धर्मांतरित उरांव मृतक को दफनाते हैं, जबकि पारंपरिक उरांव सुविधा अनुसार दोनों प्रथाएं अपनाते हैं।
2: मर जाते हैं तो अपने अपने आदमी को सबको बुलाते हैं, आ जाते हैं तो उसको नहवाते हैं, धोवाते हैं और तेल उल लगाते हैं और मस्त सिंगार के घर से दफना निकले जाते हैं। जलाते भी हैं, दफनाते भी हैं, दोनों करते हैं। और वहाँ ले जाके धान ले जाते हैं और दाल उल ले जाते हैं। मरने के बाद अब खाना बनाते हैं, खाना खिलाते हैं, वहाँ गड्ढा के पास चाहे वो लकड़ी के पास ले जाके वहाँ डालते हैं, फिर जला देते हैं।
1: समय के साथ उरांव समाज के रीति रिवाज, धार्मिक आस्थाएं और रहन सहन में बहुत फर्क आया है, किंतु एक चीज आज भी नहीं बदली। यह समाज अपने पुरखों को बेहद शिद्दत से याद करता है। उनकी स्मृति में प्रतिदिन भोजन से पहले एक छोटा सा अंश जमीन पर डाला जाता है। पुरखे ही तो थे जिनके कारण आज भी उनका अस्तित्व बना हुआ है। पुरखों को याद किए जाने वाले गीतों में कृतज्ञता का भाव स्पष्ट महसूस किया जा सकता है।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी संग्रहालय से धारावाहिक हमन आन छत्तीसगढ़िया का 15वां भाग उरांव जनजाति। लेखक थे श्री तपन बनर्जी और प्रस्तुति लखनलाल भौरे की थी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।

कार्यक्रम के पहले गीत के लिए फरमाइश आप सभी की प्राप्त हुई। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू, टेकापार बालोद से सचिंता, राम यादव, रवि और प्रकाश यादव, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, मीना अश्वनी और विपुल कांबड़े, चरडोंगरी पिपरिया कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जयकिशन और कुमारी साहू, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, सनावत से

शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ान, गंडे टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक कुमार और जयश्री देवांगन, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और दीपेश वर्मा और पलारी रोहासी से डगेसर राम साहू, घनश्याम साहू, नूतन साहू और कौरव साहू। आप सभी के पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सनम रे का ये गाना।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए पत्र प्राप्त हुए आप सभी के आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा राजू वर्मा माया और शोभा वर्मा धवलपुर गरियाबंद से गेंदलाल मिश्रा चंद्रकांती सोनाली और अर्चना मिश्रा सिमगा से लवकुश सेन प्रहलाद सेन आदित्य और आशीष सेन रामचंद माखीजा सविता माखीजा स्वाति और पूजा माखीजा आप हैं बनिया पारा धमतरी से पावर हाउस भिलाई जामुल से विकास वर्मा खुशी वर्मा और ग्रंथ वर्मा दतरंगी से विश्राम यदु पार्वती प्रतिमा और रीना यदु रसेड़ा अकलतरा से योगेश साहू कीर्ति कुमार साहू संध्या और टिकेश्वर साहू हसदा नंबर 2 से जितेंद्र साहू कमलेश साहू और पायल साहू पलारी रोहासी से डकेसर गौरव साहू नूतन और घनश्याम साहू बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी सारिमपुर से राज एस डी अंसारी मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और पलारी से प्रकाश वर्मा निखिल प्रिंस और यशस्वी वर्मा आप सभी के पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हेट स्टोरी 3 का गीत अरमान मलिक की आवाज़ में।

फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत, ये गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए ईमेल प्राप्त हुई आप सभी श्रोता साथियों की। आप हैं मेधापारा लोरमी से मोहराम पटेल, मानूराम, शोभा और पुनाराम पटेल, हटौत बाजार लाहौत से कमलनाथ पटेल, राकेश, समीर और राजकुमारी पटेल, बिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल दिवांगन, कौशल्या दिवांगन, हेमलता और डिम्पल दिवांगन, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डले, नंदा बोर्डले और हनुमान बोर्डले, बन बघेरा जिला राजनांदगांव से योगेश सरवा, आशा सरवा, नीरज और अंजलि सरवा, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार, योगेश साहू और राहुल साहू, धरसीमा से छेदुलाल यादव, सीता यादव, बाघामुड़ा कुमाखान से प्रज्ञानंद दिवांगन, नंदिनी, प्रकाश और गायत्री दिवांगन, संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, लोहारडीह कवर्धा से अशोक साहू, लालिमा साहू, खुशांत और निशांत साहू, भूत खचार लोरमी से दुर्गेश मरकाम और निर्मला मरकाम, बागबाहरा भदरसी से पन्नालाल, खुशबू, तारा और कौशल सेन, गणेश धाम परसुली से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाउदास, जयदास और देवेश दास, गंडे से मूलचंद, मीनाक्षी पटेल, आशीष और सीमा पटेल और हिच्चा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस, शांति और ऋचा वैष्णव। आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दम लगा के हईशा का गीत पापोन की आवाज़ में।

पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी भानु और प्रिया दिवाकर, भाटापारा से दान सिंह रावत पद्मिनी शुभम और सौरभ रावत, मोहल्ला मानपुर से महेश निषाद रंबारानी निशिल निखिल और नैतिक निषाद, गेंदाटोला बाजार राजनांदगांव से बीरेंद्र गुप्ता अंजलि योगिता और गजेंद्र गुप्ता, चांदनी चौक गंडे पंडेरिया से पवन सेन प्रभा देवी सेन लक्की और रविंद्र सेन, देवरी भाटापारा से मुकेश रजक युवान रजक हव्या और तन्नू रजक, बेमेतरा से पूर्णिमा सारथी पूजा आरती और भाव्या सारथी,

मयंक रेडियो श्रोता संघ नवा करकटे से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत सीमा और शारदा वर्मा, भाटापारा से श्याम रतन मुंदड़ा, रचनाकार मुंदड़ा, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर, और यहीं से हैं मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज और सुजला ठाकुर, मुंगेली से नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर, सिरमुंदा से सूरज दामले, हिमा दामले, कांतिबाई और राजेंद्र दामले, भाटापारा से रमजान खान, सिकंदर अशरफ खान, नासिर खान और अयाज अल्फेज खान, भाटापारा से ही हैं राधेश्याम टेलर, रतिल प्रसाद साहू, करही भदर से देवेंद्र सोनवानी, लक्ष्मी पुरुषोत्तम निर्मलकर और गीतिका निर्मलकर, चनागांव जिला धमतरी से धर्म सिंह, विष्णु साहू, गजानंद नेताम और नंदलाल मरकाम, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजोरिया, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु और विनय ठाकुर, सोनीहरी से सुब्रत चौधरी, सुभाष वार्ड भाटापारा से ईश्वरी यादव, ग्राम कोरदा से कलीराम यादव और छतराम यादव, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पैडमैन का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

इसके साथ ही फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत ये गीत समाप्त होता है। इसे आज आपके लिए पेश किया जया ने। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। 1 बजने को है हिंदी समाचार। हम कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने

0: में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी GST खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, मीडियम वेव और FM बैंड पर। 1:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत था, धुन तैयार की थी एसडी बर्मन ने और फिल्म का नाम था अभिमान। लीजिए आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की ही आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है वापस।

पत्थर के सनम, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। शब्द रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में सौदागर फिल्म का ये गाना। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

फिल्म सौदागर के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

स्पोर्ट्स स्कैन ये कार्यक्रम सुनेगा रात 8:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती आप सुन सकते हैं रात 9:30 पर और संगीत का अखिल भारती कार्यक्रम रात 10:00 इसमें सुनेगा राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

घर आंगन महिलाओं का ये कार्यक्रम सुनेगा 1:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे आज के कोट, विषय होगा चिरई चिरगुन हमर जीवन के अहम हिस्सा, विकास के रद्दमा बाढ़त नारी। इस विषय पर सुनेगा वार्ता, वार्ताकार होंगी श्रीमती संध्या ताम्रकार। साथ ही आनंद लीजिएगा एक ही कलाकार कार्यक्रम का और चर्चा सुनेगा ग्रीष्मकाल में सौंदर्य के राखव ध्यान और बरसात पूर्व अनाज के रखरखाव। युवाणी शाम 5:10 पर। इसमें सुनेगा पनगोट, विषय होगा चल अकेला रे, आप मन की चिट्ठी और माटी के गीत। लोक संगीत शाम 6:30 पर। इसमें कलाकार होंगे कौशल कुमार भानु और साथी, और इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे चतुर राम साहू और साथी। चित्रपट संगीत का आनंद आप ले सकते हैं दोपहर 2:00 और 2:30 पर। चित्रपट संगीत आप सांध्यकालीन सभा में भी सुन सकते हैं, समय होगा शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर।

चौपाल शाम 7:21 पर आप सुनेंगे। इसमें आज की बात का विषय होगा फसल उत्पादन में सूक्ष्म पोषक तत्व के महत्ता। किसान वाणी में होगी आज की सलाह। इसमें सुनेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान 2026। इस विषय पर डॉक्टर देवेंद्र कुर्रे, सहायक प्राध्यापक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा दी गई जानकारी। साथ ही होगा गीत संगीत और आज का प्रश्न।

श्रोताओं, आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे, राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती आप सुन सकते हैं रात 9:30 पर, और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनेगा रात 10:00। इसमें आज आप सुनेंगे राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवाणी में शाम 5:10 पर सुनेगा अपन गोठ, विषय होगा चल अकेला रे। साथ ही क्रम सुनेगा आप मन की चिट्ठी और माटी के गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे कौशल कुमार भानु और साथी, और इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर आप सुन सकते हैं चतुर राम साहू और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी लोक गीत। चित्रपट संगीत सुनेगा दोपहर 2:00 और 2:30 पर, और हमारी सांध्यकालीन सभा में चित्रपट संगीत का समय होगा शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

0: घर आंगन कार्यक्रम सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला करुणा वर्मा के राम राम।
1: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बहनियों, हमर जिंदगी में चिड़ै चुरगुन हमर जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मन सिर्फ सुंदरता बढ़ाती नहीं बल्कि प्रकृति और मानव जीवन दोनों पर बहुत ही जरूरी है। ये मन प्रकृति के संतुलन बनाए रखते काबर की ओमन कीड़ा मकोड़ा खा के उखर संख्या ला नियंत्रित रखते। अगर ये नहीं रही त कीड़ा बहुते बाढ़ जाही और फसल ला नुकसान पहुँचाही। बहुते अकन चिड़ै मन फल ला खा के अलग अलग जगह मा बीज ला गिरा थे। एखर से नवा नवा पेड़ पौधा उगते और जंगल हा बाढ़ थे। पर्यावरण मा चिड़ै मन के संख्या और उकर व्यवहार मा हमन जान सकत हन कि पर्यावरण ठीक है या खराब। अगर चिड़ै चुरगुन कम हुआ था वे त ये खराब पर्यावरण के संकेत आए।

चिरई के चहचहट सुन के मन ला शांति मिलथे के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुते अच्छा होथे। खेती किसानी मा सहयोग करथे, कई कीरा मन हा कीरा ला खा के किसान के मदद करथे जेन ले फसल सुरक्षित रहिथे। हमर संस्कृति और परंपरा मा हमर तिहार गीत कहानी और कहावत मा घलोक चिरई चुरगुन के खास जगह हवे। ये मन संस्कृति के हिस्सा आए संग मा हमर पर्यावरण के सुंदरता ला तो बढ़ाथे। रंग बिरंग चिरई प्रकृति ला सुंदर बनाथे जेन ले पर्यटन और लोगन मन के आकर्षण ला बढ़ाथे। और अभी तो गर्मी के बेरा है बहनी हो, तो हमन अभी थोड़ी दाना पानी अपन छत में राखन, काबर हम मानव मन ला तो भूख प्यास लागथे वैसने उमन ला भी लागत होही। तो हमन भी अपन छत बालकनी या को घर मा कटोरी में पानी रखन। चिरई चुरगुन के खतरा जैसे पेड़ कटाई, प्रदूषण, मोबाइल टावर के रेडिएशन, शिकार, पानी के कमी, ये सब खतरा के कारण आए जेकर से चिरई चुरगुन कम हुआ था। हमन हा का कर सकथन, पेड़ ला लगा सकथन, पेड़ ला बचा सकथन और चिरई मन बर घोंसला बनाए में मदद कर सकथन। घर के छत में पानी और दाना ला राखन, शिकार करना बंद करन, पर्यावरण ला साफ राखन, ये सब करे से हमन चिरई चुरगुन ला बचा सकन। चिरई बाच ही प्रकृति सजी, पक्षी रही ता जीवन महकी। ता एकरे संग सुनथन ये गीतला।

0: बहनियों, आज क्रम ही एक ही कलाकार के गीत के अउ अभी हमन ह सुनत रहेन एक ही कलाकार के गीत अउ आज के हमर कलाकार हवे माया वैद।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बहनियों, आज के बेरा मा हम नारी परानी मन समाज, परिवार और देश के विकास मा बहुते भूमिका निभावत है। पहली के बेरा मा नारी मन ला घर तक सीमित माने जावत रहिस, फिर अब नारी हा शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति, व्यापार, खेती, सेना, हर क्षेत्र मा आगु बढ़त हवे। एखर बारे मा और जानकारी आप मन ला वार्ता के माध्यम ले सुनावत हन। और आज के हमर वार्ता के विषय हवे विकास के रद्दा मा बाढ़त नारी। वार्ताकार बहनी हवे श्रीमती संध्या ताम्रकर। ता आवो सुनथन वार्ता विकास के रद्दा मा बाढ़त नारी।
5: घर आंगन कार्यक्रम के सुनैया सब्बो संगवारी मल्ला संध्या ताम्रकर के जय जोहर। तो संगवारी हो, आज हमन मन जानबो के आज जौन विकास के काम ह देश मा हुआ थे तेन मन नारी के कतका भागीदारी है और ओ मन ह ये रद्दा म चल के कतका विकास करे हे, कतका आगू बढ़े हे। त संगवारी हो, पुराना जमाना म भले ही नारी मन जो भी स्थिति में दे से, फिर अभी के जमाने में नारी मन की स्थिति बहुत बदल गई है। ओहा पुरुष के कंधा में कंधा मिला के चलत है। आज के नारी ह हर क्षेत्र म आगू हवे, चाहे वो राजनीति हो, विज्ञान हो या फिर सामाजिक। आज के नारी ह पढ़त है, शिक्षा लेवत और देवत है और जागरूक होते। संगे संग आज भारत के नारी मन विकास कतका करत है, वह सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के योजना आवत है, ओखर लाभला उठावत है। सरकार द्वारा बहुत अकन योजना शुरू करेगी है, जेमा नारी मन ह अपन अपन पसंद या कहान के अपन मर्जी के या फिर सरकार द्वारा उन मल्ला बहुत सारा विकल्प देवत है, जेमा ओ मन अपन कौशल के अनुसार अपन मन मुताबिक कार्य क्षेत्र में आगू बढ़त है। भारत के नारी के सफर हा पहली के जमाना ले ही प्रेरणादायक और परिवर्तन के रही से। एखर सेती कहे जाते नारी हा त्याग और करुणा के मूर्ति हर है। नारी हा हर युग म अपन शक्ति और सामर्थ्य द्वारा अपन ला सिद्ध करे है, चाहे वो घर में रहे या बाहर में या फिर कोई भी क्षेत्र में हो, वह अपन उपस्थिति ला दर्ज कराए है। एखरे सेती भारत में नारी ला गृहलक्ष्मी और परिवार के धुरी कहे जाते। लेकिन आज के नारी घर परिवार में सीमित नहीं रह गई है, वह प्रत्येक क्षेत्र में अपन प्रदर्शन करत है, चाहे वो जमीन हो या आसमान। आज वो हर डॉक्टर, शिक्षिका, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार, खिलाड़ी, राजनीति में और व्यापार, ऐसे बहुत अकन उदाहरण दिए जा सकते जेमा नारी है अपन मेहनत कर

के अपन अउ अपन देश क्षेत्र के विकास करत हे अउ देश के नाम ल रोशन करत हे। आज के नारी अंतरिक्ष में भी पहुंच गए हे, लेकिन यहू बात सच है कि भारत के नारी ला अभी भी कई ठन चुनौती के सामना करना पड़त हे, जैसे कि लैंगिक भेदभाव, सुरक्षा संबंधी चिंता और सामाजिकता। एकर बावजूद भी नारी है अपन विकास के रद्दा के सब बाधा ला पार करत हुए आगू बढ़त हे। स्वतंत्रता के पहली के समय के नारी के बात करथन, ओहा जोन समय सामाजिक कुरूति के चलते नारी ला बहुत सारा कुरूति के सामना करना पड़े, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है और सती प्रथा, जेखर ले नारी के स्थिति में गिरावट आ रही से। फिर स्वतंत्रता के बाद नारी के स्थिति में बहुत सुधार आई। शिक्षा के प्रचार प्रसार ले आज के नारी अवगत हो के नारी शिक्षा ला बढ़ावा मिलिस और शिक्षित हो के नारी है अपन शक्ति ला पहचान के नारी सशक्तिकरण के माध्यम ले आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सब ले आगू बढ़ के नेतृत्व करे के क्षमता विकसित होइस। ऐसे करके आज के नारी है केवल विकास में भागीदारी नहीं करत है, बल्कि विकास में अगुवाई भी करत है। आज हमारे भारत देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हाँ नारी सशक्तिकरण में बहुत बड़े भूमिका निभाते हैं। एकर ले नारी मन ला शक्ति मिली और आगू बढ़े के क्षमता विकसित हुआ थे। नारी है सशक्त और सबल बने तेखर से ती सरकार है बहुत सारा योजना निकाले है। गांव-गांव मन में नारी के विकास बर सरकार द्वारा बहुत ले योजना चलाए जाते, जेखर द्वारा नारी है ओखर लाभ उठा सके। आज की नारी अंतरिक्ष कहले, हवाई जहाज के परिचालन या फिर देश ल चलाए के या के दुनिया भर में भारत के प्रतिनिधित्व करे के बर भी नारी है पाछू नहीं है। वो है दूसर देश में जाके भारत के राजदूत बन के भारत के नेतृत्व करत है। आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में कल्पना चावला के नाम है अमर हो गए है। ओखर नाम ला सुनहरा अक्षर में लिखे गए है। दूसर नाम है सुनीता विलियम्स के, जिन भले ही अमेरिकी नागरिक है, फिर ओखर पिता गुजरात के डॉक्टर दीपक पांडे है, जिन गुजरात के मेहसाणा के रही से। ये सब ला देख के नारी मन में शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि बढ़े है और ओहा विज्ञान, गणित, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तेजी ले प्रवेश करत है, जेखर ले ओमन नवाचार संचालित नौकरी में अपन जगह बनात है। महिला मन के रुचि हर तरह के कार्य करे में रही थी। एक समय में ओमन घर के जिम्मेवारी ला निभावा थे, तो दूसर बेरा बाहरी कार्य में अपन नौकरी में भी अपन तत्परता दिखावा थे और सब को तिल ले करके अपन परिवार ला आर्थिक रूप में मदद करके सुदृढ़ करत है। नारी मन में नेतृत्व करे के बहुत अधिक क्षमता होती। ओला अगर कुछ काम के बागडोर दे दिए जाए तो वो कार्य ला ओखर गंतव्य में पहुंचा के ही दम ले थे। आज के नारी है राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में निर्णय ला लेके अपन भागीदारी दे थे। विशिष्ट प्रबंधन के भूमिका में महिला मन के हिस्सेदारी 2017 में 17% रही से, तेन हा आज बाढ़ के 36% हो गई है। गांव-गांव मन में स्वयं सहायता समूह के माध्यम ले ग्रामीण महिला मन ला आत्मनिर्भर बनावा थी। जतका भी महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यापार है आज 2 गुना होके 1.92 करोड़ तक पहुँच गए है। आज के नारी है नवा तकनीकी शिक्षा ला ग्रहण करके देश के विकास में भागीदारी निभावत है। वह तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके नवा उपकरण के निर्माण कर ओला कैसे चलाना है, जेखर ले सामान के उत्पादन ज्यादा ले ज्यादा हो ऐसे उपकरण के निर्माण करत है। यह कोनो नवा आविष्कार नहीं है, बल्कि अपन ज्ञान के उपयोग ला करके नारी है समस्या के समाधान ला करके अपन और संग में काम करैया मन के जीवन ला आसान बना थे। सरकार हम महिला सशक्तिकरण के खातिर बहुत सारे योजना बना है, जेमा महिला मन आर्थिक रूप में सक्षम हो। सरकार हम नारी मन ला राजनीति में भागीदारी हेतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत संसद में राज्य विधानसभा में महिला मन पर 33% के आरक्षण करे गए है, जेखर फायदा नारी ला मिला थे और आगू बढ़ा थे। वैसने है पंचायती राज में 50% ले अधिक के भागीदारी है। नारी अदालत में महिला मन के मुद्दा के जल्दी समाधान करे के विशेष पहल करेगी है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर विवाहित महिला मन कमजोर मत रहे करके महिला के खाता में 1,000 रुपया महीना डाले जाते। संगवारी हो, सरकार द्वारा जिला और गांव-गांव मन मन नारी मन पर ऐसा योजना निकाला थे।

0: होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, मास्टर शेफ के कोर्स होते जेमा महिला मन ह ए कोर्स ल करके बड़े बड़े अस्पताल, होटल, शादी ब्याह मन मन ला सुचारू रूप से चलावत है। आज की नारी कोनो कार्य ल करे बर पाछू नहीं हट रहे, हर कार्य ला वो अपन पसंद ले करत है और लगातार तरक्की करके विकास के रद्दा में आगू बढ़त है। संगवारी हो, आज के महिला मन ह केवल पारंपरिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर हो गई है। वो राष्ट्र के निर्माण में भी सहभागिता निभावत है। महिला मन विभिन्न प्रकार के व्यापार शुरू करके लैंगिक मानदंड ला चुनौती भी देवत है। आज कौन से काम है जिनला महिला मन नहीं करत है। संगवारी हो, सन 1985 में एयर इंडिया के कलकत्ता से सिलचर के बीच पूरा महिला कर्मचारी मन द्वारा हवाई यात्रा ला संचालित करे के ए पहली ऐतिहासिक हवाई उड़ान सफलतापूर्वक संचालित करे गे रही से। नारी हर हर युग में समाज के विकास और प्रगति में अपन भूमिका निभात है। ओह केवल परिवार के संरक्षक ही नहीं बल्कि समाज राष्ट्र के आधारशिला भी हरे। संगवारी हो, समाज में नारी के बढ़त भूमिका के संकेत है कि आज के दौर में नारी के स्थान समाज के केंद्र में है। पिछले कुछ दशक में नारी के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुए हैं जेखर ले नारी अब समाज के विभिन्न क्षेत्र में सक्रिय रूप ले भाग लेवत है और लगातार आगू बढ़त है। आखिर में यही कहूँ कि माँ के बाद में पत्नी के अवतार राष्ट्र निर्माण और विकास में महती भूमिका निभात है। भारतीय समाज में नारी है परिवार के मुख्य धुरी होते जिन एक गृहिणी के रूप में राष्ट्र निर्माण और विकास में अपन उत्कृष्ट भूमिका निभात है। नारी है संस्कृति, संस्कार और परंपरा के वास्तविक रूप में संरक्षिका हरे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
1: बहनियों, अभी हमन हा सुनत रहिन वार्ता। वार्ता के विषय रही से विकास के रद्दा मा बाढ़त नारी और वार्ताकार रही से श्रीमती संध्या ताम्रकर। हमर ये वार्ता कैसे लागिस आप मन हा अप जरूर बताहु अपन चिट्ठी और ईमेल के माध्यम ले।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: एकरे संग सुनथन एक ही कलाकार के दूसरैया गीतला और आज के हमर कलाकार हवे माया वैद्य। ता आवा सुनथन गीतला।

बहनी हो, जैसे गर्मी के दिन आते हमन ला घर ले कहीं ले निकलत हवन या जात हन त हमर त्वचा म जलन करे ला लागथे। काबर के तेज धूप, पसीना और धूल मिट्टी ले त्वचा संग बाल ह घरो प्रभावित होते। त हमन ह अपन सौंदर्य के कैसे रख रखाव करन, एखर बारे में आज मैं हाँ चर्चा करूँ। सबले पहली तो बहनी हो, हमन कहीं जावत हन त अपन सिर ला ढाकन और दुपट्टा या गमछा में बने बांध लेवन। खीरा ला पीस के उखर रस ला गुलाब जल मा मिलावन और मुंह में लगावन, एखर से ठंडक देते। हफ्ता में एक दो दिन दही और बेसन ला एक चम्मच मिला के थोड़ी हल्दी मिला के लगावन, एखर से रंग निखरते और संग में जो पसीना के जो गंदगी रहते ना वो हट जाते। सबो के घर में तो एलोवेरा हो ही ता तुरंत ओकर ताजा रस ला लगाए ले धूप ले जलन ठीक करते और त्वचा ला नरम बनाते। ये तो एकर संग जतका हो सके दिन मा कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीवन और ज्यादा फल खावन, तरबूज खीरा पपीता ये सब शरीर ला ठंडा रखते और त्वचा ला चमकदार बनाते। हो सके तो जब ही काम जरूरी है तभी हमन हा घर ले निकलन। बहनी हो, बहनी हो, जैसे बरसात के नाम सुनथन ता हमर मन एक ही ख्याल आते, बरसात मा हमन अपन अनाज ला कैसे राखबो। ता हम सब बहनी मन बरसात के पहले अनाज के सही रख रखाव करना बहुत ही जरूरी है। और सही ढंग ले भंडारण नहीं करबो ता अनाज मा सीलन, कीड़ा, फफूंद और खराबी आ सकत है। ता सबले पहले अनाज ला बने 3-4 दिन सुखावन, जैसे गेहूँ, चना, दाल जैसे अनाज ला तेज धूप मा सुखा लेवन। भंडारण जगह बने साफ रखन और सूखा जगह रहे। जैसे गेहूँ सूख जाते ता ओला तहान उमा नीम पत्ती ला डाल के बने बोरा या ड्रम कोठी मा रखन, जहाँ नमी या सीहल झन आए। थोड़ी भी नमी आते तहान अनाज हा खराब हो जाते। नीम के पत्ती डाले ले कीड़ा नहीं लगे और अनाज हा बहुत ही दिन तक सुरक्षित रहते। कोनो भी अनाज ला बोरा मा रखत हन ता जमीन ले थोड़ी ऊपर रखो, लकड़ी के पट्टा या फिर ईंट तखत, एखर ले नीचे के नमी अनाज तक नहीं पहुंच पाए। संग मा बेरा बेरा मा जांच जरूरी जरूर करन और चूहा ले बचा के रखन। जरूरत पड़े ता सुरक्षित भंडारण

आ दवाई के उपयोग कर सकत हन। फिर प्राकृतिक तरीका हवे नीम पत्ती, सूखा मिर्चा, राख, ये सब के उपयोग करके अनाज सुरक्षित राख सकथन बहनी हो। और जतका हो सके नमी वाले जगह मा हमन ह अपन अनाज ला झन राखन। नमी वाले जगह में राखबो तो हमर अनाज ह खराब हो सकत हे और ओमे फफूंद आ सकत हे। एकरे संग बहनी हो मोर घड़ी ह घलोक इशारा ला करत हवे, ता हमर कार्यक्रम ह कैसे लागिस आप मन ह जरूर बताहु अपन ईमेल और पाती के माध्यम ले। ता एकरे संग अब मोला देव विदा और झोंक मोर यानी करुणा वर्मा के माया ले भरे राम राम।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है आप आए बाहर आई।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: लीजिए आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कुदरत का गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत और धुन तैयार की है RD बर्मन ने।

आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत है, बासु मनोहारी का संगीत, और फिल्म का नाम है सबसे बड़ा रुपया।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप इसी सभा में 2:30 पर फिर सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: अमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। भारतের सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने

0: वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
2: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के

0: भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
1: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है।

0: इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, मीडियम वेव और FM बैंड पर। 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।
3: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
4: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
5: बड़ी दूर से आए प्यारे का तो फरमाए।
3: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
6: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
3: कभी कोई किस्सा याद आता है।
7: यादें।
3: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
8: मुझे कुछ कहना है,
9: मुझे भी कुछ कहना है।
3: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
10: सुनिए।

कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की, संगीत मदन मोहन का और फिल्म का नाम है गेटवे ऑफ इंडिया।

0: ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत था, धुन तैयार की थी चित्रगुप्त ने और फिल्म का नाम था भाभी।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हों, फिर पढ़ के भुला जाते हों।
0: अरे तो सुने करना।
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: आइए आपको सुनवाते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। धुन तैयार की है ओपी नैयर ने, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की हैं और फिल्म का नाम है नया दौर।

आरती, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है रोशन ने।

ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना थी शैलेंद्र की, धुन तैयार की शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। लीजिए आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का है और फिल्म का नाम है आस का पंछी।

0: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वर में अभी आपने सुना फिल्म अमरदीप का गीत। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की थी और संगीत था सी रामचंद्र का। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.8 मीटर्स अर्थात 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं ये सभा यहीं संपन्न होती है। 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
3: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतের सार्वभौमत्व ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
2: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा, किसी अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनके आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
4: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़े पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपे जाली समर्थन पत्र की कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवी

मन भावन प्रोग्राम की शुरुआत आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। और जी शनिवार है, शनिवार की आपकी दोस्त सीमा वर्मा एक बार फिर आपसे मुखातिब है आपकी बहुत सारी फरमाइशें लेकर। और जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ट्यून इन किया है, हम आपको बता दें कि आप एफएम गोल्ड 100.1 के साथ हैं। एक प्रोग्राम शुरू होता है जी जिसका नाम है मन भावन, और इसमें आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं? fmgoldairdelhi@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं, fmgoldairdelhi@gmail.com। और हर बार की तरह पहला गीत मेरी फरमाइश का आप सबके लिए। आप मुस्कुराते रहिए और हम तक अपना संदेशा पहुंचाते रहिए। fmgoldairdelhi@gmail.com। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार।

एफएम गोल्ड सुन रहे हैं जी आप, ये है 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड AIR delhi@gmail.com पर आपको हमें अपना संदेशा भेजना है। जो लोग हमें रेगुलरली मैसेज करते हैं उन्हें ज़रूरत नहीं है पता बताने की, लेकिन जिन्होंने अभी तक मैसेज नहीं किया है और हमेशा सुनते हैं लेकिन कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि मैसेज करें, आप करिए ना fmgold@delhi@gmail.com पर। अब हम अपने शुरुआत करते हैं जी आपके संदेशों की, और यहाँ पर एटा से हमारे पास नबी हसन अब्बासी हैं, शहनाज अब्बासी हैं और नवेद हसन साहब हैं, सुहेल हसन हैं, रसीद वारसी हैं, अनम अब्बासी हैं, यशफ अब्बासी हैं और राउ से कौन हैं ये, मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन, ये इन्होंने संदेशा भेजा है। और आपके ज़्यादातर संदेशे जो हैं वो कहते हैं कि जी आप कोई भी गीत आप सुनवा दें, तो ठीक है आपका जो फरमाइश है वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं किसी और के मैसेज के साथ। और हमारे पास जी धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा,

और ईशान चिंपा और पूजा परिहार का ये मैसेज आया है, भोपालगढ़ राजस्थान से इनका ये संदेशा आता है। वहीं और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बबलेश पंवार का ये मैसेज है, डैनी है, इनके साथ मनीष है और इन्होंने बाड़मेर से हमें ये संदेशा भेजा है। रामदेवरा से दिनेश चौहान हैं और ये कौन है, डांगरी से हमारे पास बाबूराम जयपाल जी हैं और एक और नाम इन्होंने भेजा है खुदा बख्श खलीफा। तो अब आपके मैंने नाम पढ़ दिए हैं, काफ़ी सारे नाम पढ़ दिए हैं, अगर आप कहते हैं तो एक गीत हम सुनवाते हैं। एक संदेशा और आ गया अभी अभी ऊपरकोट बुलंदशहर से आया है, मोहम्मद सैद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज हैं, फरदीन हैं, सुहान हैं, अरजान हैं और अबान अब्बासी हैं। और काफ़ी सारे संदेशों के बाद एक बहुत खूबसूरत सा गीत, अपने ज़माने का बहुत हिट गीत रहा, जाना माना गीत रहा, लेकिन अगर हम इमोशंस की बात करते हैं, इंसान के इमोशंस की बात करते हैं, ज़माने आगे बढ़ जाते हैं, इमोशंस वहीं के वहीं रहते हैं। आज भी

किशोरदा की आवाज़ में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से अभी ये गीत सुना। आपके जो संदेशे हैं वो मुझ तक पहुंच रहे हैं। मन भावन प्रोग्राम है जी, एफएम गोल्ड 100.1 है, और जिस पते पर आपको हमें संदेशा भेजना है वो एफएम गोल्ड aiardelhi@gmail.com पर। अब अगला संदेशा आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा और चैतन्य मस्कीन है, इनके साथ मेघा है, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और किशु रिधान खुराना है। इन्होंने हमें संदेशा भेजा है। ज़्यादातर आपके मैसेजेस में यही लिखा होता है कि आप इंक्लूड कर लें, लेकिन हम भी तो जाने ना कि आपके जो फरमाइश है वो क्या है। कई बार पता है गीत भी याद नहीं आता है एंड टाइम पर, जब कभी ये उस तरह से हो जाता है जैसे चुटकुले नहीं होते हैं कि भाई एंड टाइम पर आपको चुटकुला याद नहीं आता है, और जब आप अकेले बैठे होते हैं तो आपको एकदम से चुटकुला याद आ जाता है। यही बात शेरों के साथ भी होती है, आप बहुत सारे शेर आते हों लेकिन उस मौके पर वो चीज़ याद नहीं रहती है। तो ऐसा ही शायद आपके साथ है, अगर ऐसा है तो चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर शहादरा से वीना मस्कीन और तुलसी मस्कीन जी का है, मुझे लग रहा है ये जो मैंने अभी संदेशा पढ़ा ये आप ही ने दोबारा से भेज दिया है शायद। बहरहाल कार्यक्रम मनभावन पेश जो कर रही हैं दीदी जी, हमारा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। अच्छा नमस्ते से आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, हेमलता हैं, हिना हैं और लालगिरी गोस्वामी हैं, इनके साथ हर्षित हैं और खुशी गोस्वामी भी हैं। और यहाँ पर एक और संदेशा चलिए मैं ले लेती हूँ, ये आया है जी हमारे पास, किसका है जी, कस्बा गुन्नौर यूपी से है, फारूक अली खान साहब हैं, फैजी फरजान हैं और फरहीन, फरहान और फाहिरा ताहिरा हैं इनके साथ। अब आप कहें तो गाना सुनवाऊँ या एक दो और संदेशे मैं पढ़ लूँ। यहाँ पर छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवगन का संदेशा आया है, रोशन लाल देवगन है और हेमलता डिम्पल देवगन है, पूरा का पूरा परिवार है और आप हमें सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और नाम है किशोर गुप्ता और साधना रानी है, इन्होंने अमरावती से हमें संदेशा भेजा है। और आपको भी अगर इस तरह से जी कर रहा है हमें संदेशा भेजने का तो आप फटाफट नोट करें fmgoldaiardelhi@gmail.com, इस पर हमें संदेशा भेजिए, अपनी फरमाइश भेजिए, आज आपका कोई ख़ास दिन है तो उसको भी मेंशन कीजिए, आज आपका मूड बहुत अच्छा है या मूड बहुत ख़राब है वो भी मेंशन कर दीजिए। छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे पास प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का संदेशा आया है। संदेशे यूं ही आते रहेंगे, संदेशे आते हैं, हमें बिल्कुल नहीं तड़ पाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपके संदेशे आते हैं। और इसी तरह आप हमें मैसेजेस करते रहिए, हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस लेने की। और अब आप में से किसी एक की फरमाइश। वाह क्या गाना है, बहुत समय बाद सुना मैंने, और आपने

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

वेलकम बैक जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। और शनिवार की दोपहरी है, काफी गर्म है इस वक्त, और पता नहीं

क्या हो रहा है? आपने नोट किया है दिल्ली में मौसम जो है वो शाम को तो बहुत प्लेजेंट हो जा रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन दोपहर को बहुत ख्याल रखने की बात है। और जब शाम को इस तरह का मौसम होता है तो लगता है कि सैर पर निकल चलें, ये एक अलग बात है। फिलहाल अगर आप घर से निकल रहे हैं तो पानी की बोतल और टोपी, चुनरी या फिर छतरी आप अपने पास रखिएगा ज़रूर। और अब आपके संदेश से, लेकिन उससे पहले fmgoldairdelhi@gmail.com और 3:44 और 4 सेकंड हो गए हैं, ये भी बता दूं आपको, समय का भी पता होना चाहिए। और यहाँ पर उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल जी हैं, इनके साथ कमला रानी हैं, गीतिका हैं और भानु प्रकाश हैं। आपका ये संदेश आया है, शुक्रिया आपके संदेश के लिए। और अगला संदेश अगर देखें तो मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर साहब हैं, रत्नमाला जी हैं, ओम कुमार हैं। और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र और शेख मूसा भाईजान हैं, भाई राजकुमार, और इनके साथ एक नाम और है, सुदामा नगर खंडवा से हैं जी ये, लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश। अब ये जो हमें संदेशा भेजा ये आया है हमारे पास मध्य प्रदेश से। और अगर आगे मैं बढ़ती हूँ तो आगे हमारे पास और भी बहुत सारे संदेशे आते चले जा रहे हैं, एकदम से क्लिक करते हैं और अगला संदेशा आ जाता है। अब एक और संदेशा पढ़ देती हूँ मैं जी, ये मध्य प्रदेश से आया है और नीपा नगर से ये संदेश आया है। सुदर्शन शाह हैं, इनके साथ प्रखर हैं, नीति हैं, सुरभि हैं, अश्विन हैं, मंगला बेन हैं और राजेंद्र जी शाह हैं। अब अगला संदेश से के लिए हमें उत्तर प्रदेश जाना होगा और उत्तर प्रदेश से जिन्होंने भेजा है वो हैं राजेश कुमार वर्मा है, प्रीति वर्मा है और कार्तिक, इनके साथ आर्यन भी हैं। शिव मंदिर हकीकतपुरा महू से हमें पास ये मैसेज आया है, मुन्ना भाई स्वर्णकार हैं और पिंकी हैं इनके साथ, आर्यन हैं, कृष्णा हैं और पीहू हैं। क्या कहते हैं, बहुत सारे नाम ले दिए हैं, अब एक गीत हो जाए या फिर महाराष्ट्र का ये एक और संदेशा है। मास्टर विठल सुरोशे हैं, इनके साथ सुषमा हैं, परिधि हैं और मायरा भी हैं। खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस हैं, पिंकी हैं, आरती अरोड़ा हैं और इनके साथ लवली हैं। जब तक मैं दूसरे गाने पर अपनी नज़र जो है वो दे रही हूँ, बहुत खूबसूरत गीत, बहुत सुंदर गीत है ये और आप भी कहेंगे कि बहुत समय बाद इस गीत को सुना है। चलिए पिपरिया से एक संदेशा और ले लेते हैं, उसके बाद इस गीत की शुरुआत करती हूँ मैं। यहाँ से कमलकांत गुप्ता जी हैं, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता हैं, राधे हैं, दीपक हैं, श्रीमती अंकु राघव गुप्ता हैं और अब ये गीत। आशा जी की बहुत याद आ रही है, सुनिए इसे।

ऐसे ही कुछ मीठे शब्दों की किसी अपने के पास से ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी में। जब कई बार उतार चढ़ाव आते हैं तो हमारा कोई अपना अगर इस तरह से पेश आता है, कुछ इस तरह से कहता है, तो यकीन मानिए लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये जो वक्त है ये भी बीत जाएगा। बहरहाल आपके संदेशे हैं जी जिन्हें हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले fmgoldair@gmail.com ये भी बताना है, और ये भी बताना है कि आप कौन से रेडियो स्टेशन के साथ हैं। मन भावन प्रोग्राम में आपके साथ मैं सीमा वर्मा, 3:51, और अब आप समझ गए होंगे समय ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर गंगा वर्णकर साहब हैं, गोविंद हैं इनके साथ, प्रीति, जूली, गीता, महिमा, विशाल, विजय, विराट, रमेश और महेश, जयंती, बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे लिखा है इन्होंने, और इन्होंने हमें कहाँ से लिखा है ये जब तक मैं देखूँगी दूसरा संदेशा जो है वो बिल्कुल मेरे सामने आ जाएगा। शमशुल कमर राही साहब हैं, इन्होंने हमें संदेशा भेजा है, गंज डुंडवारा से हैं ये, और शाहीन फातिमा है इनके साथ, अनु खान है और अदनान खान है इसके साथ, फैज़ान खान साहब हैं, और एक और नाम है आबाद खान, इन्होंने हमें संदेशा भेजा है, एक गीत की भी फरमाइश की है। देखते हैं साहब आपकी फरमाइश का जो गीत है वो हम पहुंचा पाते हैं कि नहीं आपके पास। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से हमारे पास प्रकाश जी का संदेश आया है, इनके साथ कुछ नाम और हैं, सुषमा जी हैं इनके साथ, और यहाँ पे जमशेदपुर की बात करें तो एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और हरजिंदर सिंह भाटिया जी हैं। सनावत की बात करें तो शेख मूसा मोहसिन है, और अगर हम आगे जाते हैं और संदेश को देखते हैं तो किशनगंज बिहार से हमारे पास रविंद्र मोहन दास जी और आशा देवी का ये संदेशा मिलता है, गीत बहुत प्यारा, आप अकेले हैं और दोपहर जो है वो शाम के आगोश में जाने को बिल्कुल तैयार है, ये गाना

किशोरदा के गाए हुए इस गीत के बाद मुझे लगता है अब एक आखिरी फरमाइश आप तक पहुंचानी है। यहाँ पर हमारे पास खैला से उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार और सोनित कुमार का संदेश आया है, और अब आप सभी से इजाजत लेने से पहले एक आध संदेशा देखिए मैं और पढ़ देती हूँ। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्ट्रो हैं, रोजी हैं, पर्ल हैं और विलिस डिकोस्ट्रो हैं, और फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हमारे पास नासिर खान, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद का ये संदेशा आया है। किशन वंजानी साहब, नमस्कार आपको, और आपके साथ नीलम हैं, स्वाति हैं, किशु हैं, और आनंद विहार रेलवे कॉलोनी से आपने हमें संदेशा भेजा, इसके लिए शुक्रिया। और एक आखिरी संदेशा ज्योति मन्नत और भरत का है, यहाँ पर एक नाम और है, ये हैं कमल साहनी साहब जालन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीथ प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविन्द्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेन्नई में आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपे जाली समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई शुभ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा

सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। 4:11 और 10 सेकेंड हो गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि आप हैं एफएम गोल्ड 100.1 के साथ, और इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि आपके मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 पर आने वाले कुछ घंटों में आप कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। साथियों, अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार। 4:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा, और आप जानते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 पर हर घंटे आप समाचार सुनते हैं और दुनिया से जुड़े रहते हैं। और इसी कड़ी में शाम 5:00 हिंदी में समाचार होंगे, 5:05 पर अंग्रेज़ी में समाचार होंगे, और 5:10 पर आप से एक बार फिर मेरी मुलाकात होगी, लेकिन कार्यक्रम का नाम अलग होगा। ये होगा गाते गुनगुनाते, और गाते गुनगुनाते में हम 80 और 90 के दशक के कुछ चुनिंदा गीत सुनेंगे और उनकी छोटी छोटी जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाऊँगी। मेरा साथ आपके साथ 6:00 तक रहेगा। 6:00 आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, 6:05 पर अंग्रेज़ी में समाचार होंगे साथियों, और 6:10 पर आपके साथ कुछ सदाबहार गीत आप तक पहुँचाएंगी रेशमा तिवारी। 6:20 पर आप संस्कृत में समाचार सुन सकते हैं। वहीं 6:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम मार्केट मंत्रा का रहेगा। 7:00 एक बार फिर हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, और 7:10 पर कार्यक्रम सुर्खियों में आप सुन सकते हैं। 7:25 पर एक बार फिर रेशमा आपके साथ होंगी, साथ होगा कार्यक्रम सांझ ढले, और सांझ ढले कार्यक्रम में आप कुछ मानी खेज बातों के साथ साथ कुछ चुनिंदा खूबसूरत मधुर गीत भी सुनेंगे। आगे के जो कार्यक्रम हैं उनकी मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत खूबसूरत गीत है 1964 की फिल्म शगुन का। आइए सुनते हैं जगजीत कौर जी की आवाज़ में।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। हम आपको बता रहे थे आपके मनपसंद एफएम गोल्ड पर आप आज कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। हमने आपको बताया कि 7:25 पर सांझ ढली आप सुनेंगे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार होंगे। रात 8 बजे हिंदी में समाचार, 8:05 पर अंग्रेजी में समाचार साथियों, और 8:10 पर मधुरिमा कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा। एक बेहद ख़ास कार्यक्रम है, ख़ास इसीलिए बनता है ये क्योंकि इसमें जो गीत आप तक पहुंचाए जाते हैं उनके शास्त्रीय अंग की हम बात करते हैं कि कौन से राग पर आधारित है, कौन से राग की धरती पर आधारित है ये, और कौन सी महक लिए हुए किस राग की। और ये जो प्रोग्राम है आप तक पहुंचाएंगी रेशमा तिवारी। 8:30 का वक्त स्पॉट स्कैन का होगा। 8:45 पर समाचार संध्या हिंदी में आप सुन सकते हैं और रात 9 बजे न्यूज़ एट 9। 9:15 पर कार्यक्रम स्पॉटलाइट होगा और 9:30 पर अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका कार्यक्रम होगा संस्कृति भारती। रात 10 बजे हिंदी में समाचार होंगे, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 10:30 का कार्यक्रम हर सिंगार सुनना ना भूलिएगा साथियों। इसे पेश करेंगे फिरोज आलम और रात 11 बजे हिंदी में समाचार 11 बजकर

0: Institute of Plasma Research, IPR, an aided institute under the Department of Atomic Energy, Government of India, has invited applications for the post of Chief Administrative Officer. There is one vacancy for the position carrying pay level 12 as per the 7th CPC. Interested candidates can check detailed eligibility criteria, application procedure and other recruitment details on the official website, that is at www.ipr.res.in. The last date for submission of applications is 15th May 2026. You can also refer to the website www.dae.gov.in. Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati, has invited online applications for regular faculty positions, including professor and assistant professor in various disciplines. Candidates with excellent academic records and relevant research experience, including eligible PIOs, OCIs, and NRIs, may apply. Detailed eligibility criteria and application procedures are available on the official website at www.iiserTirupati.ac.in under the Career section. Online applications will remain open till 28th May 2026. The website, it is www.iiserTirupati.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद के लिए एक रिक्ति उपलब्ध है। ये पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित। चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना के साथ विस्तृत भर्ती विज्ञापन आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in के साथ साथ वेबसाइट upsconline.nic.in पर भी प्रकाशित किए गए हैं। आवेदन करने के लिए आप देख सकते हैं ये वेबसाइट upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पर आपको पात्रता, वेतनमान आदि सभी जानकारियां विस्तार से मिल जाएंगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में सिमुलेटर इंजीनियर ग्रेड 1 का एक पद उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए देखिए आधिकारिक वेबसाइट igrua.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप पात्रता, वेतनमान एवं अन्य सभी शर्तों की जानकारी विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान में उपनिदेशक सिविल इंजीनियर के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस पद के लिए आवेदन करने हेतु निर्धारित प्रपत्र केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है और वेबसाइट का पता है cicef.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप पात्रता, मानदंड और वेतनमान आदि की सभी जानकारियां विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है जो इन पदों के लिए भारत के नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित कर रही है। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार केवल ऑनलाइन अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। पद नाम है असिस्टेंट फोरमैन। कुल 150 पद हैं, जिनमें से 60 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 15, एससी श्रेणी के लिए 24 और एसटी श्रेणी के लिए 33 तथा ओबीसी श्रेणी के लिए 18 पद आरक्षित हैं। तकनीकी इलेक्ट्रीशियन के कुल 350 पद उपलब्ध हैं, जिनमें से 140 सामान्य वर्ग के लिए, 35 ईडब्ल्यूएस के लिए, 56 एससी वर्ग के लिए, 77 एसटी वर्ग के लिए और 42 ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की वेबसाइट www.mahanadikol.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप

0: योग्यता, पात्रता मानदंड, आरक्षण, आयु में छूट, परीक्षा शुल्क और अन्य नियमों और शर्तों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: अभी आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन है 100.1 MHz। और साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम परिक्रमा का।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
0: नमस्कार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोस्तों बज गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, ले चलेंगे आपको अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे उनसे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर हमेशा की तरह रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को याद जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। दोस्तों, कार्यक्रम परिक्रमा में आज हम हैं आपके साथ मुनीष शर्मा और सायरा मुज्तबा। नमस्कार सायरा।
4: नमस्कार मुनीष, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, मुनीष हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो। तो हसबे दस्तूर हम लाते हैं ताजा तरीन खबरें तो हैं ही, बट बिकॉज द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, तो जाहिर सी बात है मुनीष, हम लोग देश की परिक्रमा पे निकलेंगे। वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव फ्रॉम देयर। बिकॉज मुनीष, बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जो हमारे न्यूज बुलेटिन का कह सकते हैं हिस्सा नहीं बन पाती, बट दे आर डेफिनेटली वर्थ शेयरिंग विद आवर लिसनर्स, इसीलिए हम लाते हैं आपके लिए परिक्रमा। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट। मुनीश, शुभेंदु अधिकारी बिकम्स फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, टेक्स ओथ अलोंग विद 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स।
0: तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी, TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला है।
4: National Legal Services Authority organizes National Lok Adalat across the country to provide amicable settlement of disputes.
0: Videsh Mantri Subramaniam Jayashankar ne dvipakshiya sahyog ko aur mazboot karne ke liye Trinidad aur Tobago ke pradhanmantri se mulaqat ki.
4: And in IPL cricket, Rajasthan Royals to face Gujarat Titans in Jaipur this evening. And now it's time for our segment Dateline India, Munish, in which we take a look at the developments that take place at the national or global level. और आज हम लोग of course बात करेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण मौजू की। Today's of course we are going to talk about the Rabindranath Jayanti and World Migratory Bird Day. तो पहला टॉपिक हम लेते हैं World Migratory Bird Day का। Well, there's something very special and magical about birds, Munish. One season they are perched on electric wires outside our homes, chirping away at sunrise, and then suddenly they are just gone, thousands and thousands of kilometers away, crossing oceans, deserts, mountains, even borders created by humans, but birds never recognize them.
0: लेकिन सायरा, क्या कभी तुमने सोचा है कि आखिर वैज्ञानिकों को ये पता कैसे चलता है कि आखिर ये पक्षी जाते कहाँ हैं?
4: That's right, Manish. Who notices when their numbers begin to fall? Who tracks whether a wetland is disappearing or whether a migration route is becoming dangerous?
0: और इसका हैरान करने वाला जवाब तो दरअसल है हम लोग। कभी कभी ये कोई लैब में काम करने वाला वैज्ञानिक नहीं होता, ये दूरबीन के लिए कोई स्कूली छात्र हो सकता है, या फिर कोई दादी जो हर सुबह अपनी बालकनी से चिड़ियों को देखती है, या कोई किसान जो अपने खेतों के पास अनजान चिड़ियों को निहारता है, या फिर ऐसा कोई आदमी जो सुबह की सैर के दौरान यूं ही चिड़ियों की कई तरह की फोटो अपलोड कर दिया करता है।
4: एग्जैक्टली मनीष, एंड दैट्स व्हाई

0: World Migratory Bird Day. This year wants the world to understand through its powerful theme, which is Every Bird Counts, Your Observations Matter. Because every single observation, every small note, every recorded sighting becomes part of a much bigger story.
1: लेकिन जानती हो सायरा कि केरल में एक नन्ना सा बच्चा इस सर्दी में एक झील के पास कम प्रवासी पक्षियों को देखता है. अफ्रीका में एक पक्षी प्रेमी उनके आने के असामान्य समय को नोट करता है. यूरोप में एक परिवार प्रवास के दौरान वेटलैंड्स में आराम फरमा रहे पक्षियों की तस्वीरें लेता है. पहली नज़र में ये पल साधारण लग सकते हैं, लेकिन जब महाद्वीपों में ऐसे हजारों यहाँ तक कि लाखों अवलोकन एक साथ आते हैं तो वो ऐसे पैटर्न उजागर करना शुरू कर देते हैं कि जिन्हें वैज्ञानिक अकेले इतनी तेजी से कभी पकड़ नहीं पाते.
0: That's right. Suddenly these scattered moments turn into critical environmental evidence. That's the beauty of community science. Not complicated labs, not giant machines, but people, ordinary people, Munish, who are paying attention to nature.
1: जी हाँ दोस्तों, और इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बात ये बनाती है कि पंछियों का प्रवास अपने आप में प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है. कुछ प्रवासी पक्षी हर साल पूरे पूरे गोलार्धों को पार करके यात्राएं करते हैं. स्मार्टफोन से भी कम वजन वाले छोटे छोटे पक्षी तूफानों, बदलते मौसम, सिकुड़ती आर्द्र भूमियों और देशों को पार करने वाली थका देने वाली यात्राओं का सामना करते हुए जीवित रहते हैं.
0: इंडीड, बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है अपने आप में, खासतौर से जब माइग्रेटरी बर्ड्स का कहते नहीं है, जो वो माइग्रेशन शुरू होता है मुनीश, देयर आर सो मेनी यू नो चैनल्स जो उसको कहते नहीं है ट्रेस करते हैं, एंड इट रियली लीव्स यू ऑस्ट्रक कि कई बार तो हफ्तों हफ्तों तक वो नीचे आते ही नहीं, खाना खाने के लिए कहीं नहीं रुकते. यू नो इट्स अ नॉन स्टॉप जर्नी दैट दे टेक, एंड येट मेनी ऑफ अस बेयरली नोटिस देम अंटिल वन मॉर्निंग द साइलेंस आउटसाइड फील्स अनफेमिलियर. एंड दैट्स व्हाई दिस कैंपेन matters, because birds are not only beautiful to look at, they also tell us something about the health of the planet itself.
1: दरअसल योगदान देने के लिए आपको महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं है. शाम की एक साधारण सी सैर भी सार्थक हो जाती है. हो सकता है आप देखें कि सालों बाद गौरैया पास के किसी पार्क में लौट आई हैं. हो सकता है सर्दियों में पक्षियों का कोई झुंड गांव के किसी तालाब के पास आकर रुक जाए, और हो सकता है कि आपके पिता आसमान की ओर इशारा करते हुए कहें, जब मैं जवान था तब ये पक्षी यहाँ नहीं होते थे. इस तरह की बातचीत बहुत मायने रखती है, और ये अवलोकन भी मायने रखते हैं.
0: बिल्कुल, और काश ऐसा हो कि गौरैया वापस आ जाए, बिकॉज अब तो देखते हैं चारों तरफ तो गौरैया नजर ही नहीं आती. गणेश, मेनी ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स टुडे रिलाई हेविली ऑन व्हाट पीपल रिपोर्ट फ्रॉम देयर लोकल सराउंडिंग्स. Community participation helps experts understand migration routes, breeding patterns, habitat loss and population decline.
1: और जो लोग पक्षियों को देखना शुरू कर देते हैं वो अक्सर प्रकृति की भी ज्यादा गहराई से परवाह करने लगते हैं. जो लोग कभी वेटलैंड्स को नजरअंदाज करते थे वो अचानक उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं. जो बच्चे पक्षियों को पहचानना शुरू करते हैं वो मौसमों, जंगलों, नदियों और जलवायु के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते चले जाते हैं.
0: And communities slowly reconnect with the natural world around them, Munish. One small observation that leads to awareness, and awareness that leads to responsibility. That's powerful, isn't it? And well, this year, especially significant because International Water Bird Census completes 60 years, which is a global effort that has helped monitor and protect migratory water birds across flyways around the world.
1: और शायद इस पूरे आंदोलन का सबसे दिल को छू लेने वाला पहलू ये है सायरा कि अब प्रकृति का संरक्षण सिर्फ विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रह गया है, ये अब हर किसी का है. गिना गया हर पक्षी इस बात का संकेत है कि अब भी कोई है जिसे इसकी परवाह है.
0: Absolutely, Munish. And let's tell our listeners that World Migratory Bird Day, it is celebrated twice a year, of course on the second Saturday in May and in also in the month of October, because ये ही दो महीने हैं जब migration सबसे ज्यादा होते हैं. And you know, October जब बहुत ज्यादा जहाँ ठंडी है, सर्दियाँ पड़ती हैं, वहाँ की birds वापस आती हैं towards warmer climates. And in May, when the climates start getting very hot, then they go back to cooler temperatures. So these are two phases, these 2 months, they reflect the two

0: Today marks the 165th birth anniversary of Gurudev, and from the very first light of dawn, celebrations have already filled hearts across the country and beyond. In schools, cultural organizations, and neighborhood gatherings, people have come together out of affection for the great writer.
1: दोस्तों, एक सदी से भी पहले लिखे गए गीत आज भी उसी भावना के साथ गाए जाते हैं. बच्चे ऐसी कविताएं सुनाते हैं जिन्हें शायद वो आज पूरी तरह न समझते हों, फिर भी किसी न किसी तरह उन्हें गहराई से महसूस करते हैं. रविंद्र संगीत की ताल पर नृत्य प्रस्तुतियां बड़े ही सलीके से प्रस्तुत होती हैं, जबकि बड़े बुजुर्ग चुपचाप उनके साथ गुनगुनाते हैं, अपने साथ किसी और दौर की वो यादें ताजा करते हुए.
0: And nowhere does the celebration feel more timeless than at Shantiniketan. At 5 o'clock in the morning, the traditional homage began at Gaur Prangan with the soulful strains of Baitalic songs. And before the world had fully awakened, music had already taken over the campus.
1: And baad mein subah wo pura kshetr जन्मदिन समारोहों, प्रस्तुतियों और श्रद्धांजलि से जीवंत उठता है, जिसमें भक्ति और संस्कृति का सबसे सुंदर संयोजन देखने को मिला करता है. रविंद्र जैन

0: उपलब्धि की खास बात यह है कि कभी भी एक औपचारिक आयोजन जैसा नहीं लगता, ये तो एक व्यक्तिगत अनुभव होता है। हमारे कोलकाता संवाददाता की रिपोर्ट भी तो यही कहती है।
1: टुडे इज 25 बैशाख एंड ऑस्पिशियस डे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कवि गुरु रवींद्रनाथ ठाकुर व्हिच इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द स्टेट। दिस डे हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ द न्यू बीजेपी गवर्नमेंट इन वेस्ट बेंगल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ अदर एनडीए एंड बीजेपी रूल स्टेट्स, बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नवीन एंड अदर लीडर्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट इन द स्वेयरिंग इन सेरेमनी। द प्रोग्राम स्टार्टेड विथ फ्लोरल ट्रिब्यूट टू कवि गुरु रवींद्रनाथ ठाकुर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी एंड अदर डिग्निटरीज पेड रेस्पेक्ट टू कवि गुरु। कल्याण लाहा रिपोर्टिंग फ्रॉम कोलकाता।
2: And Monish, almost every Bengali household has at some point lived with Tagore's words. A rainy afternoon often reminds someone of his songs. A school function carries his poetry. A moment of heartbreak suddenly finds comfort in his lines. And his work lives inside everyday life. And perhaps that is why his influence continues to travel across generations and borders.
0: दरअसल दोस्तों, भारत से लेकर बांग्लादेश तक विश्वविद्यालयों के सभागारों से लेकर विदेशों में छोटे छोटे सामुदायिक भवनों तक पूरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें रवींद्र संगीत, काव्य पाठ, नृत्य नाटिकाएं और उनकी रचनाओं से प्रेरित नाट्य प्रस्तुतियां शामिल हैं।
2: Yes, leaders across the country also paid tributes to Gurudev today. The Vice President reflected on how his contributions went far beyond literature. The Prime Minister described him as a writer, thinker and poet of extraordinary brilliance whose words gave voice to humanity's deepest emotions and India's cultural confidence.
0: Raksha Mantri Rajnath Singh ne kaha hai ki Gurudev ne ek Bharat Shreshth Bharat ki bhavana ko sudrad kiya, jabki Grih Mantri Amit Shah ne is baat par प्रकाश डाला कि टैगोर के साहित्य, संगीत और दर्शन ने स्वतंत्रता की भावना में किस तरह एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था।
2: That's right, Monish. Very few individuals have shaped the soul of a nation the way Rabindranath Tagore has. And he has given the world Gitanjali, a work that carried Indian literature to the global stage.
0: उन्होंने भारत को उसका राष्ट्रगान जनगण मन दिया, ऐसे शब्द जो आज भी हर दिन लाखों लोगों को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। लेकिन पुरस्कारों और उपलब्धियों से भी बढ़कर उन्होंने लोगों को कुछ ऐसा दिया जो कहीं अधिक स्थायी है, संवेदनशीलता, चिंतन और जीवन को गहराई और सौंदर्य के साथ देखने का एक अनूठा नजरिया।
2: Yes, absolutely. Even today, in a fast-moving world filled with noise, Tagore's words continue to feel calm, relevant, and deeply humane. And maybe that is the true magic of Rabindra Jayanti.
0: दरअसल ये केवल किसी जन दिवस का उत्सव मात्र नहीं है। ये इस बात की याद दिलाता है कि कला समय की सीमाओं से परे हो सकती है, कि कविता आज भी घावों को भर सकती है, और ये कि ज्ञान और करुणा से भरी एक आवाज संगीत के थम जाने के बहुत बाद भी आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रह सकती है। और सायरा, अब वक्त हो गया है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है खास उनके पास।
2: That's right, we begin Parikrama's journey from down south in Thiruvananthapuram. The synchronized census of the endangered Nilgiri Thar is continuing across the western Ghats, with Kerala emerging as the major habitat of the species, according to preliminary findings from the Kerala Forest Department. Forest officials said the latest estimation exercise being carried out jointly by Kerala and Tamil Nadu Forest Departments has so far recorded a global population of around 2,000 Nilgiri Thars, of which more than 1,300 are in Kerala. The survey will continue till 17th of May. Let's hear more from our correspondent.
3: Iravikulam National Park in Idukki District, Keralam continues to be the main stronghold of the species, with 841 individuals recorded from the park alone. Nearly 90% of Keralam's Nilgiri Thar population is concentrated in the Moonar landscape. The census, which began on April 24th, covers 89 survey blocks in Keralam and 182 blocks in Tamil Nadu. In Keralam, the survey extends across 19 forest divisions from Thiruvananthapuram to Wayanad. Forest personnel and wildlife experts are using scientific methods, including bonded count and double observer method. Camera traps also have been deployed in selected areas to improve monitoring in difficult terrain.

0: राधानगर बीच पर समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं लाइट हाउस डाइव साइट पर 22.3 मीटर ऊंची ह्यूमन स्टैक बनाकर दूसरा रिकॉर्ड स्थापित किया गया। ये उपलब्धि न सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह बल्कि समूचे देश के लिए गर्व का एक क्षण है। सुनिए एक रिपोर्ट।
1: अंडमान निकोबार प्रशासन ने स्वराज द्वीप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए दो नए विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए। राधानगर बीच पर समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। इस अभियान में प्रशासन, अंडमान निकोबार पुलिस, भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और अनुभवी स्कूबा डाइवर्स ने मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा लाइट हाउस डाइव साइट पर पानी के भीतर 22.3 मीटर ऊंची ह्यूमन स्टैक बनाकर दूसरा विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया गया। इस पूरे अभियान के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही और सभी प्रतिभागियों के समर्पण, साहस और टीम वर्क की सराहना की गई। यह उपलब्धि न केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है।
2: And now we head towards my favorite place, Monish. We're going to Goa. Well, to safeguard Goa's rich cultural heritage and support the next generation of performers, Chief Minister Dr. Pramod Sawant has launched a new scholarship scheme dedicated to traditional arts. This initiative aims to provide financial stability to students pursuing various disciplines from classical music to the ancient folk traditions of the state. Let's hear more from our correspondent.
3: The newly announced scholarship is designed to encourage youth to master traditional performing arts, including classical music, Bharatanatyam, Kathak and folk dance. Notably, the scheme places a strong emphasis on indigenous Goan art forms such as Dashavatar and local theatre. Under this initiative, selected students will receive financial assistance ranging from 3,600 to 9,000 rupees to help cover their training fees. The Chief Minister emphasized that the primary objective of this scheme is to inspire young artists and ensure that Goa's vibrant cultural legacy continues to thrive. By providing this support, the government hopes to create a sustainable environment for traditional performers who are the custodians of the state's heritage. Aspiring artists are encouraged to take advantage of this opportunity as the application process is already underway. Interested candidates must submit their applications by the 30th of May to be considered for the scholarship. For Parikrama, Mahesh Sopde, Akashwani News, Panji.
0: और सायरा ले चलिए हमको खेल के मैदान में और हमें बताइए क्या है वहाँ हलचल।
2: Well, in IPL cricket, Rajasthan Royals will face Gujarat Titans at Sawai Mansingh Stadium in Jaipur. The match will start at 7:30 PM.
0: और दोस्तों आइए अब हम याद करें महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करें उन महान व्यक्तित्वों की है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन।
4: आज हम जाने माने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ। वो उदार राजनेता और समाज सुधारक थे। गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी थे।
5: गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के मार्गदर्शक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गांधी जी गोखले को निपुण राजनेता मानते थे। 12 अक्टूबर 1896 को पुणे में गोखले के साथ पहली बैठक को याद करते हुए गांधी जी ने लिखा था,
4: मैं गोखले से मिला, वो मुझे फर्ग्यूसन कॉलेज के मैदान में नजर आए। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्यार से मेरा स्वागत किया। उनके बर्ताव ने फौरन मेरा हृदय जीत लिया। उनके साथ वो मेरी पहली बैठक थी, तब भी यूं लगा जैसे हम कोई पुराने मित्र हैं। सर फिरोज शाह तो मेरे लिए हिमालय के जैसे थे, लोकमान्य सागर की तरह थे, लेकिन गोखले तो गंगा की तरह थे। कोई भी उस ताजगी भरी गंगा में स्नान कर सकता था, हिमालय तो अलंघ्य था और सागर को कोई आसानी से लांघ नहीं सकता, लेकिन गंगा वो तो आपको गले लगाने के लिए आमंत्रित करती है। नाव और चप्पू के संग गंगा में जाना बहुत आनंददायक है। गोखले ने बारीकी से मुझे परखा, जैसे जैसे विद्यालय का शिक्षक प्रवेश लेने वाले उम्मीदवार को परखता है। उन्होंने मुझे बताया कि किससे मिलना है और उनसे कैसे मिलना है। उन्होंने मुझे भाषण देने को कहा और आश्वासन दिया कि वो हमेशा मेरे लिए उपलब्ध रहेंगे। मैं उल्लास के साथ विदा हुआ। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गोखले ने जिंदगी भर मेरे हृदय में जो स्थान बनाया।

0: वो आज भी है और अत्यंत विशिष्ट है।
1: 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन।
2: एंड नाउ वी आर रिमेम्बरिंग सम मोर पर्सनालिटीज। मोनिश, वी आर स्टार्टिंग विद महाराणा प्रताप और प्रताप सिंह द फर्स्ट। वेल, ही वॉज द किंग ऑफ किंगडम ऑफ मेवाड़, ये हम सब जानते हैं। एंड ऑफ कोर्स टिल द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान। एंड ही वॉज देयर अंटिल हिज डेथ इन 1597। नोटेबल फॉर लीडिंग द राजपूत रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ मुगल एम्परर अकबर, इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ हल्दीघाटी।
0: दोस्तों, महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञता के लिए अमर है। वे उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के थे और वो तिथि धन्य है जब मेवाड़ की शौर्य भूमि पर मेवाड़ मुकुटमणि राणा प्रताप का जन्म हुआ। और दोस्तों, आज ही है पुण्यतिथि तेनजिंग नोरके की। उन्हें शेरपा तेनजिंग के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने वाले वो पहले भारतीय थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध पर्वतारोही एडमंड हिलरी के साथ 29 मार्च 1953 को 8,848 मीटर ऊंचाई वाली चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी। भारत सरकार ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया और 1954 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की दार्जिलिंग में स्थापना की गई और तेनजिंग नोरके को उसका निदेशक बनाया गया। उनका निकनेम टाइगर ऑफ स्नोज रखा गया।
2: That's right, Monish. We are also remembering a very fine playback singer who is considered one of the greatest and most popular Indian male film and ghazal singers. We are talking about Talat Mehmood. Yes, today is Talat Mehmood's death anniversary. And although he tried his luck as a film actor, Monish, wo acting mein unko itni zyada jo hai keh sakte hain success nahi mili. But of course, we know that his voice was magical. Aur kitne saalon tak unki awaaz jo hai, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को उन्होंने आवाज़ दी, चाहे वो दिलीप कुमार हो, चाहे सुनील दत्त हो, isn't it? And the government of India, of course, conferred the पद्म भूषण on Talat Mehmood in the year 1992.
0: तो क्यों ना फिर तलत साहब की आवाज में सुनी जाए उनकी कुछ शानदार अदायगी, जिसे हम आप अक्सर गुनगुनाया भी करते हैं।
2: बिल्कुल।

0: क्या याद दिला दिया आपने, सुनील दत्त साहब जो हैं फोन पर गीत गा रहे थे
1: नूतन के लिए।
0: और बताइए और कौन से गीत आपको उनके याद आते हैं?
1: वेल बिकॉज ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट रोमांस एंड ट्रेजेडी ये दो मूड्स के तो कह सकते हैं तलत महमूद ने महारत हासिल कर ली थी, तो क्यों ना अभी तो हम लोगों ने एक बहुत ही रोमांटिक गज़ल या गीत कह लिए सुना, एक जो ट्रेजेडी या ट्रेजिक गाने होते हैं दर्द भरे, क्यों ना वो भी सुन ले।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों दरअसल यहीं से तलत और दिलीप कुमार का एक अनूठा संयोग बना जो कई फिल्मों में दोहराया भी गया और महमूद ने हिंदी की 13 फिल्मों और 3 बांग्ला फिल्मों में तलत साहब ने कहना चाहिए अभिनय किया और 17 भारतीय भाषाओं में सायरा उन्होंने गाने गाए।
1: Wow, that's amazing. And of course, we all know के तलत महमूद के और कितने सारे गाने हैं।

0: बट जाहिर है इतने कम वक्त में हम लोग सिर्फ दो ही आपके सामने प्रेजेंट कर पाए. एंड नाउ ऑफ कोर्स द क्लॉक इज शोइंग दैट इट्स नाउ टाइम टू रैप अप द शो.
1: बिल्कुल इजाजत दीजिए दोस्तों.
2: मीडिया वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं. 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है. लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट.

0: साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये गणेशपुर दलदली मदन नगर धर्मपुर गौरा भरदा सिंघरा कल्याणपुर कोटबहरा घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया महावीरगंज शिवपुर कनकपुर लुर्गी टकिया मेंढारी प्रेमनगर कोटराही भगवानपुर नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के उदयपुर सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये लक्ष्मणगढ़ जगन्नाथपुर सायर सस्कालो पंडोपारा सुखरी भंडार सरगा शिवनाथपुर ललितपुर कंडराजा बैरडाण पतरापारा दांतीढाब घोरा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर चरईमारा रानी कोम्बो सारंगडांड फड़ामाचा हरदीझरिया राजा आमा महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल धर्मजयगढ़ कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 129 है। ये आम गांव पोटिया क्रोंधा प्रेमनगर बेहरामार औरानारा कुड़ेकेला सिंघीछाप डोंगा भवना हाटी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये लबेद और गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा लालडी झुनकीडी मुकुआ जुनवानी कुकरी कादर डंग बोरा कोदवारी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये बंगूरसिया नवागांव जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खमहारपाली पथरीपाली दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी पकरीत ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये ताराझर डडई पानी बोतलधारा खोला पारा जिडार सिंहार छिंदौला पायली खंड लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गरियाबंद वन मंडल के धवलपुर में

0: हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये जारंडी, बोडापाला, बेगरपाला, हरदीबाय, पंडरीपानी, नगरार, ओड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: हमर हाथी हमर गुड, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडिया वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। और अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम विवरण में पहले हम आपको बतलाएं, दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 8:30 पर। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती रात 9:30 पर। और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर। इसमें अपन गोठ में चर्चा होगी चल अकेला रे टैगोर जयंती पर। साथ ही क्रम होगा आप मन की चिट्ठी और माटी के गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे कौशल कुमार भानु और साथी, और रात 8:15 पर कलाकार होंगे चतुर राम साहू और साथी। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल होगा 7:21 पर। इसमें आज की बात में चर्चा का विषय होगा फसल उत्पादन में सूक्ष्म पोषक तत्व के महत्ता। शाम 7:30 पर किसान वाणी में सुनेगा आज की सलाह में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2026 इस विषय पर डॉक्टर देवेंद्र कुर्रे सहायक प्राध्यापक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की सलाह। चित्रपट संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 7:00, 8:00 और रात 9:15 पर। और अब कुछ कार्यक्रम कल के। स्पोर्ट्स स्कैन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 8:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में कल रात 10:00 सुनेगा विद्वान श्री डी श्रीनिवास का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। कल सुबह 7:05 पर होगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर देश की वाणी आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में सुनेगा आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री विश्वास केलकर से बातचीत। प्रस्तुत करता होंगे दीपक हटवार। प्रसारण समय कल सुबह 7:10 पर। बच्चों का कार्यक्रम किसलिए होगा कल सुबह 8:30 पर। इसमें बच्चों की डायरी, इसमें चर्चा होगी समर वैकेशन का कैसे करें उपयोग।

ये प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की होगी। महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया होगा कल दिन में 1:30 पर। इसमें आज की बात में चर्चा होगी शिक्षा से सशक्त होती महिलाएं, संयुक्त परिवार का विघटन और दायित्व बोध, इस विषय पर वार्ता सुनिएगा। वार्ताकार होंगी मनीषा सेनापति, साथ ही होगा गीत संगीत और टिप्स। तो ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष कार्यक्रम और कल प्रसारित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दसवीं या BSc पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था CPET रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
4: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
5: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
6: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
5: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
6: 47 सालों से निरंतर सेवा में
5: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
7: रद्दा चाहे सुनसान हुए, हिम्मत झन हारना संगी।
8: दुनिया साथ छोड़ दे तभोले आगू बढ़ना संगी।
7: मन में भरोसा और सपना के जोत जलाए रखना संगी।
8: एकला चलो रे के बातला जिंदगी माँ अपनाए रखना है संगी।
7: युवानी के अंगना में बैठे संगवारी मन ले गोड बात करे बर आगे हन हम दो संगवारी। मैं लिनिमा साहू
8: और मैं ऋषभ देव साहू, तझो को हमर
7: माया भरे संझा जोहार।
8: लीनिमा,
7: हाँ?
8: आज तोर झोला हा बड़ भारी दिखा थे संगी। का पूरा लाइब्रेरी लेके आ गई हस?
7: नहीं संगी, एमा पानी के बोतल, डायरी, चार्जर, टिफिन और एक ठन और जिनिस है, तेला में हा थोकिन देर बाद बताऊं। एकर सेती मोर झोला हा भारी दिखत है।
8: मोर हालत ल देख,
7: हाँ?
8: बिहान कुन जल्दी माँ ऐसन निकले की अलग अलग मोजा पहिर के आ गए हो।
7: कोई बात नहीं संगी, कबो कबो जल्दी मना ऐसे हो जाते। और संगवारी मन के मया हना ऋषभ ऐसे रथे जेकर सुमता मा सब भुला जथन। वैसे ऋषभ, तोला पता है आज का हरे?
8: का हरे लीनिमा?
7: आज जिन कलाकार के बारे में हमन गोठियाबो वो पूरा कला के समुन्दर रहे।
8: हाँ सुरता आगे संगी, आज हरे रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, जिन ला पूरा दुनिया गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि के नाव ले जानते।
7: संगी, रविंद्र जयंती हर बछर बांग्ला पंचांग के अनुसार बैशाख महीना के 25वां दिन मनाए जाते, जिला पोची से बोईशाक कहे जाते। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये तारीख 7 ले 9 मई के बीच में पड़ते।
8: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म 7 मई बछर 1861 में कलकत्ता के जोड़ा साको में हुए रहिस। ओकर पिता के नाव देवेंद्रनाथ टैगोर और

0: माता शारदा देवी रहीन।
1: ऋषभ, टैगोर सिर्फ कवि नहीं रहीन है, उमन लेखक, दार्शनिक, गीतकार, चित्रकार, समाज सुधारक और महान विचारक घलो रहीन है। भारतीय संस्कृति ला दुनिया तक पहुंचाए मा उकर बहुत बड़ा योगदान रहीन है।
0: और सबले खास बात बछर 1913 मा गीतांजलि खातिर साहित्य के नोबेल पुरस्कार पाए वाला वो पहली गैर यूरोपीय व्यक्ति बनीन।
1: और पहली भारतीय घलो रहीन है। गीतांजलि के लोकप्रियता ऐसे रहीन है कि ओकर अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी और रूसी जैसे कई भाषा में अनुवाद खलो हुए हैं।
0: संगी, मुला ये जान के बहुत गजब लगते कि रविंद्रनाथ टैगोर हा तीन तीन देश के राष्ट्रगान ले जुड़े हवे।
1: बिल्कुल, भारत के जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हरे। उन्हें बांग्लादेश के अमार सोनार बांग्ला और श्रीलंका के राष्ट्रगान श्रीलंका माता घलो उकर रचना ले प्रेरित हवे।
0: अरे वाह, एक के इंसान के सोच और शब्द पूरा देश देश में गूंज जाते।
1: और संगी, गुरुदेव ह 2000 ले ज्यादा गीत लिखे रहिन है, जिला रविंद्र संगीत कहे जाते। उकर गीत मा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ठुमरी शैली ले प्रेरित हवे।
0: उकर गीत मन ला सुन के मन ला शांति महसूस होते। संगी,
1: सही कहा था ऋषभ, प्रकृति ले घलो उकर गजब लगाव रहिन है। पेड़ पौधा, नदी, हवा और धरती सबो जिनिस उकर रचना मा दिखते हैं।
0: औ पढ़े लिखे के क्षेत्र मा घलो वो कम नहीं रही।
1: हाँ, पश्चिम बंगाल के बोलपुर मा शांति निकेतन के स्थापना करके शिक्षण संस्थान शुरू करें हैं। बाद मा ये संस्थान हा 1921 मा विश्व भारती विश्वविद्यालय बनी है।
0: मतलब गुरुदेव हा शिक्षा ला किताब तक सीमित नहीं माने, वो प्रकृति और अनुभव ले सीखना सिखाई।
1: बिल्कुल संगी, और टैगोर हा महज 8 बच्चर के उम्र मा अपन पहली कविता लिख डाले रहे हैं।
0: अरे वाह, हमन ता 8 बच्चर की उम्र मा बस स्कूल बैग ला खोजन रहन।
1: और संगी, एकरे संग 16 बच्चर के उम्र मा उकर पहली लघु कथा प्रकाशित हो गए रहे हैं। ओ भानु सिम्हा नाम के उपनाम ले कविता लिखत रहीन है।
0: संगी, ए बात सच मा प्रेरणा देते कि कला और प्रतिभा के कोई उम्र नहीं होवे।
1: सही बात कही है ऋषभ, और महात्मा गांधी जी घलो मनला गुरुदेव कही के सम्मान दे रहीन है।
0: संगवारी हो, टैगोर जिला ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड के उपाधि घलो मिले रहीन।
1: जेनला जलियावाला बाग हत्याकांड के विरोध मा रविन्द्रनाथ टैगोर हा नाइटहुड के उपाधि ला लौटा दे रहीन है।
0: रविंद्रनाथ जी के एक सच्चा देशभक्त घलो हरे। रविंद्रनाथ टैगोर हा स्वामी विवेकानंद के बाद विश्व धर्म संसद ला संबोधित करे वाला दूसरैया भारतीय व्यक्तित्व घलो रहिन।
1: और उकर प्रमुख रचना मन मा गीतांजलि, गोरा, घरे बाइरे, काबुली वाला, बलाका, पूर्वी और सांध्य गीत जैसे कई अमर कृतियां शामिल घलो हवे। ऋषभ,
0: काबुली वाली क्या कहानी ता आज घलो लोगन के आंखी हला नम कर देते। संगी,
1: बिल्कुल सही कहा था ऋषभ, गुरुदेव के रचना में इंसानियत, प्रेम, प्रकृति और स्वतंत्र सोच के गजब संदेश मिलते।
0: और शायद यही कारण आए कि आज अतना बच्चर बाद घलो उखर विचार हमला प्रेरणा देते।
1: बिल्कुल संगी, उखर एकला चरोले के संदेश आज घलो हर युवा ला हिम्मत देते कि दुनिया साथ दे या नहीं दे, अपन रद्दा ला खुद बनाना चाहिए।
0: अकेला चलना हा हिम्मत के चिन्ह आए संगवारी, फिर समाज ला सुघर बनाए बर आपसी माया और एकता जरूरी है।
1: बिल्कुल संगी, तो चलो संगी हो सुनथन मेल जोल और सुमता के भाव ला लेके ये सुघर गीत ला।

0: संगवारी हो अभी आप मन सुनत रहे सुघरकन माटी के गीत ला जेमा अपन स्वर पिरोए रहिन प्रकाश देवांगन साथी मन हा
1: और सुने बर चाहे हमर ये संगवारी मन हा बाजार पारा बेमेतरा ले भरत लाल सिन्हा लव कुमार लक्की सिन्हा मन हा धरसीवा ले छेदुलाल यादव सीता अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना यादव मन हा दुर्गा पारा संतोषी नगर रायपुर ले छनुलाल यादव अनुराग अभिषेक अलका अनामिका बलदाऊ रानू खुशी प्रवीण सीएल यादव मन हा हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगाले रमेश कुमार यादव माया रिंकू सन्नी कोमल यादव मन हा बेमेतरा ले पूर्णिमा सारथी पूजा आरती भाव्या सुषमा सारथी मनहा महासमुंद ले रामकली यादव आशा किरण पंकज मंकू डॉली संजय कुमार यादव मनहा साकरा सोमनी ले नारायण लाल साहू देवेंद्र प्रताप मिलिंद कुमार कुलवंती नेहा देवी टिकेश्वरी प्रणय कुमार रुद्रांश प्रताप साहू मनहा ग्राम भर्री टोला डोंडी बालोद ले नमित कुमार गौतम पीहू प्रियंका नीतू मुरली गौतम मनहा अरमरी खुर्द दुर्ग ले चुरामन लाल वाडे जैनी वाडे त्विशा अक्षत कुमार वाडे मनहा ग्राम बंगला मटिया बालो

0: बदले सुकुमार अंगारे अंजनी त्रयंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष अंगारे मन्हा छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्रेंगीले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार दीपक झाविंद्र कुमार वर्मा मन्हा देवरी भाटापारा ले गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश राम मिस्त्री मन्हा ऋषभ ते अभी थोकिन पहली कहा थे ना कि लिनिमा तो झोला हा बड़ भारी दिखा थी कीके
1: हाँ।
0: मैं कह रहा हूँ कि थोकिन देर बाद बताऊं कीके तो भाई वो बेरा आ चुकी हवे मोर झोला मना संगवारी मन के बड़ अकन पियर पियर पाती हवे और संगवारी मन के जन पाती हवे ना तेला बेरा हो गए है पढ़े के तो चल भाई बेरा ला दुरिहाथन और शुरू करथन क्रम आप मन के चिट्ठी।

0: त ऋषभ, संगवारी मन के पातिया है बड़कन, त चल भाई शुरू करथन, कौन संगवारी मन कहाँ ले भेजे के, त मैं चिट्ठी ला पढ़ देता हूँ और तै जवाब ला दे देबे। त ऋषभ, संगवारी मन के पातिया है वह दू मई बर, यानी कि सनिचर बर, और ये संगवारी मन हरे लोरमी ग्राम चचेड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमीला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी मन। अब ये संगवारी मन हा लिखे है ऋषभ कि 2 मई दिन सनिचर के युवानी कार्यक्रम ला लेके आए रहीन है हमर मयारू संगवारी दुर्गा साहू और नीलेश साहू मन हा। अपन गोट मा सुघर सुघर मन गोट बात करीन हवे और क्रम आप मन के चिट्ठी मा श्रोता संगवारी मन के भेजे ईमेल पाती ला शामिल करीन है और संग मा माटी के गीत घलो सुने पर मिले से ए दिन के सुघर प्रस्तुति पर युवानी अनुभाग ला गाड़ा गाड़ा बधाई कहा थे। और इही रिकेम ले हमर यहू संगवारी मन पाती पठो है ऋषभ, आर्यनगर कोहका भिलैले उत्तम सिंह जंघेल, अनिल कुमार आयुष नन्नी जंघेल मना, धमधा ग्राम सुखरी कलाले अमित जंघेल, शकुन आरुषि ओशिका आदित्य अंजलि जंगेल मनहा, सहजपुर लोरमी ले छोटकू साहू रामकिशन दुलीचंद सतीबाई लोकेश कुमार साहू मनहा, ग्राम ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर ले महेश कुमार निषाद, रंभारानी निखिल नैतिक पुष्पांजलि स्वप्निल कुमार निषाद मनहा, फुलझर घटारानी ले योगेश्वर डोमेश्वरी यामनी मुस्कान साहू मनहा, औ एकरे संग हमर यहू संगवारी मन हेवे सहजपुर लोरमी ले रामकिशन साहू लोकेश दुर्गेश मोहित राम साहू मनहा।
1: वाह भाई, संगवारी हो आप मन के पातीला सुन के मन हा गदगद हो जाते। संगवारी हो 2 मई दिन सनिचर के युवानी ला धर के लाने रही से हमर कंपियर संगवारी नीलेश साहू और दुर्गा साहू हा, जोन हा अपन गोठ मा सियान मन के मदद कराओ ए विषय मा गोठ बात करीस। संगवारी हो सियान मन ही नानपन मा हमन ला उंगली धर के चले बर सिखाते, सही गलत के फरक करे बर सिखाते, और हमर घर के संस्कार ही हमर सियान मन ले ही मिलते संगी। तेकरे पाए के संगी हो सियान मन के हमेशा सम्मान करना चाहिए, ओकर मदद करे बर हमेशा आगू आना चाहिए। संगवारी हो ये दिन के जम्मो क्रमला ध्यान लगा के सुनियो और पाती ला पठो, ओकर बर आप जम्मो मल्ला अंतस ले धन्यवाद है।
0: ऋषभ, ए तो इस 2 मई के पाती, अब संगवारी मन 5 मई बर घलो पाती भेजे हवे, यानी कि 5 मई यानी कि मंगलवार। अब ये संगवारी मन हरे ऋषभ, करही बदल ले पुरुषोत्तम निर्मलकर, श्रद्धा लल्ली गीतिका पीहू लालिमा मन। अब ये संगवारी मन लिखते ऋषभ कि 5 मई के युवानी के बगीचा मा अपन मिट मिट बोली के युवानी के बगिया मा आए रही है नेहा चौहान और तृप्ति भारती मन। संगी मन अपन गोट मा आनी बानी विषय मा गोट बात करीन है जी हाँ, हमला बड़ निक लागी से और सवाल जवाब अंक 228 के उत्तर जाने पर मिली से और अंक 229 के प्रश्न सुने पर मिले हैं कहा थे, जिला सुन के हमरो ज्ञान मा वृद्धि हुई सब है। क्रम माटी के गीत मा रिकिम रिकिम के छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुने पर घलो मिली से, अत्यक सुघर प्रस्तुति के खातिर तृप्ति भारती और नेहा चौहान ला धन्यवाद कहा थे। और इही रिकिम ले हमर यहू संगवारी मन पाती पठो है ऋषभ, ग्राम मड़ौदा जाल बांधा ले पारक दास साहू, किरण सोनू रेशमा गुनिता साहू मन। और ये संगवारी मन लिखते ऋषभ कि 5 मई दिन मंगलवार के छत्तीसगढ़ युवा नीला धर के लाने रही से हमर मयारू कंपियर तृप्ति भारती और नेहा चौहान मन ए दिन पाछू

0: हफ्ता के सही जवाब सुने हन और आगू हफ्ता पर सवाल लिखें जेखर ले हमर ज्ञान में बढ़ोतरी हो से। सुग्घर सुग्घर माटी के गीत खलो सुने पर मिली से। कुल मिला के दिन के कार्यक्रम हम बड़ निक लागिस कहा थे। सफल कार्यक्रम प्रस्तुति पर तृप्ति भारती और नेहा चौहान ला गाड़ा गाड़ा बधाई कहा थे। और संगवारी हमर यह संगवारी मन पाती पठो है ए दिन भर। ए संगवारी मन हवे कोल्हापुरी दुर्ग ले सूरजभान साहू, कमला साहू मन हा, ग्राम सलोनी ले देवचरण साहू, हेमा वेदांत वैभव साहू मन हा, ग्राम बेरला सिवा ले जीवनलाल सिन्हा, निर्मला देवेंद्र सुधा अंबा सिन्हा मन हा, ग्राम गेंदा टोला ले बीरेन्द्र कुमार गुप्ता, अंजलि योगिता गजेंद्र गुप्ता मन हा, ग्राम भड़गा कोदान ले श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी रानी रजनी राहुल पूजा मरावी मनहा, कुई ग्राम भंगी टोला ले ननकाराम ध्रुवे, जामुनबाई ध्रुवे, फिरतराम मालती ध्रुवे मनहा, चिरमिरी कुरासिया कालरी ले इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ राम सहोदर नारायण दिनेश कालिंदी लहरे मनहा। हमर ये संगवारी मन है पोटिया कला दुर्गले संजय साहू, सुजाता ससांग सीमा साहू मनहा, ग्राम सलोनी ले पुरानी ग्राम साहू, सीताबाई प्रियांशु गौरव साहू मनहा, महासमुंद ले भीष्म दास नर्मदा हिरमनी दीपक लक्षदास मनहा, मही दही साजा ले हेमलता देव विशु विभू साहू मनहा।
1: संगवारी हो युवानी के कार्यक्रम हा एक ऐसे कार्यक्रम आए जेमे आप मल्ला मनोरंजन के संगे संग ज्ञान के सुघर गोट सुने बर घलो मिलते। ऐसने ज्ञान के दिया ला जलाय बर 5 मई दिन मंगलवार के युवानी ला धर के लाने रही समर कंपियर संगवारी तृप्ति भारती और नेहा चौहान हा, जेमा आप मन हा क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत ला बड़े ही ध्यान लगा के सुने और अपन प्रतिक्रिया ला पाती के माध्यम ले भेजे ओकर बर आप मल्ला अंतस ले धन्यवाद है। आगू घलो ऐसन हा पाती पठोवत रहो।
0: तरिशब संगवारी मन के पाती ला मन तो पढ़बो फिर संगवारी मन हा चाहत हुई कि एक ठन मनोरंजन खातिर गीत सुना देते। चल भाई संगवारी मन ले सुना देतन ये गीत ला।

0: संगवारी हो भी आप मन सुनत रहे सुघर कन माटी के गीतला जेमा अपन स्वर पिरो रहिन नवल दास मानिकपुरी और साथी मन हा
1: और सुने बर चाहरी नमर ये संगवारी मन हा लघान पंडरिया ले उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी बघेल साहिल भारती बघेल मन हा पथरिया भरेवाले चंदुलाल सिंगरौल नारायणी नोमेश नेहा वान्या सिंगरौल मन हा खल्लारी भीमकोजले जे एल साहू सरोज छोटे पिंकी मन हा मेजका सोंडोले भूपेंद्र नाग पूर्णिमा लिखिल तरुणदीप नाग मन हा बिलाईगढ़ ले रोशन देवांगन कौशल्या हेमलता डिम्पल देवांगन मन हा चौडोगरी पिपरिया ले दुर्गाराम साहू अजय जय किशन कुमार इंद्रानी माया साहू मन हा पलारी ले नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद पराग नाराम कृष्णा देवांगन मनहा भाटापारा ले दान सिंह रावत पद्मनी शुभम सौरभ रावत मनहा ऋषभ अब संगवारी मन के जो आखिरी दिन के पाती आ है वे ना तेन मुनहात्मा हवे और संगवारी मनहा लिखी है वे सात में यानी कि बृहस्पत पर और काबर की वो दिन में हूँ कार्यक्रम करे रहे हूँ तो भाई मोर पर पाती आ है संगवारी मन के तब पढ़े में घलो मोला बहुत उत्साह लागत है और संगवारी मन जो हवे ना ओमन संगवारी मनहा लिखे हवे कि सात मई के छत्तीसगढ़ी युवानी के बगिया ल सजा के लाए रही से लिनेमा साहू और तृप्ति साहू मनहा संगी मनहा अपन गोट मा बहुत सुघर प्रेरक विचार रखीन है जिला सुन के हमर ज्ञान मा बढ़ोतरी हुई से क्रम माटी के आखर मा कोमलकांत यादव जी ले कविता पाठ सुने बर मिलिस कहा थे जिला सुन के हमर मन हर्षित होगे कहा थे पहली कविता किसानी के बारे में रही से और दूसर कविता श्रृंगार के रही से कविता सुन के मन हा गदगद होगी से कवि मंच हमर मन के समाज के आईना है कविता के माध्यम ले अपन बात ला आम जन तक पहुंचाए के यह सशक्त माध्यम हरे कविता ला आकार देते कवि जे एक चरित्र ला अपन कविता के माध्यम ले जीवन करते और उही चरित्र ला जीते कविता रचनाकार मन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हरे जे कलाकार के बीच बातचीत और कहानी ला बढ़ाए के एक जरिया हरे दर्शक मन ला कैसे बांध के राखे जाते ए दिन क्रम माटी के गीत मा रिकिम रिकिम के लोकगीत सुने बर मिली सवे जेन मन हमला प्रफुल्लित कर दिस कहा थे अतिक सुघर सफल संचालन बर तृप्ति और लिनेमा साहूला अंतस ले बधाई कहा थे अवे जो संगवारी मन पाती भजे ना ओकर नाम ला पढ़े बर तो भुलाज गे रहे हो ते संगवारी मन के नाम हरे कन्नेवाड़ा ले पी एल निर्मलकर देवेंद्र कुमार सोनवानी हिमांशु गीतू गीतिका लक्ष्मी सोनवानी मन हा और इही रिकिम ने हमर यहू संगवारी मन पाती पठो है ऋषभ मेघापारा लोरमी ले राम कुशल पटेल संतोषी दीपांशु दिव्या दीपांजलि दीपक टेक कुलाल पटेल मन हा नानघाट कातल बोलले भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु राजपूत मनहा सहजपुर ले छोटकू साहू मोहित राम साहू लोकेश रामकिशन दुलीचंद सतीबाई साहू मनहा तेंदुभाटा मगड़ लोड धमतरी ले उमेन कुमार निषाद महेश्वरी देविका पोषण नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर किशन दिव्यांश भूपेश शिवा निषाद मनहा सहजपुर मेघापारा ले मोहित राम साहू लोकेश दुर्गेश सतीबाई उर्वशी माही अंशु साहू मनहा ग्राम कोयलारी कवरधा ले

0: कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पुनेंद्र साहिल चंद्राकर मन और पाती के माध्यम ले हमारे यहाँ संगवारी मन अपन समीक्षा पाती भेजे हे ऋषभ एमन हरे शिव मंदिर रोड खैरागढ़ ले पुष्पलता अग्रवाल, शिक्षक नगर दुर्ग ले राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वानी वर्मा मन मगरलोड जिला धमतरी ले पुनराम साहू, तेजस्वरी साहू मन ग्राम दरचुआ ले ददुआ भूरी रेखा मोतीलाल साहू मन।
1: वाह भाई संगवारी हो, आपके पाती ला सुन के मन हा गदगद हो गए भाई। संगवारी हो आप मन हा ये दिन के क्रम माटी के आखर मा कोमलकांत यादव ले कविता पाठ ला सुने और अपन प्रतिक्रिया पाती के माध्यम ले लिख भेजे ओखर बर धन्यवाद है। संगवारी हो कवि हा समाज के दर्पण होते और कविता हा कल्पना विचार के तालमेल होते, जेला ऐसन कल्पनाशील मनखे मन हा अपन विचार ल कविता के माध्यम ले जनमानस तीर सुघर अंदाज में बगराते और समाज ल नवा संदेश देते। संगवारी हो ये दिन के जम्मो क्रम ला आप मन हा ध्यान लगा के सुने ओकर बर धन्यवाद है। आपके बधाई ला ये कार्यक्रम के माध्यम ले लिनिमा करतो
0: और
1: तृप्ति साहू करण अमरावतन आगू घलो ऐसा पाती पठोवत रहो।
0: तो संगवारी हो आज के तो अपने पातरी समर मन करा अब संगवारी हो आप मन आगू घलो कार्यक्रम कैसे लागत है वह और कैसे सुधार होना चाहिए एक बारे में समीक्षा पाती जरूर भेजो और आप मन समीक्षा पाती भेजो ओकर लिए हमार पता है क्रम आप मन के चिट्ठी युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर और पिनकोड है संगवारी हो 492001 और संगवारी हो आप मन ईमेल के माध्यम से समीक्षा पाती पठो हूँ ओकर बर ईमेल आईडी हवे AIRYOUTH9@gmail.com और संगवारी हो आप मन हा जब ईमेल के माध्यम से अपन पाती ला पठो हूँ तो सब्जेक्ट कोड ला डाले बर झन भुला हो हमार सब्जेक्ट कोड आए Y8 तो संगवारी हो आप मन पाती जरूर पठो हूँ और क्रम आप मन के चिट्ठी इहीं तक।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: 10वीं या BSc पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य। भारत सरकार की संस्था CPET रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।
4: लीनी माँ, अभी बिहाव के सीजन है, चला थे तो चल ना भाई एक ठीन बिहाव के गीत ला सुन लेता।
5: बिल्कुल संगी।

0: संगवारी हो अभी आप मन सुनत रहे सुघर कन बिहाव गीत ला जेमा अपन स्वर दे रहिन अनुराग ठाकुर अउ कविता हिरकने मन हा
1: और सुने बर चाहरी हमर ये संगवारी मन हा पहंदा पलारी ले नीतीश कुमार तनुजा देवांगन ईशांत लखनलाल सावित्रीबाई देवांगन मन हा बन बघेरा ले योगेश शारवा आशा नीरज नीलेश अंजलि रोशनी शारवा मन हा बागा मुड़ा कोमा खान ले प्रज्ञानंद देवांगन नन्नी प्रकाश गायत्री यशवर्धन यशस्वी देवांगन मन हा पहारा अहिवारा ले पोषण बंछोर चंद्र किरण प्रीति छाया बंछोर मन हा इंदिरा चौक तखतपुर ले मिश्रलाल विश्वकर्मा मीरा देवी विशाल मानस गंगा देवी विश्वकर्मा मन हा लक्षणपुर ले रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू मन हा आर्यनगर कोहका भिलई ले उत्तम सिंह जंघेल मोरा शनिल अजीत आयुष नंदी जंघेल मन हा बठेना पाटन ले बलकलन वर्मा अंजनी नीरा ज्योति प्रहलाद वर्मा मन बागबारा भदरसी ले पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन मन ऋषभ तोला देख के लागत है कि बने माँ और बहनी के हाथ के खाना मिला थे संगीतोला बने मोटावा थस
0: तहु हालिनी माँ अब कैसे कर बे संगी माँ के हाथ के खाना के स्वाद तो सबले ज्यादा सुहा थे
1: हाँ?
0: अब वो तो है फिर काम घलो ऐसे हवे कि लैपटॉप में बैठे बैठे दिन भर काम करना रही थे
1: अच्छा।
0: एकर वजह ले पेट हा थोकिन बाढ़ गए
1: ए बात आए तो बात तो सिर्तुन कहा था ऋषभ काम के व्यस्तता के सेती हमन खेलन कूदन नहीं जबकि खेले कूदे के कोई उमन नहीं होए भाई कभू कभू समाचार पत्र टीवी या फिर मोबाइल में देखता हूँ ऋषभ कि 80-90 साल के दाई बाबा मन है घलो खेल के नाम रोशन करे थे तो लागते कि हमन ला खेले कूदे ला नहीं छोड़ना चाहिए भाई
0: सिर्तुन के संगी और संगवारी खेले कूदे के बात हुआ थे ना ता हमार पारंपरिक खेल ला कैसे भुला सकथन संखली गिल्ली डंडा रेस्टी लुक लुकाउल जैसे कतकोन खेल हवे
1: बिल्कुल संगी और मैं तो अनपन मा गोटा बिल्लस पिट्ठुल भौरा फुगड़ी कबड्डी कतको खेल खेले सब ल खेले हूं
0: खेल खेले ले तन और मन दोनों स्वस्थ रही थे संगी उन्हें ये खेल मन ले नेतृत्व टीम समूह के भावना घलो बाढ़ थे
1: ये सब ल तो हमन जानथन फिर ल जाथन कि कौन का कही कही के संगवारी हो मैं तो हमर छोटे भाई बहनी मन संग ना जब भी मौका मिल जाए खेल जरूर खेल लेता हूं भाई और अपन ननपन ल जी लेता हूं
0: संगवारी हो आपो मन अपन तन मन ला स्वस्थ रखे बर जरूर खेल खेलाओ और यही गोट बात संग मौसम और खेल के आनंद लेवत सुनथन ये सुघर अकन खेल गीत ला

0: संगवारी हो भी आप मन सुनत रहे हो सुघर अकन माटी के गीतला जेला पन स्वर मा पिरो रहीन गरिमा दिवाकर अउ साथी मन हा
1: अउ सुने बर चेहरी नंबर ये संगवारी मन हा बोर्ड सरार नैला ले प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली प्रियांशु साहू मन हा देवरी बंगला ले संगीता निर्मलकल भरत सिंह राजपूत मोती कान्हा त्रिषा निर्मलकन मन हा मुंडा टोला डोंडी लोहारा ले डोमेन्द्र नेताम गंगेश्वरी चंचल कामेश माही नेताम मन हा ऋषभ हमर भारत के संस्कृति कई हजार बछर के संस्कृति आए ना जहाँ ज्ञान धर्म करम ले मनखे जीते
0: बिल्कुल लीनिमा अब ये संस्कृति ह अलग अलग युग मा देवता जन्म धरी ने संस्कृति ये युग मा अउ उमन अपन जिंदगी के माध्यम ले हमन ला जिए के ढंग अउ धैर्य सिखाइन
1: उसने ही त्रेता युग मा भगवान राम ओकर जन्म होइन हे अउ जे मन हमन ला हमर आदर्श घलो हरे उमन विपरीत परिस्थिति मा घलो धर्म के प्रति अपन अटूट प्रतिभा के परिचय देन हे
0: भगवान राम ले हमन कई जिनिस सीखथन माँ बापू के प्रति सम्मान भाई के प्रति माया अउ प्रजा के प्रति जिम्मेदारी
1: भगवान राम के जिंदगी हमन ला सिखाथे ऋषभ कि जौन भी कारज मिलथे ईमानदारी ले करना चाहिए और जौन भी परिस्थिति होए धैर्य के संग चलना चाहिए
0: संगवारी हो हमर संस्कृति और इतिहास ये दोनों ला जानना बहुत जरूरी है ताकि हम अपन जिंदगी मा हमर धर्म संस्कृति के संग कारज करके सुघर अपन नावला बना सकन तो यही गोट बात संग आवाज सुनथन ये सुघर अकन गीतला

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो सुघरकन माटी के गीतला, जेमा अपन स्वर पिरो रहिन विदुषी ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकर मन हा।
1: और सुने बर चाहरी नमर ये संगवारी मन हा, कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव मन हा, ग्राम कन्या जिला बालाघाट ले अखिलेश कुमार यादव, ज्योति अंकित श्रद्धा सौरभ यादव मन हा, सिवनी खुर्द रेंगा खाले मनशाराम पटेल, बुधिया बाई भानु प्रताप पायल पटेल मन हा, भानपुरी मुसरा ले आत्माराम यादव, सुखदेव विदेशी होमेश्वर मनेश्वर लाक्षी यादव मन हा, हमारे संगवारी मन है पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता मन हा, वीरभूमि सोना खान ले उमेंद्र उर्मी पैकरा, कामेश अंशिका लकेश्वरी पैकरा मन हा, कल्लू बंजारी ले वीर नारायण उइके, ईशान चंद्र प्रकाश डिसिता मालिनी मुनमुन उइके मन हा। ऋषभ देख संगी कोट बात करत करत कब बेरा निकल गया पता नहीं चलिस। और संगवारी मन ला भाई जाए के पहले हमन काली कार्यक्रम बता देता है। तो संगवारी हो काली के कार्यक्रम हो ही हिंदी मा, जेमा आप मन सुनू राग नन्नी और सवालों के आईने मा। तो संगवारी हो आप मन ला कार्यक्रम कैसे लगी से ला पाती के माध्यम ले जरूर पठो। और यही गोट संग अपन संगवारी लिनी मा साहू
0: और ऋषभ देव साहू ला देव बिदा।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युवावाणी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 6 बजने को है हिंदी समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल R.N. रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव M.A. Baby ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRY ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 6:10 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग प्रथा शुक्ला के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार।

0: आज छत्तीसगढ़ के कतकू न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के होइस आयोजन। न्यायालय में लंबित मामला ला आपसी सहमति ले सुलझाए केस। प्रदेश के कतकोन जिला में आज हल्का ले मध्यम वर्षा होए के खबर। अवैया 24 घंटा में प्रदेश के कुछ जगह में तेज हवा गरेर के संग गिर सकत है पानी। औ बालोद औ गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में होइस आज बड़का रद्दा हादसा। ए घटना में कका भतीजा समेत 5 जिन मनखे के होगे मौत। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ के कतकोन न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हुईस। ए बेरा में न्यायालय में लंबित मामला ला आपसी सहमति ले सुलझाए गिस, जेमा आपराधिक प्रकरण के संगे संग मोटर दुर्घटना प्रकरण, बिहाव ले जुड़े परेशानी, जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधित प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधित प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी ले संबंधित प्रकरण हा शामिल रहीस। उन्हें 21 ले 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत लगा के लंबा बेरा के मामला सुनवाई करे जाही। पक्षकार मनला अपन लंबित मामला ला विशेष लोक अदालत में शामिल करे बर सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट में 31 मई तक गूगल फारम में देना होही। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग हा नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनई के घोषणा कर दे है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह बताइन कि निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई ले शुरू होही, जो उनके 4 जून तक चलही। नामांकन पत्र 11 ले 18 मई तक भरे जाही, जेकर जांच 19 मई के होना है और नाव वापस लेके आखिरी तारीख 21 मई रखे गए है। मतदान एक चरण में 1 जून के होना है, जबकि परिणाम 4 जून के घोषित करे जाही। राज्य निर्वाचन आयुक्त बताई है कि नगरी निकाय चुनई ईवीएम ले दलीय आधार मा और पंचायत चुनई मत पेटी के माध्यम ले गैर दलीय आधार ले कराए जाही। चुनई वाले जगह मा आदर्श आचार संहिता लागू हो गए है। जानवा के अनुसार नगरी निकाय मा अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 समेत कुल 82 पद पर चुनई होना है। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 समेत कुल 1228 रिक्त पद पर चुनई कराई जाही। राज्य सरकार के सुशासन तिहार के चलत बलौदाबाजार भाटापारा जिला के ग्राम पंचायत झुमका में जन समस्या निवारण के शिविर के आयोजन हुईस। इस शिविर में राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुई। ए बेरा में श्री वर्मा हितग्राही मनला ट्रैक्टर के चाबी, अनुदान राशि के चेक, प्रमाण पत्र और आने सामग्री भेंट करें। इस शिविर में 2300 ले ज्यादा आवेदन मिले रहीस, जिमा ले 272 आवेदन के मौका मही निराकरण करेगी से। छत्तीसगढ़ में अभी मकान सूचीकरण और मकान के गिनती के काम चलत है। इही कड़ी में बलौदाबाजार भाटापारा जिला के कलेक्टर कुलदीप शर्मा आज मुंडा गांव में प्रगणक मन कोती ले करे जात जनगणना के काम के निरीक्षण करें। ओमन प्रगणक मन ले मोबाइल लेके खुदे एक झीन मकान मालिक के घर में पहुंच गए और मकान गणना संबंधित सबो जानकारी लेके डिजिटल गणना ला पूरा करीन है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग सबो निकाय ला पीए के पानी ले होवत परेशानी ला दूर करे के निर्देश दीन है। विभाग सबो निकाय ला बोरिंग बोरवेल मान मा एक हफ्ता मा जांच करके ठीक करे बर कहीन है। संगे संग टूटे पाइपलाइन ला तुरते सुधारे और नाली ले होके जाए वाला पाइपलाइन और घर के कनेक्शन ला घलो स्थानांतरित करे के निर्देश दीन है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के चलत प्रदेश भर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1300 ले ज्यादा जोड़ा मन के बिहाव हुईस। ए बिहाव राजधानी रायपुर समेत सबो जिला में पारंपरिक रीति रिवाज के संग करेगीस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवविवाहित जोड़ा मन ला बधाई दीन है। उमन कहीन है कि योजना जरूरतमंद परिवार के बड़े चिंता ला दूर करत है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर कोती ले पद्मश्री बर चयनित गोडबोले दंपत्ति लेगे विशेष भेंट वार्ता के प्रसारण काली बिहिन्या 10:30 बजे ले 11 बजे तक करे जाही। ए कार्यक्रम के प्रसारण छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र एके संग्रह करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR।

0: ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR News। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काली 10 मई के नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और गर्मी ले निपटे के तैयारी के समीक्षा करही। एमा केंद्र और राज्य सरकार के एजेंसी के बीच अच्छा समन्वय, NDRF ला सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदा के बेरा शून्य जनहानि के दृष्टिकोण में सरलग ध्यान देना शामिल हरय। विश्व रेड क्रॉस दिवस में काली रायपुर में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव शामिल हुईं। ए मौका में उमन कहीं कि निस्वार्थ भाव ले लोगन मन के सेवा करना ही सबले बड़का धर्म हरय और यही रेड क्रॉस के असली पहचान है। कार्यक्रम में लोक नृत्य, चित्रकला और नाटक प्रतियोगिता के विजेता मनला इनाम दे के संगे संग प्रदेश के 64 रेड क्रॉस स्वयं सेवक मनला प्रमाण पत्र देगीस। एकर अलावा अंगदान, रक्तदान, नेत्रदान और समाज सेवा में योगदान देवैया लोगन मन के संग अच्छा काम करैया कलेक्टर मनला घलो सम्मानित करेगीस। ए मौका में जूनियर और यूथ रेड क्रॉस सम्मेलन घलो होइस। उहें रायपुर जिला प्रशासन कोती ले प्रोजेक्ट छाव के चलत लोक भवन में स्वास्थ्य शिविर लगाए गिस जेमा सामान्य बीमारी के संगे संग हृदय रोग, कैंसर, किडनी, स्त्री रोग और आने गंभीर बीमारी के निशुल्क जांच करेगीस। बालोद जिला के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र में आज हुए एक रद्दा हादसा में 3 झीन जवान लयिका मन के मौत हो गए। पुलिस ने बताई कि देवरी गांव ले ए तीनों झीन मोटरसाइकिल ले डोंडी लोहारा कोती जात रहीन, फिर इही बेरा खैरीडी गांव करा आगू ले आवत कार हा ए मोटरसाइकिल ला टक्कर मार दिस। टक्कर हा अतेक जोरदार हा रहीस कि ए तीनों जवान लयिका मन के मौका में ही मौत हो गए। एती सूचना मिलतेच पुलिस हा घटनास्थल में पहुंचीन और सब ला पोस्टमार्टम पर भेज के मामला के जांच शुरू कर दे है। ओती गौरेला पिंडरा मरवाही जिला में घलो मझगवा गांव में एक ठिन तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हा रद्दा तीर बैठे 3 झीन मनखे ला टक्कर मार दिस, जेका से तीर कका और भतीजा के मौका में ही मौत हो गए और उन्हें एक झीन आने हा गंभीर रूप ले घायल हुए है। नारायणपुर जिला में आज सुरक्षा बल की टीम बड़का मात्रा में माओवादी सामान जब्त करे है। हमार संवाददाता बताइन कि सुरक्षा बल की टीम तलाशी अभियान के चलत तोके के जंगल में बड़का मात्रा में हथियार, गोला बारूद और IED बनाए के सामान जब्त करे है, जेमा 315 बोर राइफल, 12 बोर राइफल, रॉकेट लॉन्चर और जिंदा कारतूस शामिल हरय। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर कोती ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संध्या 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। ए बखत के अंक मा बालोद जिला के संबंध मा जानकारी दे जाही। अब जानन मौसम के हाल। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कतकोन जिला में आज हल्का ले मध्यम वर्षा होए के खबर है। मौसम विभाग ले मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में एक ठेन चक्रवात बने हुए हैं। उन्हें राजस्थान ले लेके मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ ले लेत हुए झारखंड तक एक द्रोणिका विस्तारित है, जेकर से तीर मौसम में बदलाव आए है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी बताइन कि अवैया 24 घंटा में प्रदेश के कुछ जगह में तेज हवा गरेर के संग में पानी गिर सकत है। उन्हें 11 मई ले तापमान बढ़ सकत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। आज छत्तीसगढ़ के कतकोन न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के हुई आयोजन, न्यायालय में लंबित मामला ला आपसी सहमति ले सुलझाए गए। प्रदेश के कतकोन जिला में आज हल्का ले मध्यम वर्षा होए के खबर। अवैया 24 घंटा में प्रदेश के कुछ जगह में तेज हवा गरेर के संग गिर सकत है पानी। औ बालोद और गौरेला पिंडरा मरवाही जिला में हुई आज बड़का रद्दा हादसा। एक घटना में कका भतीजा समेत 5 झीन मनखे के हो गए मौत। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब संस्कृत में समाचार होंगे।
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक जतिन शर्मा।

0: आदौ मुख्यवार्ताः। शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री संजातः। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्। तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणेन अशेषे हि देशे विवादानां सौहार्दपूर्ण रीत्या निस्तारणार्थं राष्ट्रीय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विहितम्। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं त्रिनिदाद एंड टोबेगो देशस्य प्रधानमंत्रिणा सह मेलनं साधितवान्। अपि च क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य जयपुर नगरे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाल राज्ये प्रथमं तावत् भाजपा दलस्य प्रशासनं संघटितं जातम्। अवधेयं यत् भाजपा दलं विधानसभा निर्वाचनेषु ऐतिहासिकं जयं समर्ज्य तृणमूल कांग्रेस दलस्य 15-वर्षात्मकस्य शासनस्य अन्तं कृतवत्। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले राज्यपालः आर एन रविः श्री शुभेन्दु अधिकारिणं पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। 34-200 सदस्यानां विधानसभायां बहुमताय 18+ विधायकाः आवश्यकाः आसन्। चेन्नई नगरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः टीवीके दलस्य नेता अधव अर्जुनः अवदत् यत् वीसीके तथैव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इत्युभाभ्यां दलाभ्यां तस्मै पक्षाश्रयं विना समर्थनं प्रदत्तम्। अधुना निर्वाचने 88% आसनानि जित्वा टीवीके सर्वबृहत्तम दलत्वेन उद्भूतम्। यद्यपि दलनेता सी जी सेफ विजयः द्वयोः क्षेत्रयोः विजयी जातः, अतः तेन एकं स्थानं परित्यक्तं भविष्यति, येन दलस्य संख्या 70% भविष्यति। तथापि कांग्रेस दलस्य 5 विधायकाः सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके तथा आईयूएमएल इत्येतेषां प्रत्येकं 2-2 विधायकौ च मिलित्वा सहायक दलानां कुलसंख्या 13 वर्तते, येन बहुमतस्य मार्गः प्रशस्तो जातः। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणम् अद्य सम्पूर्ण देशे ऐषमः द्वितीय राष्ट्रीय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विदधाति। प्राधिकरणस्य सदस्य सचिवः संजीव पाण्डेयः आकाशवाणीं विज्ञापयत् यत् लोक न्यायालये सहमतेः योग्येषु आपराधिक प्रकरणेषु वादश्रवणं विधीयते। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं न्यायालयेषु लंबित प्रकरणानां सहमत्यानुसारं निस्तारणम् इति वर्तते। श्री पाण्डेयः अवोचत् यत् 23-2000 25-2000 यावत् 12 राष्ट्रीय लोक न्यायालयानां आयोजनं विधाय 26 कोटि प्रकरणानां समाधानम् अभवत्।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं कौशल कुमार भानो और साथी। पहले सुनते हैं कौशल कुमार भानो और उर्मिला देवांगन के स्वर में पीसीलाल यादव की ये रचना।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आइए अब सुनते हैं कौशल कुमार भानु और उर्मिला देवांगन के स्वर में PC लाल यादव की ये रचना।

0: इस गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे कौशल कुमार भानु और साथी। रात 8:15 पर इसी कार्यक्रम में कलाकार होंगे चतुर राम साहू और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 6:45 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ

0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
5: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। महासमुंद पुलिस ने एलपीजी गैस के गबन और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आईपीएल T20 क्रिकेट मैच कल नवा रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। और रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आज हुई हल्की से मध्यम बारिश, मौसम विभाग ने कल कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की जताई संभावना। छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायालयों में लंबित मामलों को आपसी सहमति से सुलझाया गया। इनमें आपराधिक प्रकरणों के साथ ही मोटर दुर्घटना प्रकरण, विवाह संबंधी विवाद, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी से संबंधित प्रकरण शामिल थे। वहीं 21 से 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के माध्यम से भी लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। पक्षकारों को अपने लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 31 मई तक गूगल फॉर्म में देना होगा। महासमुंद जिले में पुलिस ने एलपीजी गैस के गबन और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने आज जिला मुख्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ने गैस एजेंसी संचालकों के साथ मिलकर जब्त किए गए 6 एलपीजी कैप्सूलों से लगभग 92 मीट्रिक टन गैस का गबन किया, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने महासमुंद स्थित एक गैस एजेंसी के संचालक पंकज चंद्राकर और रायपुर के मनोज चौधरी को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से नकदी मोबाइल

0: अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होगी जो 4 जून तक चलेगी। नामांकन पत्र 11 से 18 मई तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित की गई है। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से दलीय आधार पर और पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से गैर दलीय आधार पर कराए जाएंगे। चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने आज ग्राम मुंडा में प्रगणकों द्वारा किए जा रहे जनगणना कार्य का निरीक्षण किया। कलेक्टर प्रगणक से मोबाइल लेकर स्वयं एक मकान मालिक के घर पहुंचे और मकान गणना संबंधी सभी जानकारी लेकर डिजिटल गणना पूरी की। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आईपीएल मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे स्टेडियम की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। इस बीच आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। वहीं 13 मई को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में इन दिनों सुशासन तिहार चल रहा है। इस दौरान जगह जगह समाधान शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार भाटापारा जिले की ग्राम पंचायत झुमका में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। इस दौरान श्री वर्मा ने हितग्राहियों को ट्रैक्टर की चाबी, अनुदान राशि के चेक, प्रमाण पत्र और अन्य सामग्रियां भेंट की। शिविर में 2300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 272 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बालोद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा पद्मश्री के लिए चयनित गोडबोले दंपत्ति से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण कल सुबह 10:30 से 11 बजे तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ करेंगे। बालोद जिले के डोंडीलोहारा थाना क्षेत्र में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम देवरी से तीनों युवक मोटरसाइकिल से डोंडीलोहारा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान खैरीडी गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम बजगवा में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने सड़क किनारे बैठे 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में चाचा और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है।

0: नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी निकायों को पेयजल संकट के निवारण के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की एक सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। साथ ही पाइपलाइन में लीकेज या टूट फूट को तत्काल सुधारने तथा नालियों से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनों और हाउस सर्विस कनेक्शन को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा चयनित भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 की अंतिम चयन सूची कल जारी की गई। इसमें 148 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की सुष्मिता सिंह का भी चयन हुआ है। उन्होंने 32वीं रैंक हासिल की है। और अब पेश है मौसम का हाल। आज राजधानी रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव सहित कई जिलों में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई है। कई स्थानों पर अंधड़ चलने से पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की भी खबर है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में एक चक्रवात बना हुआ है। वहीं राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड तक एक द्रोणिका विस्तारित है। इसके असर से मौसम में बदलाव आया है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।
1: आज उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा लगभग 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा, बीच में गस्टिंग 70 किलोमीटर प्रति घंटा भी जाने की संभावना है, जिसका वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया था बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग के एक दो स्थानों पर। बाकी जिले जो है उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ ने येलो अलर्ट जारी किया है। 11 मई से प्रदेश में मेघ गर्जन का गतिविधि कम होने का चांस है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में 10 मई से लेकर आगामी 4 दिन तक क्रमिक वृद्धि आने की संभावना है।
0: नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों की टीम ने बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुरक्षा बलों की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान तोके के जंगल में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आईईडी बनाने की सामग्री बरामद की है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के मामले में 3 अलग अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2,70,000 रुपये नकद, 6 मोबाइल और एक नोट गिनने की मशीन के साथ ही डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। और रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल क्षेत्र में स्थित घुघड़ा डैम में हाथी के एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। महासमुंद पुलिस ने एलपीजी गैस के गबन और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आईपीएल T20 क्रिकेट मैच कल नवा रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। और रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आज हुई हल्की से मध्यम बारिश। मौसम विभाग ने कल कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत का पहला गीत जिसके लिए आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। समीर के लिखे इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है दाग द फायर।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भारत

0: कक्षाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन, ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार की मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से जारी है चित्रपट संगीत। सोनू निगम और अलीशा चिनाय के युगल स्वरों में लीजिए सुनिए अजय विरमानी की रचना। संगीत संदीप चौटा का है। फिल्म का नाम है बॉलीवुड हॉलीवुड।

कुमार सानू की आवाज़ में लीजिए सुने चित्रपट संगीत का अगला गीत। गीत लिखा है समीर ने, संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम है फूल और कांटे।

चित्रपट संगीत का अंतिम गीत आवाजें ए हरिहरन, सुरेश वाडकर और साथियों की है। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है विशाल ने। फिल्म का नाम है माचिस।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप 8 बजे और रात 9:15 पर भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम लव भैया।
1: राम राम दीपा। और संगे संग कार्यक्रम सुनैया हमर जमो संगवारी मल्ला, हम दोनों के
0: राम राम, राम। भैया देख, अपन आस पास मा देखबे ना त पाबे की प्रकृति हा ईश्वर के द्वारा बनाए हुए बहुत ही सुंदर रचना है नी, जेमा है सुंदर सुंदर पेड़ पौधा है, रंग बिरंग के चिड़ै चिरगुन है, जिनावर है और मनखे मन माने हमन घलक शामिल हन।
1: फिर देख अब ये सब जनला ऊर्जा कहाँ ले मिलते, ये सब ला विचार करबे ना तो बड़ आश्चर्य घलक होते कि ये प्रकृति ये पर्यावरण है अपन संतुलन बनाए खातिर अपन ऊर्जा के संचय खुद अपन भीतर रखते और ये ऊर्जा मिलते सूरज ले, यानी कि सूर्य सबके ऊर्जा के स्रोत होता है। भाई माटी ले, हवा ले, पानी ले और एमा उपस्थित सूक्ष्म पोषक तत्व ले ऊर्जा मिलते, यानी कि ऊर्जा जिन्हें वो कौन कौन जगह ले मिलते भाई प्रकृति है तय करे हुए। ऊर्जा के बात करबो फिर सुनता नहीं संदेश।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दसवीं या BSc पास युवाओं के लिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य, भारत सरकार की संस्था CPET रायपुर और कोरबा में प्रवेश पाइए। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के साथ 100% प्लेसमेंट सहायता, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं का लाभ उठाएं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.cipet.gov.in।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सब लग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दीपा।
7: हाँ भैया।
6: हमन बात कर रहे हैं ऊर्जा अवखर स्रोत के। भाई अलग अलग स्रोत होते, फिर जेन फसल बर ऊर्जा के स्रोत होते वो थे सूक्ष्म पोषक तत्व। भाई इखर मौजूदगी ले फसल उत्पादन हा प्रभावित होते, माने कि अच्छा फसल उत्पादन खातिर जतेक सूक्ष्म पोषक तत्व के जरूरत पड़ते उतना पौधा ना मिलना जरूरी होते। अब ये मिलते कि नहीं, भाई पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व की उपस्थिति है फसल उत्पादन और

0: फसल गुणवत्ता दोनों पर बढ़िया होते हैं।
1: अब भैया ये पोषक तत्व ला पौधा के सही वृद्धि पर आवश्यक मात्रा के आधार में है ना अलग अलग बांटे गए हैं।
0: अच्छा,
1: जैसे कि देखन जो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जम्मो जो है ना वृहत पोषक तत्व में आते हैं, जिन हमन यूरिया और डीएपी और पोटास देते ना ओकर रूप में ये सब आते। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व में आते फेरस है, कॉपर है, जिंक है, मॉलिब्डेनम, निकिल, ये मन सब सूक्ष्म पोषक तत्व में रखे गए हैं।
0: ठीक।
1: जैसे देख मेरा भैया सूक्ष्म पोषक तत्व है जिंक, लोहा है और मैग्नीशियम, ये जो है पौधा के प्रकाश संश्लेषण करके जो पौधा है तेला हरा भरा बनाए में मदद रखते है।
0: और जैसे कि बोरान है और जिंक है, ये हाँ फूल पर बड़ उपयोगी होते। भाई फूल ला झरे रोग थे, कतई सुगर फूल खिले रही थे और मान ले कहूँ झर गए तो बड़ा दुख होते।
1: हाँ।
0: तो ये जिन बोरान और जिंक है वो हमरो ध्यान रखते है कि हमारे जिन फूल है और देखे हमला आनंद मिले।
1: हाँ।
0: है नी, फिर हर एक जिन फल है या फिर फल के बीज है भाई उकर आकार या बीज के रंग, फल के वजन ये में सुधार करते और एकर ले जिन उपज की गुणवत्ता है वो तो बढ़ बेकर ही।
1: और भैया अभी देख बिना तो मौसम में बड़ उतार चढ़ाव देखा पर मिला थे।
0: अभी देख बने धूप रही से।
1: हाँ,
0: अब अभी पानी गिर गया,
1: पानी गिर गए,
0: फिर अभी मौसम खुल।
1: हाँ, जैसे जैसे कहे ना अभी पाँचों तीन चार दिन ले कोनो कोनो मेरे पानी गिरा थे। तो भाई सही सूक्ष्म पोषक तत्व फसल में उपयोग करे ले पौधा में यदि पोषक तत्व मौजूद रही है नी तो वो जो है ओकर मजबूती ला बने मजबूत करते पौधा ला। तो ओकर ले का होते कीड़ा बीमारी जो लगे के जो संभावना है तेन हाँ कम हो जाते।
0: हाँ, मौसम बदलते।
1: हाँ।
0: तब मौसम बदले ले कई प्रकार के रोग राई घलो होते।
1: हाँ।
0: तो जैसे अपन बताया ना।
1: हाँ।
0: कि जिन सूक्ष्म पोषक तत्व है
1: ये
0: मन मौसम ले लड़े पर घलो मतलब तैयार करते।
1: हाँ, जैसे मॉलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व है ना तेन हाँ फलदार और फसल भर भी उपयोगी है। बोरान और तांबा के पछुआ मन गुठिया है पौधा के जड़ मजबूत करते, स्वच्छ बनाते और एक ले का होते पौधा के जो जड़ है तेना मिट्टी के जो पानी है तेला अवशोषित करे के क्षमता रखते, मतलब मिट्टी पानी ला अवशोषित करके बने ढंग ले रखते।
0: गोपा दीपा हमन देख पाछू गोठार है कि पौधा के पोषक तत्व भाई स्रोत का आहार है, हवा है, पानी है और माटी में जेंगे संग में और कई ठन प्राकृतिक पदार्थ है ये पोषक तत्व उपस्थित रखते है ना। माटी की स्थिति के अनुसार किसान भाई मन ला माटी में अतिरिक्त माने अक्ताहा जिन पोषक तत्व है मिला के आवश्यकता होते।
1: और ये पोषक तत्व के औ कई ठन स्रोत है भैया, जैसे कि आपन बताया कि ओमा औ पोषक तत्व मिलाए के जरूरत पड़ते है नी। तो ये पोषक तत्व हमन कहाँ मिलाबो? तेमा जैविक स्रोत है, जैविक स्रोत में जैसे कंपोस्ट खाद है, पौधा के अवशेष है, हरा खाद है, अवशिष्ट गोबर खाद, ये मन से हमन कर सकते हैं। और फिर एक ठन कृत्रिम स्रोत आते जैसे में डीएपी रासायनिक उर्वरक जो है यूरिया पोटेश पोटास वगैरह है एकर से। और पोषक तत्व जो संतुलित मात्रा है एकर उपयोग करना है हमें ये कैसे पता चली है नहीं?
0: भाई एकर संतुलित मात्रा पर भाई हमला अपन खेत के माटी के जांच करना बहुत जरूरी
1: है।
0: माटी के जांच करबो ओकर परीक्षण करबो तब माटी के जांच ले भाई मालूम पड़ी कि वहाँ कौन से पोषक तत्व कम मात्रा में है।
1: हाँ।
0: कौन पोषक तत्व है ज्यादा मात्रा में।
1: हाँ।
0: है या कौन पोषक तत्व के बहुत आवश्यकता है।
1: हाँ।
0: तो ओकर जांच ले जन
1: परिणाम
0: आई तो परिणाम के भाई मूल्यांकन करे बाद में किसान संगवारी मन आवश्यकता अनुसार।
1: हाँ।
0: पोषक तत्व के ओकर पूर्ति कर सकते
1: हैं से पौधा फल फूल उत्पादन सबों में।
0: हाँ।
1: गुणवत्ता बढ़ी, अच्छा उत्पादन होगी।
0: एकर अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व मन के उचित प्रयोग ले भाई फसल मन में प्रतिकूल मौसम जैसे बताया ना मन कि बीमारी ले लड़े खातिर मल्ला मजबूत करते और संगवारी हो फसल के उत्पादन में सूक्ष्म पोषक तत्व इखर मन के बड़ महत्ता होते भाई इखर रह ले और नहीं रही ले पौधा फसल ये सब के प्रभाव पड़ते हैं। गुड बात तो करबो फिर अब बेरा हुआ थे किसान वाणी के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: देख, हम अभी ऊर्जा की बात करते रहे कि सूक्ष्म पोषक तत्व में भाई अत्यधिक ऊर्जा रही थे कि वह पौधा और फसल का सहारा देते। फिर जब ऊर्जा की बात आते ना तो एक ठीक और ऊर्जा वाला मिलते और वो ऊर्जा मिलते संगीत ले, और गीत संगीत ले किसान संगवारी मन घलो ऊर्जा लेते और अपन काम ले जाने ना बिना थके और एक राग में एक सुर में काम करते।
1: हाँ,
0: बढ़िया खेती करते। तो अब इशारा समझ गए हो बेटा।
1: तो संगी हो सुंथन महादेव हिरवानी और साथी के स्वर में ये सुघर गीत।

0: संगवारी हो अभी सुनेन ये सुघर गीत महादेव हिरवानी के स्वर में। दीपा मैं देख कई बार हमन किसान संगवारी मल्ला उखर खेती बाड़ी उखर खेती किसानी के जन तकनीक है ओखर ऊपर सलाह देवा थन और विशेषज्ञ मन मतलब सलाह देते और सलाह लेवन सुनते गुंथे घलो।
1: हाँ।
0: तो आज इन्हें सलाह और जानकारी के विषय है विकसित कृषि संकल्प अभियान 2026। इकर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर देवेंद्र कुर्रे सहायक प्राध्यापक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले हम इकर ले गुड बात करे हैं नीतू शर्मा।
2: संगवारी हो हमार किसान भाई मन हा अपन किसानी के बूता ला बड़ ही मन लगा के करते उमन के प्रयास रही थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले माने माटी महतारी के उमन हा बने असन सेवा बजाए। फिर संगवारी हो कई पैत ऐसे होते ना नवा नवा चार होवत रही थे हमार किसानी के बूता मा जेखर ज्ञान हमार संगवारी मल्ला नहीं रहा। तो यही बात ला ध्यान में रखत हुए अभी के बेरा में हमार शासन के डहर ले या हमार खेती किसानी में का बूता हुआ थे तो यही बात ला ध्यान में रखत हुए संगवारी हो आवा जानकारी लेथन विकसित कृषि संकल्प अभियान 2026 ये विषय में जानकारी दे बर हमार बीच हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार कुर्रे ये मन है सहायक प्राध्यापक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। राम राम डॉक्टर कुर्रे जी।
3: राम राम मैडम।
2: आज के विषय हमारे जानकारी के है विकसित कृषि संकल्प अभियान 2026 ये का हरे।
3: जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है विकसित कृषि संकल्प अभियान 2026 इसमें विकसित भारत 2047 के विजन में रखते हुए यह तैयार किया गया है। इसमें कृषि मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि खरीफ मौसम 2026 में के पूर्व 5 मई से 20 मई तक 12 दिवस की अवधि में हर विकास खंड के हर ग्राम में यह कार्यक्रम चलाया जाना है जिसमें विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से किसानों को विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान की जाएगी।
2: ये तो बताओ आप मन विकसित कृषि संकल्प अभियान फिर ये बताते हो कि ये जन सरकार हमर चलावत है विकसित कृषि संकल्प अभियान हर गांव में हर तहसील में अभी आप मन बताया तो एक हर उद्देश्य का हरे।
3: इसका मुख्य तीन उद्देश्य है मैडम। इसमें खरीफ मौसम के प्रमुख फसल जैसे धान मक्का इत्यादि की संबंधित आधुनिक तकनीक के बारे में किसानों को जानकारी देना। दूसरा है कि किसानों के लिए उपयोगी विभिन्न प्रकार के सरकारी योजनाएं हैं जैसे पीएम किसान योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है आरकेबीवाई है मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ये योजना के बारे में और इसके नीति के बारे में किसानों को जागरूक करना। और तीसरा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में फसलवार जो अनुशंसित मात्रा है उसको उर्वरक के रूप में खेत में कैसे उपयोग करना है और कैसे फसलों का उर्वरक का सही प्रोत्साहन करना है और अभियान के दौरान किसानों से यह फीडबैक भी लेना कि क्या समस्या आ रही है उनके खेती में और क्या किसान नवाचार कर सकते हैं वैज्ञानिक विधि से। कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ से जो भी वैज्ञानिक आधुनिक विधि और वैज्ञानिक विधि प्रचार प्रसार हो रहा है उसको गाँव में सही तरीके से पहुँचाना और अनुसंधान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश है इसका निर्धारण करना भी इसका एक उद्देश्य है मैडम
2: जी। तो ये तो बात करे उद्देश्य के फिर ये जन अभियान चलावत है सरकार है विकसित कृषि संकल्प अभियान एक हर मुख्य बात का है या एक हर विशेषता का है हमारे किसान भाई मतलब बताते हो आप मन।
3: इसका प्रमुख विशेषता यह है मैडम कि किसानों को नए तकनीक जैसे ड्रिप जैविक खेती प्रिसीजन फार्मिंग ड्रोन इत्यादि की जानकारी देना। दूसरा मृदा स्वास्थ्य कार्ड फसल बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करना किसान को प्रशिक्षण देना जागरूक करना नए कीट बीमारी और फसल में होने वाले जो मौसम के पूर्वानुमान है ये सब की जानकारी देना जलवायु परिवर्तन से बचाना और कृषि में उपयोग होने वाले जो यंत्र हैं उसका भी बढ़ावा देना ताकि समय की बचत हो और खर्च भी कम हो और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल जो खेती है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हम लोग जो बोलते हैं उसके बारे में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना
2: जी। तो ये तो मुख्य बात हो इस आप मन बताओ कि ये जो अभियान चलावत है सरकार है गांव-गांव में किसान भाई मल्ला जागरूक करे बर नवा बात बताए बर फिर ये बताते हो कि विकसित कृषि संकल्प अभियान में गाँव में किसान भाई मल्ला कौन रकम ले जानकारी मिली या का जानकारी मिली।
3: इसके चर्चा के बहुत सारे विषय हैं मैडम जैसे किसानों को नए किस्म के बारे में और नए तकनीक के बारे में जानकारी प्रदान किया जाएगा वहाँ पर और जैसा हम देख रहे हैं कि रासायनिक खेती से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं तो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का भी प्रचार प्रसार करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इसका बनाना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कैसे बनेगा, कैसे उपयोग होगा, इसके बारे में भी जानकारी देना, जैव उर्वरक, जैविक खाद इत्यादि को प्रोत्साहित करना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जो रिकमेंडेशन डोज होता है, जिसको अनुशंसित मात्रा बोलते हैं, तो इसका भी कुल मात्रा जितना अनुशंसित होता है उतना ही उपयोग करना। कई बार क्या होता है, ज़्यादा उर्वरक उपयोग करने से लागत में भी वृद्धि होती है और ज़्यादा उत्पादन भी नहीं हो पाता और फसल को नुकसान भी हो जाता है। तो सही फसलवार कितना मात्रा लगेगा उर्वरक का, ये भी उपयोग, सही उपयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है। संतुलित मात्रा में भी उर्वरक का उपयोग करना एक इसका चर्चा का विषय होगा। DAP के रूप में, जैसे हम देखे थे पिछले बार की उर्वरक का बहुत सारे समस्या आ रही थी, उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे उर्वरक, तो DAP का क्या विकल्प हो सकते हैं, जैसे 12-32-16 है, 20-20-13 है, SSP इत्यादि का भी उपयोग करके किसानों को उपयोग करने के बारे में बताना। विभिन्न प्रकार के और भी उर्वरक हैं रासायनिक उर्वरक को छोड़ के, जैसे हरी खाद, जैव उर्वरक, नील हरित इकाई, केचुआ खाद इत्यादि का उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे क्या होता है, भूमि का सुधार भी होता है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है, पौधों का बढ़वार भी अच्छा होता है और साथ ही साथ इसमें स्वाद बहुत अच्छा होता है। और नए तकनीक जैसे ड्रोन के माध्यम से कैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है, इसके बारे में भी बताया जाएगा और साथ ही साथ प्रदर्शन का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें खास करके कृषि विज्ञान केंद्र है और हमारे कृषि विश्वविद्यालय है, इसके माध्यम से ड्रोन प्रौद्योगिकी के बारे में प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। चूंकि यह खरीफ मौसम 2026 हेतु आधारित है, इसलिए धान की सही तकनीक का उपयोग करने के लिए धान का ज़्यादा उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना भी इसका एक लक्ष्य है। इसमें धान की छिड़काव बोनी के अलावा धान की कतार बोनी का उपयोग करना, DSR मशीन के माध्यम से बोनी करना या फिर SRI के माध्यम से बोनी करना, पैडी ट्रांसप्लांटर के माध्यम से रोपाई करना, सोयाबीन की फसल में मशीनीकरण का उपयोग करना, जैसे रीज एंड फरो, जो मेड़ और नाली की जो प्रणाली होती है का उपयोग करना, BBF ब्रॉड बेस्ड फरो उपयोग करना, उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित करना, जिसमें किसान अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता हेतु दलहन की फसल और तिलहन की फसल के लिए भी उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना, जिसमें किसानों को अनाज की फसलों के साथ साथ दलहन और तिलहन की भी उत्पादन बढ़ाया जा सके, जिससे भारत में चूंकि दलहन और तिलहन की उत्पादन कम है तो इसलिए दलहन और तिलहन के भी उत्पादन को बढ़ाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। फसल चक्र परिवर्तन, क्रॉप रोटेशन का भी इसमें जानकारी दिया जाएगा, ताकि धान के बदले अन्य फसलों का भी उत्पादन किया जा सकता है, जिसमें किसानों को धान के अलावा भी अन्य लाभकारी फसल जैसे दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसल प्रोत्साहन हेतु किसानों को जागरूक किया जाएगा। सिंचाई की विभिन्न व्यवस्था के बारे में भी किसान को जानकारी दिया जाएगा, जिसमें ड्रिप, स्प्रिंकलर, जल संरक्षण हेतु डबरी संवर्धन के तकनीक का जानकारी देना, कृषि और संबंध विभागों से संचालित जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को भी जानकारी देना, जिसमें बागवानी मिशन और पशुपालन, फिशरीज, डेयरी, ये सभी विभाग भी अपने जानकारी देंगे। ऑयल पम्प मिशन और ऑयल सीड्स मिशन हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना भी एक इसका लक्ष्य है। एग्रीस्टेक परियोजना जैसे बहुत महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में किसानों को जानकारी देना, जिसमें किसानों को EKYC, आधार सीडिंग, सेल्फ रजिस्ट्रेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन इत्यादि करवाना, और यह जो किसान के समीपस्थ लोक सेवा केंद्र के माध्यम से निःशुल्क किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत क्षतिपूर्ति हेतु प्राधान्य को भी किसानों को प्रोत्साहित करना, इसमें किसान को किसी प्रकार की क्षति होती है इससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जा सकता है। खेत की तैयारी से कटाई गहाई तक के उन्नत कृषि यंत्रों के समुचित उपयोग की जानकारी किसानों को देना, जिसमें विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं, जिसमें कम समय में ज़्यादा इसका क्षमता होता है और मेहनत भी कम लगता है, ऐसे यंत्रों का उपयोग के लिए बढ़ावा देना। विशेष क्षेत्र में पूर्व वर्षों में कृषिगत गतिविधियों में परिलक्षित समस्याएं एवं वातावरणीय प्रभाव के आधार पर आगामी खरीफ वर्ष की तैयारी हेतु सूचना, सलाह, सुझाव, समसामयिक जानकारी प्रदान करना भी इसमें शामिल है। बीज, उर्वरक एवं अन्य आदान सामग्रियों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किसानों को वितरण करना भी इसमें शामिल है। पराली जलाने से होने वाले नुकसान, समस्याओं इत्यादि को जानकारी देना और किसान को पराली नहीं जलाने हेतु प्रोत्साहित करना, पराली प्रबंधन हेतु उपयोगी यंत्र, मल्चर इत्यादि का प्रदर्शन करना और सही तरीके से पराली का प्रबंधन हेतु उसको सड़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करना। विशेष क्षेत्र में मखाना और सिंघाड़ा जैसी फसलों की उत्पादन हेतु किसानों को जानकारी प्रदान करना।
2: बहुत ही अच्छा आपका कन जानकारी हमारे किसान भाई मल्ला मिली अभियान के माध्यम ले डॉक्टर कुरे जी। फिर ये बताते हो कि जब ये जानकारी हमारे किसान भाई मन तक पहुंची तो एकर ले मल्ला का लाभ मिली?
3: सर्वप्रथम किसानों को नई जानकारी मिलेगी, यही सबसे बड़ी लाभ है। और इसमें नई तकनीक और नया विधि नया प्रणाली के बारे में जो जानकारी प्राप्त होगा यह उनका सबसे बड़ा लाभ होगा। किसान अपने फसल उत्पादन में अपने लागत को भी कमी कर सकते हैं, यह भी उनका बहुत बड़ा लाभ है। और उत्पादन को बढ़ा भी सकते हैं विभिन्न प्रकार के प्रणाली जैसे श्री विधि या फिर जो लाइन विधि है इत्यादि के माध्यम से। जोखिम प्रबंधन हेतु बीमा मौसम की जानकारी इत्यादि भी उनको लाभ के रूप में मिलेगा, ताकि समय अनुसार अपना खेत में जो होने वाले फसल में और फिर खेत में जो होने वाले बीमारी हैं कीट हैं या फिर और भी मौसम संबंधित जो समस्याएं हैं उसको समय से बचा जा सके। बाजार से बेहतर जुड़ाव हेतु भी एक इनको जानकारी प्रदान किया जाएगा किसानों को। बाजार में बेहतर जुड़ाव हेतु बाजार का जो भाव क्या है, बाजार की क्या स्थिति है, ये भी उनको जानकारी मिलेगी।
2: तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार कुर्रे जी, आप मन हा आज हमर संगवारी मन ला बहुत ही फरिया के जानकारी देव विकसित कृषि संकल्प अभियान 2026 ये विषय में, ता आप मन हा हमर संगवारी मन के बीच में आया और सुघर जानकारी देव, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद मैडम।

0: સંગીહો અભી સુનેન ક્રમ આજ કી સલાહમાં વિકસિત કૃષિ સંકલ્પ અભિયાન 2026 યે વિષયમાં બતાવતરીને ડોક્ટર દેવેન્દ્ર કુરરે સહાયક પ્રાધ્યાપક ઇન્દિરા ગાંધી કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલય રાયપુરલે ઓર ઇકર સંગ ગોટ બાત કરે નીતુ શર્મા હર
1: જેને જાણકારી દેતા ના કિસાન સંગવારી મલ્લા આવ સલાહ હો ચાહે બાતચીત હો कई बार किसान संघ वाले मन आते हैं जिनमें सफलतापूर्वक अपन काम लग कर रहे हुए तो उखरो माध्यम ले उमाला जानकारी मिलते है।
0: हाँ।
1: अच्छा और जानकारी उखर तक कैसे पहुंचते है और उमन किस रूप में लेते होला एक हमारे यहाँ पुष्टि घरों करते हैं।
0: हाँ।
1: वो पुष्टि का एक तरीका हमारे का है
0: प्रश्नोत्तर
1: है ना।
0: हाँ।
1: तो फिर आ जाते अपन प्रश्नोत्तर में।
0: हाँ भैया अभी अब भी रहे हमारे कृषक प्रश्न मंच के तब भाई बता देता हूँ मैं आज के प्रश्न। हमारे आज के प्रश्न है विकसित कृषि संकल्प अभियान 2026 के प्रमुख विशेषता का है। प्रश्न एक घाव पर देता हूँ विकसित कृषि संकल्प अभियान 2026 के प्रमुख विशेषता का है और संगी हो एक सही जवाब अपन हमारे तीर जल्दी से जल्दी भेज देवा और अब बता देता हूँ पाछू हफ्ता के प्रश्न और ओकर सही जवाब। तब पाछू हफ्ता के प्रश्न री से मई माह मा पशुधन ला कौन से रोग बीमारी के टीकाकरण लगवाना चाहिए और एक जो सही जवाब है तेन है गलघोटू और लंगड़ा बुखार के टीकाकरण हमला करवाना चाहिए। अब भैया सही जवाब भेजे हमारे संगी मन के।

0: भूल साहो। जम्मू संगवारी मल्ला भाई सही जवाब भेजे के बड़ बड़ बधाई हो और आप मन ऐसने जवाब देवत रहो हमले जुड़े रहो। भाई आप मन के जब जवाब मिलते तो मन लगते कि हमारे कार्यक्रम आप ध्यान ले सुनता हाँ, और गुनता
1: हो कार्यक्रम हमारे सफल
0: होते। अब बारी है एक सूचना के, सूचना है हेलो किसान वाणी के संगवारी हो। अवैया मंगलवार यानी कि 12 मई 2026 के प्रसारित होइया हेलो किसान वाणी कार्यक्रम के विषय हो ही गर्मी में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन। ये विषय में आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमर स्टूडियो में मौजूद रही विशेषज्ञ डॉक्टर निधि वंजारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सालय भाटागांव रायपुर ले। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमला फोन कर सकत हो। हमर फोन नंबर हवे 4003482, 4003483 और तीसरा है 4003484। रायपुर के एसटीडी कोड हवे 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग 12 मई 2026 के 11:30 ले 12 तक कर जाही। ये कार्यक्रम के प्रसारण इसी दिन यानी मंगलवार के ही संझा 7:30 में करे जाही। हमला आप मन के फोन कॉल के अगुरा रही सूचना सिराइस।
1: भैया ये सूचना के बाद अब एक ठन गाना सुन लेथन, विदुषी ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकार के स्वर में सुनथन ये गीत।

0: संगी हो अभी सुने ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकार के स्वर में ये सुघर गीत। और संगी हो ये रही से किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: गुड बात करे देख समय कथे क्यों उड़ा गए मालूम नहीं पड़ी। तब जाए पहले बताए हम कल के कार्यक्रम
0: काली चौपाल मा गुड बात के संग जानकारी सुनबो ग्रीष्मकालीन सब्जी मा कीट प्रबंधन और फिर प्रश्नोत्तर संग गीत संगीत होबे करी भैया है ना। ता संगी हो देव विदा कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला दीपा
1: लव कुमार सिंह के
0: राम राम, राम।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे चौपाल। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। पहले गीत के लिए आवाज है सुनिधि चौहान और करसन सरगथिया की। तेजपाल कौर ने इस गीत को लिखा है और संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने। फिल्म का नाम है फिजा।

श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 12 मई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा गर्मी में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निधि बंजारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा

विद्यालय भाटागांव रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003-482, 4003-483 और 4003-484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 12 मई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 में किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से जारी है चित्रपट संगीत। सुनिधि चौहान की आवाज में आइए सुनते हैं समीर का लिखा यह गीत। संगीत दिया है प्रीतम ने। फिल्म का नाम है धूम।

0: अभी आप सुन रहे थे हर्षदीप कौर और सपना अवस्थी की आवाजों में इरशाद कामिल की रचना, संगीत A.R. रहमान का था, फिल्म का नाम था रॉकस्टार। और इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप 9:15 पर भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं, समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं चतुर राम साहू और साथी। पहले सुनते हैं चतुर राम साहू, गीता भट्ट और कांति यादव के स्वर में ये पारंपरिक भजन।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आइए अब सुनते हैं चतुर राम साहू, गीता भट्ट और कांति यादव के स्वर में ये कर्मा।

इस गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे चतुर राम साहू और साथी। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थ सारथी। मोना, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और आईएसएल फुटबॉल लीग में जमशेदपुर एफसी और बेंगलोर एफसी के बीच मुकाबला जारी।

0: 18 ओवर में एक विकेट खोकर 119 रन बना लिए थे। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए मुना, तो राजस्थान चौथे स्थान पर है और पांचवें नंबर पर गुजरात की टीम है। आज जो जीतेगी उसके लिए ये मैच एक लॉटरी से कम नहीं होगा।
1: बिल्कुल लॉटरी से कम नहीं होगा, क्योंकि आप अगर अंक तालिका पर नजर डालें तो सनराइजर्स हैदराबाद शीर्ष पर है, 11 मैचों में 14 अंक है और इन दोनों टीमों के 12-12 अंक है, तो जो भी टीम जीतती है उसके पास दूसरे या हो सकता है पहले स्थान पर भी जाने का एक सुनहरा मौका हो।
0: जी बिल्कुल, एक सुनहरा मौका कि आप दूसरे स्थान पे तो कम से कम जाएंगे और अगर अच्छे अंतर से जीतते हैं तो पहला स्थान भी आपका इंतजार कर रहा है। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। एक रिपोर्ट।
2: जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है, प्लेऑफ की दौड़ और भी रोमांचक होती जा रही है। इसी दौड़ में बने रहने की उम्मीदों को लिए कल दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने आए कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स, जहां केकेआर ने दिल्ली को 8 विकेट से हराते हुए सीजन में लगातार अपनी चौथी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 142 रन लगाए। प्रथम निशंका ने सर्वाधिक 50 रन बनाए, जबकि आशुतोष शर्मा ने 39 का योगदान दिया। केकेआर की ओर से कार्तिक त्यागी और अनुकूल रॉय ने दो दो विकेट लिए। 143 रन के लक्ष्य को केकेआर ने 14 ओवर और 2 गेंद में 2 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। टीम के लिए जीत के हीरो रहे फिन एलन, जिन्होंने 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की शानदार पारी खेली। इस जीत के बाद कोलकाता को प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को नई जान मिली है, जबकि दिल्ली के लिए रास्ता बेहद मुश्किल हो गया है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: कोलकाता के लिए कल का मुकाबला किसी तोहफे से कम नहीं होगा, क्योंकि उसने भी सोचा नहीं होगा कि दिल्ली अपने मैदान पे इतनी आसान जीत उसको दे देगी।
1: देखिए, पूरे टूर्नामेंट में अगर हम दिल्ली के प्रदर्शन को देखें तो पैचेस में किसी मैच में उसके गेंदबाज चलते हैं तो किसी मैच में उसके बल्लेबाज चलते हैं। एक इकाई के रूप में जो प्रदर्शन की बात होती है वो दिल्ली अभी तक कर नहीं पाई है। 200 से ऊपर का स्कोर करके भी मैच हारी है दिल्ली की टीम। और अगर कल के मैच की हम बात करें तो केकेआर की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी कि ये इतना लंबा टूर्नामेंट है जिसमें सही समय पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। केकेआर की शुरुआत धीमी रही लेकिन लगातार 4 मैच जीते हैं टीम ने, और आप देखिए कि उसके जो टॉप ऑर्डर है, उसके जो फिनिशर है, उसके जो बॉलर है, सब जबरदस्त फॉर्म में। कल फिन एलन ने 5 चौके और 10 छक्के, उसमें एक छक्का 92 मीटर का था। तो जो आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन कल उन्होंने किया है, पूरी तरह से दिल्ली के जो गेंदबाज हैं वो दबाव में नजर आए। और यहाँ पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, जो आईपीएल से ठीक पहले जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे, बिल्कुल निराश किया उन्होंने। उनकी गेंदों में वो दिशा और दशा नजर ही नहीं आ रही थी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली को काफी निराशा। और मैच के बाद तो अक्षर पटेल ने बोला भी कि अब जो भी होगी प्लानिंग वो अगले सीजन के लिए होगी। मतलब टेक्निकली, मैथमेटिकली भले ही दिल्ली अभी कहीं ना कहीं प्लेऑफ की दौड़ में है, लेकिन अंदर से टीम मैनेजमेंट समझ चुका है कि अब उनके लिए जो है रास्ते बंद हो चुके हैं। और कोलकाता की जीत में फिन एलन ने निश्चित तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया। कैमरन ग्रीन के साथ जो उनकी साझेदारी थी, शतकीय साझेदारी, वो काफी अच्छी रही। और यहां विशेष तौर पर बात करनी पड़ेगी एक ऐसे खिलाड़ी की जो शुरू से कोलकाता नाइट राइडर का ट्रंप कार्ड रहा है, वह सुनील नारायण। 4 ओवर 17 रन 1 विकेट। ऐसे आईपीएल में जिसमें गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज भी यहां पिट रहे हैं, ऐसे में ये इस तरीके का प्रदर्शन करना, अनुकूल रॉय गेंदबाजी के साथ जो एक कैच उन्होंने लपका था वो भी बहुत जबरदस्त था। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि केकेआर जो है वो सही समय पर एक इकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है और यहां से आगे उनकी राह मुझे आसान होती हुई नजर आ रही है।
0: जी बिल्कुल, जिस तरह का कमबैक इस सीजन में केकेआर की तरफ से देखने को मिला, पहले 6 मुकाबलों में 5 हारे जी, 1 टाई और लगातार 4 जीत, तो टीम एक अच्छी पटरी पर है। वहीं दिल्ली के लिए मुश्किल ये भी होगी कि आने वाले 3 मैचों में पंजाब, राजस्थान और एक बार फिर कलकत्ता की टीम सामने होगी। उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भी भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। 8 भारतीय मुक्केबाज अंडर 15 में आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज करके फाइनल में पहुंच गए। ये खिलाड़ी अब फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे, जबकि 5 भारतीय मुक्केबाजों को सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि ताशकंद में भारतीय मुक्केबाज अपने हर मुक्के के साथ एक नए पदक की आस भारत को दिलाते हुए।
1: और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है ना कि अंडर 15 और अंडर 17 आयु वर्ग के चैंपियनशिप

0: है, और यहां से जो निकलेंगे उनके लिए आगे जो बहुराष्ट्रीय बहु खेल टूर्नामेंट होते हैं, जैसे एशियन गेम्स है, राष्ट्रमंडल खेल है या ओलंपिक है, उनके लिए यहाँ पदक जीतने वालों का मनोबल बढ़ेगा और जो भारत का पूल तैयार होगा, जैसे हम अगले ओलंपिक लॉस एंजलिस के बाद ब्रिस्बेन, या जो हम खुद आकांक्षा कर रहे हैं कि भारत में 2036 ओलंपिक हो, तो उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो काफी अच्छा यहाँ से एक्सपोजर मिलेगा इन खिलाड़ियों को, जिनमें से भविष्य के लिए पूल तैयार होगा।
1: जी बिल्कुल, भविष्य के लिए पूल तैयार होंगे और ये मेडल इन खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अच्छा प्रदर्शन करने को और प्रोत्साहन लेकर के साथ आएंगे। और अब मुक्केबाजी के बाद रुख करते हैं तीरंदाजी का, जहां चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबे को 147-144 से हराया। एक रिपोर्ट।
2: महाराष्ट्र के 25 वर्षीय तीरंदाज साहिल जाधव ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147-144 से हराकर मौजूदा टूर्नामेंट में भारत का पहला पदक हासिल किया। ये विश्व कप में उनका पहला व्यक्तिगत पदक भी है। जाधव पहले सेट के बाद एक अंक से पीछे चल रहे थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे सेट में परफेक्ट 30 का स्कोर बनाया, जबकि डेम्सबो 27 का स्कोर ही बना पाए। इससे जाधव को कुल 59-57 की बढ़त हासिल करने में मदद मिली और अपने अंतिम 9 तीरों में से केवल 2 अंक गवाकर 3 अंक की यादगार जीत हासिल की। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें फ्रांस के मौजूदा विश्व चैंपियन निकोलस गिरार्ड से 1 अंक से हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने इस पदक के साथ कंपाउंड वर्ग में अपने अभियान का भी समापन किया। भारत अब कल प्रतियोगिता के समापन दिवस पर रिकवर स्पर्धा में 2 और पदक जीतने की कोशिश करेगा। भारतीय महिला टीम स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर सेमीफाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैट।
1: जो पदक भारत ने आज के लिए जीता, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन नज़र कल होगी जहां पे स्वर्ण पदक के लिए वो भारतीय टीम जो कोरिया को हरा करके पहुंची है, 10 बार की चैंपियन कोरिया टीम को कल चीन सामने होगा, कितना दबाव होगा।
0: देखिए, सबसे पहले तो आज जो साहिल ने किया है उसकी बात करते हैं कि कंपाउंड में पिछली बार भारत को 5 पदक मिले थे और इस बार बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा, तो इसको एक कॉन्सोलेशन कह सकते हैं कि, और वो भी साहिल जैसे युवा खिलाड़ी जिसके लिए ये दूसरा ही करियर का बड़ा पदक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीत चुके हैं और सामने बहुत ही अनुभवी तीरंदाज थे, पहले सेट में पिछड़ भी गए थे, उसके बाद भी जो शूटिंग और आर्चरी है नर्व्स का खेल होता है, एक सांस से बदल जाता है मुकाबला, तो वहां पर उसको कंपोजर बनाए रखते हुए उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो वाकई काबिले तारीफ है। और अगर हम कल की बात करें रिकर्व में महिला टीम की, तो दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम महोद जैसे युवा खिलाड़ी हैं, अनुभव और युवा खिलाड़ी का अच्छा तालमेल है। साउथ कोरिया को हराया है 10 बार की चैंपियन, मनोबल काफी बड़ा होगा और बड़े मुकाबलों में खेलने का काफी अनुभव दीपिका के पास है, अंकिता के पास है, तो मुझे लगता है कि ये जो चाइना से मुकाबला होने वाला है यहां पर वो अनुभव जरूर उनका काम आएगा। और पिछले कुछ अरसों में अगर हम प्रदर्शन को देखें, चाहे वो दीपिका हो चाहे वो अंकिता हो, कहीं ना कहीं एक निराशा होगी कि बड़े टूर्नामेंट में वो पदक जीतने में नाकाम रहे, तो उनके पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और व्यक्तिगत वर्ग की अगर हम बात करें, सिमरनजीत, आप देखिए कॉम्पिटिशन का लेवल कि जब क्वालिफिकेशन हो रहा था तो दीपिका से 3 अंक से पीछे रह गई थी सिमरनजीत और टीम स्पर्धा में जगह बनाने में नाकाम रही, तो उनके पास भी अब एशियन गेम्स की पदक विजेता रह चुकी है, तो उनके पास भी एक नया इतिहास लिखने का ये सुनहरा मौका है।
1: जी बिल्कुल, जिस तरह का पहला चरण भारत के लिए रहा था, बहुत अच्छी नतीजे वहां से भारत के लिए नहीं आए थे, तो उम्मीद होगी यहां पे कम से कम कुछ पदकों के साथ इस अभियान को समाप्त किया जाए। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। ISL फुटबॉल लीग में जमशेदपुर FC और बेंगलोर FC के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलोर FC ने जमशेदपुर पर 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं आज खेले गए एक अन्य मुकाबले में गोवा FC ने मोहन बगान FC के भी साथ एक-एक से मुकाबला ड्रॉ खेला। एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता सोमवार से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रही है। भारत 44 साल बाद इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव ने बताया कि गुजरात इस प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे।
3: एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की तैयारी पूरी है और 102 मैन और 77 गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुजरात गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहूंगा, एशियन चैंपियनशिप पहली बार हो रही है वो भी गुजरात में। कॉमनवेल्थ गेम जो 2030 में होना

0: उसके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा भाई चानू को ज्यादा इंजरी नहीं है, थोड़ा सा उसने शोल्डर में पेन महसूस किया था, तो इसलिए कहीं ज्यादा इंजरी ना हो जाए उसको अभी रेस्ट देते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेना बहुत जरूरी है और एशियन गेम्स में, इसलिए हमने उसको ड्रॉप किया है।
1: इससे कुछ महीने पहले गुजरात ने ही कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की थी, जहां भारतीय खिलाड़ियों का एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। यहाँ पर क्या महत्वाकांक्षाएं होंगी अपने भारोत्तोलन के खिलाड़ियों से भारत को?
2: बिल्कुल होगी, क्योंकि एक वैसे थोड़ा सा सेटबैक है कि मीराबाई चानू इसमें भाग नहीं ले रही है, हालांकि ये राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों को ध्यान में रखते हुए कोई जोखिम लेना ठीक नहीं समझा होगा, और वो सही भी है, लेकिन दुनिया भर के काफी नामी गिरामी ओलंपिक मेडलिस्ट एशियन गेम्स मेडलिस्ट इसमें भाग ले रहे हैं, तो एक अच्छा एक्सपोजर होगा, और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए ये क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट भी है, तो यहां से काफी कोटा स्थान हासिल करने की उम्मीद है। और चूंकि गांधीनगर में हो रहा है और ये वही जगह है जो हमारे राष्ट्रमंडल खेलों का अहमदाबाद मेजबान है, और ओलंपिक के लिए भी हम अहमदाबाद ही चुने हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि वहां किस तरीके का प्रदर्शन रहता है, और आगे चूंकि ये बहुत ही पैक्ड शेड्यूल है, बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है आगे, तो यहां से जितने खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा पदक मिलेंगे उतना ही मनोबल उनका बढ़ेगा।
1: जी बिल्कुल, मनोबल के साथ स्ट्रेंथ और फिटनेस मेंटेन रखने की भी परीक्षा कल से शुरू होगी, और देखा जाता है कि भारत के लिए ये प्रतियोगिता किस तरह से गुजरती है। मिस्र के गीजा में विश्व स्क्वाश प्रतियोगिता में वीर चोटरानी अगले दौर में पहुंच गए हैं। वीर ने कल पुरुषों के पहले राउंड में हमवतन अभय सिंह को 5 गेम तक चले मुकाबले में 14-12, 8-11, 5-11, 11-7 और 11-2 से हराया। चोटरानी कल दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मिस्र के मुस्तफा असल का सामना करेंगे। अन्य भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो रमित टंडन, वेलावन सेंथिल कुमार बाहर हो गए और अभय भी कल बाहर हो गए थे। और महिला वर्ग में भारत की तरफ से कोई चुनौती इस बार नहीं है इस चैंपियनशिप में अपने अपने कारणों से, तो भारत के लिए बहुत अच्छी प्रतियोगिता ना गुजरती हुई अब तक।
2: बिल्कुल, लेकिन वीर चोटरानी का हालिया प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से वो भारत के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आएंगे।
1: जी बिल्कुल, अच्छी खबरों की आस होगी। और बात करते हैं नई दिल्ली में चल रही निशानेबाजी प्रतियोगिता की, जहाँ नई दिल्ली में 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में आज रेलवे और सेना की टीम का दबदबा देखने को मिला। रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे ओलंपियन अनीश भानवाला ने आज पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नई दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में चैंपियनशिप के फाइनल में अनीश ने 31 का स्कोर करके पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल की टीम स्पर्धा में आर्मी की यूनिट ने स्वर्ण पदक जीता। तो एक प्रतियोगिता मुख्य रूप से भोपाल में खेली जा रही है, लेकिन कुछ मुकाबले इसके दिल्ली में भी चल रहे हैं, जहां भारतीय निशानेबाज जो लगातार हर टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यहां भी कुछ ऐसा ही नजर आता हुआ।
2: बिल्कुल, कर्णी सिंह शूटिंग रेंज देखिए, अनीश भानवाला वहीं अभ्यास करते हैं और उनके लिए तो बिल्कुल घर जैसा है, और ओलंपियन रह चुके हैं, पदक कई बड़े टूर्नामेंटों में पदक विजेता है, तो उनके लिए चुनौती आसान थी और अपेक्षा के अनुरूप ही कहा जाएगा उनका प्रदर्शन रहा।
1: जी बिल्कुल, और अंत में चलते चलते एक बार स्कोर पर नजर डाल लेते हैं, जहां गुजरात और राजस्थान के बीच मुकाबला जारी है, और गुजरात ने इस समय 14 ओवर और 5 गेंद में 2 विकेट खोकर 165 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, मोना आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शुक्रिया।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया, और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता

0: के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,100

0: पता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया

0: वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमरीकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमरीका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमरीका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमरीका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमरीका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as cabinet ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin

शमशाद बेगम की आवाज में लीजिए सुनिए बहार फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है राजेंद्र किशन ने, संगीत तैयार किया है एसटी परमन ने।

0: फिल्म का गीत अभी आपने सुना आवाज थी जोहरा भाई अम्बाला वाले की। डी एन माधोक ने इस गीत को लिखा था और संगीत तैयार किया था नौशाद ने। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।
1: कुछ यादें अतीत की।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
1: कुछ बातें वर्तमान की।
3: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
1: कुछ सपने भविष्य के।
4: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
1: कुछ किस्से अनकहे।
5: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
1: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: शमशाद बेगम की आवाज में लीजिए सुनिए बहार फिल्म का गीत। राजेंद्र किशन ने इस गीत को लिखा है, संगीत तैयार किया है ST परमन ने।

शमशाद बेगम की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म बहार का गीत। और इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं।

हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, कल सुबह 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल संसार। इसमें आप सुनेंगे साप्ताहिक खेल समीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी किरण पिस्ता से फोन पर की गई बातचीत। प्रस्तुतकर्ता होंगे धर्मदीप डोंगरे। पद्मश्री के लिए चयनित गोड़बोले दंपत्ति के साथ विशेष भेंटवार्ता सुनेगा कल सुबह 10 बजे। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की होगी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 होने को है। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से, मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं? उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करी, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही है आकाशवाणी की, वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहाँ भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहाँ के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उस फिल्म में कैसे वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
2: पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
3: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैक्लुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
4: लेकिन सच तो ये है कि मैक्लुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक

0: परिवार है।
1: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
0: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
1: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है जहां सात समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR।
0: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
1: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
2: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाई, जो हमारे दो तीन वर्टिकल है, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती, और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4,000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7,000 से 8,000 स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
0: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
3: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाया है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
4: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली।

0: हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है भारतीय लोगों के साथ। मैंने बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में, और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए, और हम गए थे मुंबई गोवा, और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए, और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी, और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए, और आपको सफलता मिलेगी।
1: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है, या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है, तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
2: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक, आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो, या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
1: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है, जहां भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
2: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं, बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहां अलग अलग संस्कृतियां नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा,
1: और मैं प्रांजल।
3: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
4: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ, और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को, फिर और हौसला बढ़ाते रहे। मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशंस के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी 2 अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती है।
5: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ, जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे। तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी, तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशंस में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9-10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी, बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना

0: मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से। मेरा
1: पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा
0: अच्छा
1: हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस।
0: बिल्कुल
1: जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3 4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है, जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
3: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
4: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
3: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
4: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
3: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
5: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बौद्ध देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से लेह में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
4: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
3: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
4: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
3: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
6: भारत में और भारत की वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध

0: जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रांग होल पिलर के रूप में है और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
1: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
2: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा।
3: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम वल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
5: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजूमदार। राजकुमार मजूमदार इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल संतूर प्लेयर्स इन इंडिया, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santur with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalaya and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास

0: न्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishakh, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is said to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaka Vitri Karagam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagail Kachi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with 5 MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with 2 MLAs each, stands at 13. The top brass of the Congress party today held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chinnitala and VD Satheesan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the

टाक स्टूडियो से समय मिलाएंगे मैडम। 5:26, 57, 58, 59, 60 सेकंड हुए हैं। स्टूडियो माइक

स्टूडियो माइक वन 5:27:33:34:35 हुए हैं। माइक नंबर 2 5:27:40:41:42 हुए हैं।